मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 21 सितंबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह की 6 बजने वाली है, लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअली पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए, युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉ जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय

0: और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू शामिल होंगे। उनके साथ विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। 10 दिवसीय यह सत्र 30 सितंबर तक चलेगा और इसमें 7 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीएस के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और एनआईए ने 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले सहित 50 से अधिक मामले दर्ज थे। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के पहले दिन शूटिंग में 2 रजत पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एलावेनिल वलारेवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:05:23 हो रहे हैं। ये वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का, तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम आराधना। श्रोताओं, ओम नमः शिवाय। चलिए आराधना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपका हर दिन मंगलमय हो। जिस प्रकार शिव और शक्ति का मिलन संपूर्ण सृष्टि का आधार है, वैसे ही जीवन में प्रेम, धैर्य और अटूट विश्वास का होना आवश्यक है। तो श्रोताओं, लीजिए सुनिए पंडित जसराज के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

श्रोताओं, अभी आप पंडित जसराज के स्वर में गाए इस भक्ति रचना का आनंद ले रहे थे। भोलेनाथ आपके सभी कष्टों और दुखों को दूर करें तथा माता पार्वती आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति की नई ऊर्जा दें। लीजिए सुनिए आराधना कार्यक्रम का अगला भजन। इस भजन को अपने स्वर से सजाया है हरिहरन ने।

सचमुच महादेव बड़े सीधे और साधे भोलेनाथ हैं, जो एक बेलपत्र, एक लोटा जल की धार से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ की शरण में आता है, माता उसके सारे संकट हर लेती हैं और उसके जीवन को सुख और समृद्धि से भर देती हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए सोनू निगम के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

0: श्रोताओं, आराधना कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, लेकिन हम आपको बता दें अभी जो आप ये रचना सुन रहे थे उस रचना में अपनी आवाज दी थी सुखविंदर सिंह और सोनू निगम ने। और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, आप कहीं मत जाइएगा, अपने रेडियो सेट के रहिएगा करीब।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242। सुनो ना।
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
2: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
0: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। और श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। भगवान हमसे बिना शर्त प्रेम करते हैं, मन और हृदय को शुद्ध करना ही सच्ची भक्ति है। भक्ति जीवन में आत्मविश्वास और शांति लाती है। तो श्रोताओं लीजिए सुनिए

माता का श्रृंगार इतना खूबसूरत लगता है कि बस ये नैना लोभी हो ही जाता है, बार बार बस माँ के ही दर्शन करना चाहता है। श्रोताओं लीजिए सुनिए आराधना कार्यक्रम का आखिरी ये भक्ति रचना, जिसे अपने स्वर से सजाया है लता मंगेशकर ने।

0: श्रोताओं, इसी भक्ति रचना के साथ आराधना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए विचार बिंदु कार्यक्रम। विचार बिंदु कार्यक्रम में आज आप सुमित्रा नंदन पंत के विचार सुनेंगे।
1: वैदिक ऋषियों तथा विचारकों की दृष्टि सदैव समष्टि मूलक रही है। समष्टि के हित में उन्हें प्रत्येक व्यक्ति का हित, विश्व श्रेय में व्यक्ति का श्रेय स्वभावतः उन्हें संभव तथा सार्थक ज्ञान पड़ा। इस भावना एवं आदर्श को उन्होंने अनेक गूढ़ तथा प्रकट संकेतों एवं प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्ति दी है। किंतु वैदिक आरण्यक युक्ति इस सीमा एवं विवशता को स्वीकार करना पड़ेगा कि वे अपने अंतर्दृष्टि की उपलब्ध मानव आत्मा की एकता तथा वैभव को विश्व जीवन में प्रतिष्ठित नहीं कर पाए। भले ही वे बार बार अनेक रूपों में उसका समर्थन करते रहे हों, उन्होंने यह भी अनुभव कर लिया था कि मात्र परम एकता का बोध प्राप्त कर ना अलग नहीं है, बहु का बोध, वस्तु जगत की विविधता की शक्ति का बोध भी विश्व श्रेय तथा लोक मंगल की समग्रता की उपलब्धि के लिए उतना ही आवश्यक है। इसीलिए हमें उपनिषदों में मिलता है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूयते तमो ये विद्यायामृता, अथवा विद्यां च विद्यां च यस्तद् वेदोभयं सह अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते। अतः केवल अपने अंतर में एकत्व के ज्ञान को ही सर्वोपर मान लेने या वहीं रुक जाने के कारण वे बाह्य जगत संबंधी विविधता के भौतिक अंधकार को नहीं भेद सके और उन दोनों को मानव जीवन की भूमिका में संयोजित नहीं कर सके। आज के युग में हम देखते हैं कि जिस प्रकार वैदिक ऋषियों ने अंतर जगत की छानबीन की, उसी प्रकार वैज्ञानिक बाह्य जगत अर्थात भौतिक जगत की छानबीन में निरत हैं। किंतु ऋषि के अनुसार वे भी अपने एकांगी ज्ञान के कारण अंधकार में निमग्न होने जा रहे हैं। अर्थात वैदिक युग की अंतर्मुखी दृष्टि के समान ही वैज्ञानिक युग की बहिर्भ्रांत दृष्टि भी एकांगी ही है, जिसका प्रमाण हमें आज विश्व धर्म के शास्त्रार्थों में देख

0: सुनने को मिल रहा है। यदि विज्ञानता विज्ञानते यस्तद्विदुभयम् सह के अनुसार इस युग की एकांगी बहिर्मुखी जीवन का मनुष्य के अंतर्जगत की संपद या प्रकाश से समन्वय तथा संयोजन नहीं किया जाएगा तो विज्ञान भी अपने लोक मंगल या विश्व मानवता के निर्माण के स्वप्न को चरितार्थ करने में असफल ही रहेगा। वैदिक युग की आध्यात्मिकता को हम मानव जीवन के धरातल पर इसलिए भी प्रतिष्ठित नहीं कर पाए और उसे सामाजिक सामूहिक जीवन का व्यापक अंग नहीं बना पाए कि उसके लिए हमारे पास भौतिक शक्तियों का यथेष्ट ज्ञान नहीं था। भौतिक आध्यात्मिक तत्व भिन्न रहकर तो जीवन के लिए उपयोगी रह नहीं सकते हैं। वे एक ही सत्य के दो रूप थे और उस सत्य को स्थापित करने के लिए हमें दोनों संतरणों के ज्ञान का पर्याप्त बोध आवश्यक था। यदि वैज्ञानिक विद्युत शक्ति का आविष्कार कर एवं उसके अस्तित्व का बोध प्राप्त कर वही रुक जाते और उसके व्यावहारिक रूप की भी यथोचित यंत्र आदि बनाकर जीवन में उसका उपयोग करने का प्रयत्न नहीं करते तो वह भी आत्मज्ञान की तरह मानव जीवन को सुख संपन्न बनाने के लिए उपादेय नहीं हो सकते। इसी प्रकार आध्यात्मिक मानवीय एकता उदात्तता विश्व संवेदना करुणा प्रेम शांति आदि आत्मा के वैभव को जीवन के धरातल पर उतारने के लिए हमको उसकी भौतिक पीठिका का निर्माण करना आवश्यक है, क्योंकि जड़ तत्व मानवता के विकास प्रसार आदि के लिए सबसे बड़ी पर्वताकार बाधा है। जड़ की शक्ति से उसकी जड़ता पर विजय पाकर ही हम आध्यात्मिक उन्नयन को संभव बना सकते हैं। उसी प्रकार आज भौतिक विज्ञान जिस मानव समता के धरती पर जीवन का स्वर्ग प्रतिष्ठित करने के स्वप्न देख रहा है वह भी तब तक सफल या संभव नहीं हो सकता जब तक वह मनुष्य के आत्मिक उन्नयन आध्यात्मिक व्यक्तित्व के अंतर मूल्यों को भी अपनी भौतिक संपदा के साथ ही संयोजित न करे।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप सुमित्रा नंदन पंत के विचार सुन रहे थे। इसी के साथ विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है। लीजिए सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हमारे किसान भाई सुनेंगे पेड़ पौधों में फफूंद जनित समस्या और समाधान, और इस विषय पर डॉक्टर वीएन पांडे से बातचीत किया है प्रवीण कुमार मिश्रा ने।
1: किसान भाई, खेती किसानी में देखा जाता है, चाहे फसल उत्पादन हो चाहे फल के उत्पादन हो, कुछ ऐसे रोग बीमारी यहाँ जैसे अगर लग जाता है तो जो किसान भाई जो भी उत्पादन लेता है उसका उचित लाभ नहीं मिल पावत। ऐसे में फफूंद रोग है, ये चाहे फसल हो भाई चाहे फल की खेती की जाए, ओमा ये समस्या देखे के मिलत है। तो आज फफूंद रोग के विषय के बारे में जानकारी दे के खातिर हमारे बीच में डॉक्टर वीएन पांडे जी हैं। आप प्रोफेसर अहाँ भी है और पादप रोग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज में। हम आपके अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करी थी। सबसे पहले हम अपने किसान भाइयों के लिए जानना चाहत कि ये जो फफूंद रोग बाटे ये काय आटे, एक के बारे में बताएं विस्तार से।
2: देखिए, फफूंद एक पौधा होता है जो कि सूक्ष्म होता है और ये परजीवी होता है। विभिन्न फसलों में ये संक्रमण करता है, संक्रमण करके उसका भोजन लेता है, जिससे पौधों में विभिन्न तरह के परिवर्तन आ जाते हैं और पौधा रोगी हो जाता है। कभी कभी रोग ग्रसित पौधे पर फफूंद के भाग भी दिखाई देते हैं, उसका माइसीलियम भी दिखाई देता है, उसको कुंडियोफोर दिखाई देता है और उसके भाग देते हैं। उससे ये पहचाना जाता है कि जो पौधे में रोग लगा है वो फफूंद जनित रोग है।
1: बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे किसान भाई एकर पहचान कैसे करें कि हमें फफूंद रोग लगा बा, एकर का पहचान बा, एक के बारे में बताएं।
2: देखिए, फफूंद पौधों पेड़ के पत्तियों को प्रभावित करता है, उसके तनों को प्रभावित करता है, उसके फूलों और फलों को प्रभावित करता है, और जो मृदा जनित फफूंद होते हैं पौधे के जड़ों को भी प्रभावित करता है। देखिए, फफूंद जनित रोग का पहचाने का सबसे बड़ा साधन है कि संक्रमण करता है, एक पौधे से

0: एक पौधे से दूसरे पौधे में यह संक्रमण करता है। पत्तियां इसके प्रभाव से मर जाती हैं, पत्तियां मरी हुई भूरी या काली दिखाई देती हैं, और ये उपयुक्त मौसम में बहुत तेज़ी से एक पौधे से दूसरे पौधे में, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैलता है।
1: बिल्कुल देखा ही जाता है कि बहुत से जैसे रोग हैं, जैसे चाहे खैरा रोग है, हल्के एक अलग अलग पहचान बात है। जैसे फफूंद रोग लगा बा देखकर केह रूप रंग में रहा था, कैसे का किसान भी पहचान करे कि फफूंदे रोग बाटे, एक के बारे में बताना चाहता था।
0: देखिए, जो रोग होता है फफूंद से भी होता है, विषाणु से भी होता है, जीवाणु से भी होता है। लेकिन यदि विषाणु से है तो कीड़े से फैलता है और वो बहुत तेज़ी से फैलता है। ऐसे लगता है कि पौधे में न्यूट्रिशन की या पोषक की कमी हो गई है। अगर बैक्टीरिया के द्वारा लगता है या जीवाणु के द्वारा लगता है तो रोग ग्रसित पौधे में जीवाणित स्राव या बैक्टीरियल स्राव निकलता है। लेकिन फफूंद जनित रोग में काले या भूरे धब्बे पड़ते हैं और नम मौसम में फफूंद की वृद्धि दिखाई देती है। फफूंद,
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: तो
0: जिस
1: ये तो
0: पौधे पर फफूंद की वृद्धि दिखाई देती है और मौसम नम हो तो ये माना जाना चाहिए कि ये जो रोग है फफूंद जनित रोग है।
1: अच्छा, का कारण है कि फफूंद रोग लगा था जो ना जो इतना तेजी से विकास कर लिए थे जो डॉक्टर साहब?
0: देखिए, इसमें जो पेड़ होते हैं उसमें कुछ होते हैं जिसमें कि आरोधी होते हैं, कुछ अवरोधी होते हैं। जो जिसमें रोधिता होती है उसमें कम लगते हैं, लेकिन लेकिन जो अवरोधी होते हैं, जो सहनशील नहीं होते हैं, उसमें ज़्यादा पौधे लगते हैं। और उसके लिए जो वातावरण वो बहुत प्रभावित करता है, यदि वातावरण नम है तो उसमें फफूंद जनित रोग ज़्यादा लगते हैं।
1: बिल्कुल अगर फफूंद रोग लग गए बाटे तो ऐसे में जो हमारे किसान भाई यहाँ हैं, चाहे उनका जो फसल है या जो उनकर वृक्ष है, खास करके जो जिसमें फल के उत्पादन वो लेता हैं, तो हूँ अंदर का सावधानी बरतें अपने किसान भाई?
0: देखिए, सावधानी ये है कि जब किसान फसल या पेड़ पौधे में शुरू से, जैसे ही मौसम इस तरह का होता है कि अब नम मौसम होने वाला, उसी समय कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। यदि ये कवकनाशी का प्रयोग पत्तों में करते हैं तो पत्तों को ये नियंत्रित करता है, अगर तनों में करते हैं तो तनों को करता है, ये जड़ों में करते हैं तो जड़ों को नियंत्रित करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल तो एक जैसे फफूंद रोग जब लग बाटे कि फसल के प्रभावित कर दे बा, तो ओह अवस्था में अपन किसान भाई का उपचार करें, एक के बारे में बताना
0: उसके
1: चाहिए।
0: लिए देखिए कवकनाशी आती है पत्ते पे छिड़कने के लिए या बुरकने के लिए। कवकनाशी आती है जिसमें कि आपका ब्लीटाक्स है, बेविस्टीन है, इसका घोल बना करके, इसके अलावा मैंकोजेब है, डाइथेन Z78 है, ये सब दवाओं का जो कि गंधक कवकनाशी होते हैं। इसके अलावा कापर ऑक्सी क्लोराइड जो कि कापर कवकनाशी होते हैं। इसके अलावा सर्वांगी कवकनाशी होते हैं जिसमें कि बेबिस्टीन और बेनलेट आता है, इसका घोल बना करके छिड़काव करते हैं। इसी तरह यदि ये पौधे पर आते हैं, उसकी टहनियों पर आते हैं, तो रोग ग्रसित टहनियों को काट करके हटा देते हैं और फिर उस पर कवकनाशी का पेस्ट लगाते हैं जिससे कि ये कवक आगे ना फैलने पाए।
1: बिल्कुल जैसे बताएं कि घोल का प्रयोग करना चाहिए और पेस्ट का प्रयोग करना चाहिए, तो किसान भाई जब घोल के छिड़काव करता है या पेस्ट लगावता है, तो उस समय कौन सी ऐसी सावधानी बरतें कि जिससे उनका खुद के भी जो नुकसान न हो, या साथे साथे उनका जो फसल बाटे या जो उद्यान के कार बा वो भी उनका सुरक्षित रहे?
0: देखिए, इसमें ध्यान रखना चाहिए कि कवकनाशी का प्रयोग उस समय किया जाना चाहिए कि जिस समय उसका प्रभाव ज़्यादा हो। तो उसके लिए जब बारिश का मौसम नहीं हो, शाम का समय हो, अथवा सुबह का समय जब धूप ना हो, उस समय इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग करने में एक सावधानी ये रखनी चाहिए कि कवकनाशी के घोल में कोई ऐसा पदार्थ मिला लेना चाहिए जो कि पौधे या पेड़ के ऊपर कवकनाशी को चिपका दे तो वो ज़्यादा प्रभाव डालता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल ये तो बहुत अच्छे बताए भाई कि जैसे कोनो भी चीज़ है जो उनका अवशोषित करे कुल मिलाई के, तब तो वो ज़्यादा फायदेमंद कर। लेकिन एक ही देखा जाता है कि जैसे कुछ फसल हैं ओहमा कवक की संभावना अधिक रहता है, या जो कुछ वृक्ष हैं ओहमा ज़्यादा, तो कौन कौन से ऐसा फसल हैं या जो वृक्ष हैं जिसपे फल उत्पादन किसान भाई लेते हैं, चाहे सब्जियों की भी खेती हो, तो वहाँ ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, ओके बारे में बताऊँ किसान भाई?
0: देखिए, जो आपकी सब्जियां हैं, सब्जियां

0: जो कामन है, आलू है, टमाटर है, गोभी है, इस तरह की फसलों में ज़्यादा फंगस लगते हैं जो हमारे के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह आम है, अमरूद है, केला है और नींबू है, इसमें ज़्यादा रोग लगते हैं और इससे ज़्यादा फसलों को नुकसान होती है।
1: बिल्कुल, ये मौसम की अगर हम बात करें तो किस मौसम में सबसे अधिक एकर संभावना अधिक रहा था कवक के फैले के जो ना है, किसान भाई के बताओ और का उस समय सावधानी बरते एक बाटे ओके भी नजर दो।
0: देखिए, जो कवक के संक्रमण का दो समय होता है, एक बारिश का समय और कुछ जो फसलें होती हैं उसमें जाड़े में भी कवक का संक्रमण ज़्यादा होता है। तो बारिश शुरुआत से पहले कवक का छिड़काव कर देना चाहिए, कवक का प्रयोग बुरकाव कर देना चाहिए। इसी तरह जो जाड़े की फसलें हैं, जाड़े में फसलों में जब जाड़े का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है उसके पहले भी कवकनाशी सावधानी के लिए छिड़क देना चाहिए, जिससे कि कवक से हमारी फसलों को ज़्यादा नुकसान ना हो। खेत की तैयारी के समय तो देखिए, पहले सावधानी तय रखना चाहिए कि गर्मी के ऋतु की जुताई कर देनी चाहिए, तो उससे बहुत से कवक के जो बीजाणु हैं वो मर जाते हैं। इसके अलावा कवकनाशी जो कि धूम्र के रूप में होते हैं उनका खेत में डाला जाता है, जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उनको डाल करके ढक दिया जाता है, उससे भी मर जाते हैं। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा एक जैविक कवकनाशी आया है, उसको सड़ी हुई खाद में मिला करके भी राहत मिलती है, उससे बहुत कम रोग हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, फफूंद जनित जो रोग आएँ का ओकर उपचार बा, एह विषय में आप जानकारी दे हैं। निश्चय रूप से जो हमारे किसान भाई आएँ ऐसे लाभान्वित हुई, जानकारी दे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे पेड़ पौधों में फफूंद जनित समस्याएं और समाधान विषय पर डॉक्टर वीएन पांडे से प्रवीण कुमार मिश्रा की बातचीत। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हम आपको डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव की वार्ता सुनवा रहे हैं। वार्ता का विषय है बच्चों में होने वाली समस्या बुखार और उपचार।
1: कभी ना कभी जीवन में बुखार की समस्या से हर व्यक्ति ग्रसित होता है। कई व्यक्ति तो इससे कई बार प्रभावित होते हैं। ये ऐसा लक्षण है जो बीमारी की पहचान भी कराता है और परेशान भी करता है। पर यही बुखार जब बच्चों को होता है तो मानसिक रूप से माता पिता को और घर वालों को परेशान कर देता है। आज इसी समस्या पर बात करते हैं कि अगर हमारे बच्चों को बुखार है तो हम कैसे पता करें और हमें क्या करना चाहिए। बुखार की परिभाषा क्या है ये भी मैं बताती हूँ। सामान्यतः माता पिता जैसे ओपीडी में आते हैं बताते हैं तो बताते हैं कि बच्चों का सिर गर्म है, हाथ पैर गर्म है, हाथ पैर जलते हैं, तो लगता है कि बच्चे को बुखार है। और यही सोच करके वो दवाइयाँ भी कई बार पिला के आते हैं। कई बार तो बच्चे एक एक महीना दो दो महीना दवाई पी के आते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका है, आजकल हर जगह पे डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है। कैसे बुखार नापना है? अगर कांख में या एक्जिला में लगा करके बुखार नापें और अगर वह बुखार 99 से ऊपर आता है तो इसका मतलब कि बुखार है। उसमें +1 करके हम लोग ऐड करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है वो बुखार मानते हैं। अगर नापने पे 99 से ऊपर आता है तो इसका मतलब बुखार है, फिर क्या करें? अगर बुखार लगातार बढ़ता जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या करें? अगर 99 से ऊपर आता है तो सिंपल आपके घर में पैरासीटामोल अगर बच्चों के लिए उपलब्ध है या बच्चों की कोई दवाई पहले से किसी ने प्रिस्क्राइब की है आपको तो आप वो दवाई तुरंत पिला सकते हैं, उसको पिलाने में कोई नुकसान नहीं है। और अगर बुखार बढ़ता जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या करें? सबसे पहला चीज़ तो जैसे जो बच्चों को अगर बुखार तेजी से बढ़ता जा रहा है तो उसमें टेपिड स्पंजिंग करवाते हैं। टेपिड स्पंजिंग की सबसे बड़ी गलती जो होती है वो ये होती है कि लोग बर्फ़ के पानी से या ठंडे पानी से बच्चे की सिकाई करते हैं या बच्चे के शरीर को पोंछते हैं, बट ये खतरनाक भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो हमारा मेडिकल रिकमेंडेशन है उसके अनुसार बच्चे को स्पंजिंग जो है वो ल्यूक वार्म वाटर से या नल के साधारण पानी से करनी चाहिए। नल के साधारण पानी का भी उपयोग अब आप एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको जज कर सकते हैं। अगर जाड़े का समय है तो आप सीधे नल का पानी प्रयोग ना करें। अगर गर्मी का समय है, कभी कभार गर्मी में भी नल का टेम्परेचर जो पानी आता है नल से वो टेम्परेचर हाई होता है, तो आप उसको जज करके कि वो ल्यूक वार्म हो उसमें आप हाथ डालें तो आपको बहुत गर्म ना लगे, ऐसे वाटर से उसकी स्पंजिंग करनी चाहिए, ठंडे पानी से नहीं। दूसरी गलती होती है कि बुखार में लोग बच्चे को कपड़े पहना के रखते हैं कि बुखार बढ़ गया तो उसको कंबल में लपेट दिया, रजाई में लपेट दिया और खूब सारे कपड़े पहना दिए। इवन गर्मी में भी मफलर और टोपी पहना के और स्वेटर पहना के लेके आ जाते हैं। जब बच्चे का शरीर गर्म होता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे को बाहर खुले एनवायरमेंट में रखना चाहिए। आपका एनवायरमेंट कूल होना चाहिए और वो तभी उसकी गर्मी शरीर की निकलेगी जब उसको निकलने का मौका मिलेगा। तो बच्चे को जब भी बुखार हो तो बच्चे को हल्के कपड़े पहनाएं। अगर उसे ठंड लग रही है तो उसे जिस समय उसको ठंड लग रही उसी समय के लिए ही उसको कवर करें। उसके बाद जैसे ही उसके हाथ पैर गर्म होने लगते हैं और उसकी ठंडक खत्म हो जाती है उसको तुरंत खोल के हल्के कपड़े पहनाएं। एक बात ये भी होती है कि बच्चे को अगर बुखार है तो एसी, कूलर, पंखा चलाएं कि नहीं चलाएं। बच्चा नॉर्मल जैसे एनवायरनमेंट में रहता है वैसे रखना चाहिए। अगर उसे एसी की आदत है तो नॉर्मल एसी करा के रखें। आपको पहले ही मैंने बताया कि बहुत ठंडा नुकसान ही करेगा, तो बहुत ठंडे में नहीं रखना है, बहुत गर्म में नहीं रखना है, नॉर्मल एनवायरनमेंट करके रखना है। अपने घर में हमेशा पैरासिटामोल की गोली या सिरप रखें जिसको डोज के अनुसार या तो डॉक्टर से पहले जो सलाह मिले उसके अनुसार पिला दें या फिर किसी डॉक्टर से सलाह लेकर के तुरंत पिला दें। कभी घबराएं नहीं। बुखार जब तेज होता है, अधिक होता है, तो कुछ खतरनाक लक्षणों के बारे में जरूर जानकारी रखें जिन्हें मैं बताने जा रही हूँ। जरा से भी स्थिति बिगड़ने पे तुरंत अस्पताल जाएं या डॉक्टर के पास जाएं। डेंजर साइंस बच्चों के जो बुखार में हो सकते हैं, बच्चे ने अगर 6 से 8 घंटे पेशाब नहीं करी है, बच्चा आपे में नहीं है, अगर बच्चा अनकॉन्शियस है, बच्चा सेमी कॉन्शियस है या बच्चा अपने आप में बड़बड़ा रहा है, बच्चे को दौरे आने लगे, बच्चा नीला पड़ रहा हो, बच्चे की धड़कन अधिक हो गई है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे एकदम सुस्त हो जाते हैं, ना मुँह से बात करते हैं, ना मुँह से खाने पीने में सहज होते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएं, डॉक्टर से सलाह लें। तो कुछ बातें बस ध्यान रखें कि बच्चे को जब भी बुखार हो तो घबराए नहीं, परेशानी बढ़ने पे अस्पताल जाएं, पैरासीटामोल का सिरप अपने पास रखें, बच्चे को पिला दें और साधारण पानी से उसकी स्पंजिंग करें।
0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव की वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था बच्चों में होने वाली समस्या, बुखार और उपचार। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 बजे आज आप पंडित निखिल बनर्जी का सितार वादन सुनेंगे। दोपहर 12:15 बजे पंडित अनंतलाल का शहनाई वादन हम आपको सुनवाएंगे और रात 10:30 बजे पंडित रामकृष्ण का क्लियरनेट वादन प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार, प्रयागराज कार्यक्रम का प्रसारण 8:45 पर किया जाएगा। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी जी की है, साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा 9:00 बजे। 9:50 पर ज्योति आनंद के स्वर में गए गीत और भजन हम आपको सुनवाएंगे। कार्यक्रम होगा सुगम संगीत का। वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम का प्रसारण 10:05 पर किया जाएगा। सुबह 10:30 पर लोकगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं आस्था सिंह, वंदना सरोज और ओमकार नाथ, और साथ ही आज आप इनके स्वर में गए लोकगीतों का आनंद लेंगे। दिन में 11:00 बजे एक ही कलाकार कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। प्रस्तुति प्रदीप मिश्रा जी की है। दोपहर 12:30 बजे आपके पसंद के गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद लेकर हाजिर होंगे। प्रस्तुति होगी मधु कुमार जी की। दोपहर 1:15 बजे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में चर्चा

अपनी कमाई, अपना निर्णय, आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व पर। साथ ही जब स्मृतियां साथ छोड़ने लगी और कहानी सुनिएगा प्रतिमा श्रीवास्तव से शाम 5:15 बजे युवाणी कार्यक्रम में चर्चा वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम एनीवेयर तक, काम की बदलती दुनिया पर और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर प्रेरणा पुंज श्री राम नारायण गुरु पर। और 5:00 बजे हमारे नन्हे साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। बात होगी गलती हो जाए तो क्या करें, और बच्चे जानेंगे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है। पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 बजे चर्चा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर। अशोक कुमार सिंह बेशर्म से लोक भाषा में कविता पाठ आप सुनेंगे। साथ ही मौसम संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर सुजीत सिंह की वार्ता कभी

पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे चर्चा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर अशोक कुमार सिंह बेशर्म से लोक भाषा में कविता पाठ आप सुनेंगे, साथ ही मौसम संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर सुजीत सिंह की वार्ता कबीरदास की रचनाओं में धार्मिक एवं सामाजिक चेतना। रात 9:30 बजे सजेगी गजलों की महफिल कार्यक्रम कहकशा में। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क ऋषि बोले, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तो धूल भी उसके लिए पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता काल स्वरूप और मामूली रस्सी सांप के समान काटने वाली बन जाती है। राजा प्रताप भानु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों द्वारा अभिशप्त होकर राजा प्रताप भानु कालांतर में रावण नामक राक्षस हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा और मंत्री धर्मरुचि ने अपने ज्ञान, विवेक तथा आस्था के कारण विभीषण का शरीर पाया। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने कठिन तपस्या की। अपने उग्र तप के कारण रावण ने ब्रह्मा और शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर कोई उसका वध न कर सके। कुंभकर्ण का आहार देख ब्रह्मा भी आतंकित हो गए, अतः सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने उसकी मति फेर दी और उसने 6 महीने की नींद और मात्र 1 दिन का जागरण मांगा।

श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाजेकर और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। और आप लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला भजन हम आपके लिए लेकर आए हैं चार धाम फिल्म से, और इस भजन को अपने स्वर से सजाया है हरिहरन ने। उदय शंकर पानी की रचना है, सुरेंद्र कोहली ने इस भजन को संगीतबद्ध किया है। तो ये भजन चला आपके रेडियो सेट पर।

कार्यक्रम का अगला भजन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हरी नाम भजे फिल्म से, और इस भजन को अपने स्वर से सजाया है अनूप जलोटा ने, और ये भजन चला आपके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, इसी भजन के साथ फिल्म से भजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 25 से 29 सितंबर तक होगा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने गौतम बुद्ध नगर में प्रेरणा विमर्श 2026 के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, 12 वर्षों में बॉटम 5 से टॉप 5 में पहुंचा भारत। प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर निर्देश जारी। पैक्ड खाद्य पदार्थों पर अब वास्तविक विनिर्माण तिथि अनिवार्य। और एशियाई खेलों में भारतीय दल के अभियान की शानदार शुरुआत। महिला निशानेबाजों ने जीते 2 रजत पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण का आयोजन करने जा रही है। कल नोएडा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अब तक हुई तैयारियों की समीक्षा करने के साथ प्रतिभागियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आयोजन राज्य की औद्योगिक क्षमता, नवाचार और निर्यात क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गौतम बुद्ध नगर जिले के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित प्रेरणा विमर्श 2026 के तहत उत्कर्ष नारी सम्मान और युवा स्वाभिमान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों से देश विरासत, विकास और जन कल्याण की नई यात्रा पर आगे बढ़ा है।
1: पिछले 12 वर्ष में भारत बॉटम 5 से टॉप 5 की श्रेणी में दुनिया के अंदर पहुंचा है। याद करिए, भारत की यात्रा आर्थिक क्षेत्र में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित भी कराता है और दुनिया के लिए हलचल भी पैदा करता है। विरासत से विकास की यात्रा, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हुआ अभूतपूर्व विकास, ये उसी यात्रा का नाम है। और उसी यात्रा के साथ भारत के हर नागरिक को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बार बार आह्वान होता है।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की गरिमा की रक्षा और सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश में इस समय महिला वर्क फोर्स की भागीदारी पिछले 9 सालों के दौरान 12% से बढ़कर लगभग 37% हो गई है। आगरा, काशी, गोरखपुर और लखनऊ में दुग्ध उत्पादक काम कर रहे हैं, इनमें 4,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा यूपी में 24,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं, इनमें आधे महिलाओं के हाथ में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित

0: लिपिक संवर्ग के 912 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का जोर नौकरी देने के साथ चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर भी रहा है।
1: जब किसी योग्य अभ्यर्थी का चयन शुचितापूर्ण तरीके से, पारदर्शी तरीके से किसी परीक्षा के माध्यम से संपन्न होता है, तो चयन की प्रक्रिया केवल एक व्यक्ति के परिवार के लिए नहीं, बल्कि शासन और कॉमन मैन के प्रति एक विश्वास का प्रतीक भी बनता है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अगले 6 महीनों में 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषध प्रशासन विभाग ने पैक्ड खाद्य उत्पादों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक अब प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत पैक किए जाने वाले खाद्य उत्पादों के पैकेज पर वास्तविक विनिर्माण तिथि दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा। पैकिंग की तिथि को विनिर्माण तिथि के स्थान पर अंकित नहीं किया जा सकेगा। ये निर्णय खाद्य विनिर्माण इकाइयों के हाल में किए गए विशेष निरीक्षणों के दौरान सामने आए तथ्यों के बाद लिया गया है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमीट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक इस व्यवस्था का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा ये कराने की जरूरत नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में देश भर में 1 माह का सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के विशेष श्रृंखला में हम मेक इन इंडिया पहल को जमीन पर उतारने की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। एक रिपोर्ट।
2: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
3: आज मेक इन इंडिया एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरा है। मुझे इस बात का संतोष कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस में यूपी एक मजबूत पिलर के रूप में भी उभर रहा है।
2: काशी के बुनकर और कई पुरस्कारों से सम्मानित मोहम्मद यासीन ने बताया कि मेक इन इंडिया पहल से काशी की हस्तशिल्प और बनारसी साड़ियों को देश विदेश में पहचान और बाजार मिला है।
4: हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को काफी बढ़ावा मिला है। इसकी वजह से बनारस में काफी टूरिस्ट वगैरह भी आ रहे हैं जो यहाँ की बनाई हुई साड़ियाँ और यहाँ के हैंडीक्राफ्ट की डिमांड करते हैं।
2: पर्यटन के साथ ही वाराणसी आज बनारसी साड़ियों के जरिए मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक बन रही है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। इसी क्रम में कल केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मेरठ के मोहिद्दीनपुर न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप में भारतीय वायुसेना के प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और संकल्प का नतीजा है कि भारत रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है और रक्षा मंत्रालय भी नए तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
5: 10-12 साल पहले रक्षा का एक्सपोर्ट मात्र 686 करोड़ था, आज 38,424 करोड़ का एक्सपोर्ट है। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है स्वदेशी आत्मनिर्भर, उस ओर भारत का रक्षा मंत्रालय बढ़ा है। और आज जो अद्भुत नजारा होगा तो हजारों हजार युवाओं को प्रेरणा। 2047 विकसित भारत एक ही लक्ष्य है पूरे देश का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाए, वो 100 साल कैसा होगा, वो ताकतवर भारत, वो मजबूत भारत, वो आत्मनिर्भर भारत, वो स्वदेशी से ही, वही प्रेरणा युवाओं में।
0: ये शो में राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश के मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर भी शामिल हुए। भारतीय निशानेबाज

0: बासों ने जापान के नागोया में आयोजित एशियाई खेलों में कल 2 रजत पदक जीतकर भारतीय दल के अभियान की शुरुआत की। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में इलावेनिल वलारिवन ने और इसी स्पर्धा की टीम प्रतियोगिता में इलावेनिल के साथ सोनम मस्कर तथा विदर्शा विनोद ने देश के लिए रजत पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन निशानेबाजों को बधाई दी है। उधर महिला क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 114 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय टीम की तरफ से शेफाली वर्मा ने शानदार शतक लगाया। राज्य के कुछ जिलों में कल हुई हल्की बारिश के बीच मानसून अब अवसान की ओर है। मौसम विभाग ने बुंदेलखंड के अलावा बाकी हिस्सों में अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग ने इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना भी जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 25 से 29 सितंबर तक होगा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने गौतम बुद्ध नगर में प्रेरणा विमर्श 2026 के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा 12 वर्षों में बॉटम 5 से टॉप 5 में पहुंचा भारत। प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर निर्देश जारी। पैक्ड खाद्य पदार्थों पर अब वास्तविक विनिर्माण तिथि अनिवार्य। और एशियाई खेलों में भारतीय दल के अभियान की शानदार शुरुआत। महिला निशानेबाजों ने जीते 2 रजत पदक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको पंडित निखिल बनर्जी का सितार वादन सुनाएंगे। राग है अहिर भैरव और आपके साथ तबले पर संगत किया है लालजी श्रीवास्तव ने।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित निखिल बनर्जी का सितार वादन सुन रहे थे। राग था अहिर भैरव और आपके साथ तबले पर संगत किया था लालजी श्रीवास्तव ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। लीजिए सुनिए देशगान।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर

0: संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाले का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे।

0: 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीएम किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
4: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
3: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
5: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो बढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
3: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबू से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
6: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स

0: प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रभु स्लोगन प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निःशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
3: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना हो।
2: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
4: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
2: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडबरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त, कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म

0: अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान जंग के सिलसिले में फैसलाकुन मरहले में हैं। उन्होंने खबरदार किया कि बड़े वाकयात पेश आने वाले हैं। उनका ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब ईरान ने कहा कि उसने आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने के लिए अमरीका के सामने अपनी शरायत सालिसी करने वालों के जरिए पेश कर दी हैं। सदर ट्रंप का ये बयान ईरान के सदर मसूद पेजिशियान के न्यूयॉर्क के मुतवक्के दौरे से कबल सामने आए हैं, जहां वो अक्वाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। इम्कान है कि उनके हमरा एक आला सतह का वफद भी होगा। ट्रंप ने एक टीवी चैनल से गुफ्तगू में कहा कि अगर ईरान की हुकूमत अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाती है तो मुस्तकबिल करीब में बहुत बड़े वाकयात रूनुमा होने वाले हैं। ईरान ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए कतर के जरिए अमरीका को अपनी शरायत से आगाह कर दिया है। अमरीका ने सऊदी अरब में अपने सिफारती मिशन के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। इसके तहत सऊदी अरब में तैनात अमरीकी सरकारी मुलाजमीन को ताइफ और यम्बू शहरों के तमाम सरकारी और जाती सफर के लिए खसूसी इजाजत हासिल करना होगी। सऊदी अरब में अमरीकी मिशन ने बताया कि यह पाबंदियां सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर आयद की गई हैं। मिशन ने सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी शहरियों पर जोर दिया है कि वो मोहतात रहें और तजवीज करदा हिफाजती इकदाम पर पूरी तरह अमल करें। यह अलर्ट यमन के हौसी ग्रुप की जानिब से सऊदी अरब पर किए गए हमलों के बाद जारी किया गया है, जिनमें रियाज की जानिब दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। ताजा कशीदी के बाद पूरे सऊदी अरब में सिक्योरिटी इकदाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं। सऊदी हुकाम ने फजाई हमले के मुमकिन खतरे के तनाजुर में हंगामी इंतबाह भी जारी किया है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप कल न्यूयॉर्क में यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे, ताकि रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में कमी लाने की कोशिशों को आगे बढ़ाया जा सके। तवक्को है कि दोनों रहनुमा मुखासमत को कम करने और मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने के इकदामात पर बातचीत करेंगे। ये मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर हो रही है। भारत के महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने बताया है कि राजस्थान के मजीद कुछ इलाकों और पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ के कुछ इलाकों से अगले दो दिन में जुनूब मगरबी मानसून के इख्तिताम की तरफ बढ़ने के हालात हैं। महकमे ने झारखंड, उड़ीसा, रायलसीमा, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जजायर में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने के साथ साथ गरज चमक के साथ छींटा पड़ने की पेशगोई की है। इसी तरह के मौसमी हालात मशरकी राजस्थान, गुजरात, केरला, माहे, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी भारत के कुछ इलाकों में कल तक इसी तरह के मौसम का इम्कान जाहिर किया है। उज़्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें मरहले में भारत के मर्दों की शतरंज टीम ने हॉलैंड के खिलाफ 3-1 से शानदार कामयाबी हासिल की है, जबकि भारतीय खवातीन टीम को पोलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारत के मर्दों की टीम ने मुसलसल 5 मैच जीतकर अपनी कामयाबी का सिलसिला बरकरार रखा और वो उज़्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ लीडर बोर्ड्स पर मुश्तरका तौर पर सरफहरिस्त है। आर प्रज्ञानंदा ने चंद ड्रॉज के बाद शानदार वापसी करते हुए अनिश गिरी को शिकस्त दी। अर्जुन इरिग्यासी ने सख्त मुकाबले के बाद जॉर्डन वान फॉरेस्ट के खिलाफ मैच ड्रॉ किया। निहाल सरीन ने तजर्बाकार लोइक वान वेली के खिलाफ आसानी से ड्रॉ हासिल किया, जबकि डी गुकेश ने अपनी बेहतरीन फॉर्म बरकरार रखते हुए इरविन को शिकस्त दी और 5 खेलों में अपनी चौथी इनफरादी फतह हासिल की। दूसरी जानिब भारतीय खवातीन टीम को टूर्नामेंट में पहली बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ा। आर वैशाली की शिकस्त महंगी साबित हुई, क्योंकि टीम के बाकी खिलाड़ी इस कमी को पूरा ना कर सके, जिसके नतीजे में टीम को 1.5-2.5 से मामूली शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद खवातीन की टीम 8वें नंबर पर आ गई है। ताम वापसी के लिए अभी 6 राउंड बाकी हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया अमर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, अक्वामे मुत्तहिदा जनरल इजलास में वजीर खारजा एस जयशंकर भारत की नुमाइंदगी करेंगे और आलमी अमन इकतसादी उमूर, न्यूक्लियाई हथियार जैसे अहम मसाइल पर मुल्क का मौकफ रखेंगे। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफ़े पर ईरान अमरीका जंग से मुतालिक खबरों को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, जंग खत्म करने का फैसला अब अमरीका के सवाबदीद पर है, ईरान का बयान।

0: अभी हाजिर होते हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। और दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। और आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और हम आपको बताना चाह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1981 में की गई थी। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में शांति के आदर्शों को मजबूत बनाना, अहिंसा को बढ़ावा देना और युद्ध संघर्षों को रोकना है। आपको बता दूं, यह दिवस हमें याद दिलाता है कि वास्तविक शांति केवल युद्ध का न होना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान, संवाद और सहयोग की भावना रखना है। श्रोताओं, शांति केवल बड़े बड़े सम्मेलनों से तय नहीं होती, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में छोटे छोटे व्यवहार और सहनशीलता से बनती है। जब हम बात सहनशीलता की करते हैं दोस्तों, तो आज की युवा पीढ़ी, या यूं कहें कि आज के लोगों में सहनशीलता की बहुत कमी हो गई है। सब कुछ बस फटाफट चाहिए, वरना सब्र का बांध टूट जाता है और फिर आक्रोश हावी हो जाता है। और भाई, जब आक्रोश हावी हो जाता है तो सब कुछ गड़बड़ झाला हो जाता है। और गड़बड़ झाला मत कीजिए। और मुझे भी याद है कि मैं बातें बहुत करती हूँ, लेकिन ये भी याद है कि आपका मनोरंजन भी करना है। तो भाई, चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक पर।

क्यों श्रोताओं, भाई आप तो मेरे दिल के करीब ही रहते हैं। आप बताइए कि आपके दिल के करीब कौन कौन रहता है। भाई हमारे प्रोग्राम तो रहते ही हैं। भाई अब हम बात करते हैं कि आक्रोश हावी हो जाता है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर। तो भाई जल्दबाजी ना करें, योग करें, तभी दिमाग शांत होगा और तभी देश भी आगे बढ़ेगा। चलिए वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम हम आपको बता देते हैं। तो जी थीम इस साल की इस प्रकार है कि शांति में निवेश करें, सभी के लिए, हर जगह, हर दिन। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि शांति केवल एक बार का लक्ष्य नहीं, बल्कि इसके लिए हर दिन प्रयास करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य लोगों और समाजों को संवाद, आपसी सहयोग और शांतिपूर्ण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है। तो जी श्रोताओं, मेरा तो यही कहना है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत यदि आपको करनी है तो पहले खुद से करिए, फिर परिवार, फिर समाज और फिर देश से। मेरा मानना है कि जब खुद से शुरुआत करेंगे ना, तो वो हैंड टू हैंड बढ़ती जाएगी। और आइए इस दिन को सार्थक बनाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा की इस भूमि को शांतिमय बनाते हैं और चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर।

0: साथ नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। अब ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मिलते ही रहेंगे और आप हमसे वादा करिए कि आप हमारा प्रोग्राम इसी तल्लीनता के साथ सुनते रहेंगे। आज बस इतना ही। आप सभी का जीवन शांतिमय और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को मिलकर शांति के साथ मनाते हैं। और अब अपनी वीडियो हमारा नीलम श्रीवास्तव को कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी जी की थी। इसी के साथ

0: अपनाए।
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लाए हैं शागिर्द फिल्म से, और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है लता मंगेशकर जी ने। मजरू सुल्तानपुरी जी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है। तो भाई दिल की बात करते हैं फिल्म संगीत में, और जब कोई नटखट दिलरुबा सामने हो तो बात ऐसी ही होती है।

भाई कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको संगम फिल्म से सुनवाते हैं। लता मंगेशकर और मुकेश जी की खूबसूरत सी आवाज़ है और इस गीत की रचना की है शैलेंद्र ने। शंकर जयकिशन जी का संगीत है और ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर।

सही बात है, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। और अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। इस गीत को हमने लिया है रन फिल्म से। अलका याग्निक और सोनू निगम जी की आवाज़ है, समीर की रचना है, हिमेश रेशमिया का संगीत है। और ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर। दिल की जो बातें हैं कह भी दीजिए।

संगीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बागपत और फतेहपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख है राजीव कुमार का।
2: भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बागपत की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को वर्ष 2025-26 के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ नराकास का राष्ट्रीय सम्मान मिला है। मुंबई में आयोजित छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में गृह मंत्रालय की ओर से समिति अध्यक्ष और केनरा बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख मिन्हाजुल कमर तथा समिति सचिव एवं वरिष्ठ राजभाषा प्रबंधक अभयनाथ मिश्र ने यह सम्मान प्राप्त किया। देश में कुल 592 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में बागपत की समिति को यह सम्मान पहली बार मिला है। समिति द्वारा केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ नियमित समीक्षा बैठकें, हिंदी कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। समिति ने राजभाषा कार्यान्वयन में डिजिटल नवाचार को भी बढ़ावा दिया। हिंदी सेतु ऐप के माध्यम से हिंदी राजभाषा से जुड़े संसाधन एक मंच पर उपलब्ध कराए गए। वहीं कालिंदी धारा पत्रिका के नियमित प्रकाशन से रचनात्मक हिंदी को मंच मिला। सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया। ब्रिक्स यूथ ट्रैक के तहत आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बागपत के युवा अमन कुमार ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में अमन ने ब्रिक्स देशों के युवा प्रतिनिधियों के समक्ष पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत की पहलों को प्रमुखता से रखा। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम और मिशन लाइफ जैसे अभियानों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने की बात रखी। त्योरही गांव के अमन कुमार ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के युवाओं ने साझा चुनौतियों पर चर्चा की और विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त सुझाव प्रस्तुत किए।
3: युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा ब्रिक्स यूथ ट्रैक के तहत आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के युवाओं के साथ मुझे संवाद का मौका मिला, जिसमें मैंने भारत में पर्यावरण क्षेत्र में हो रहे कार्य को प्रमुखता से रखा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वह भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भी जनभागीदारी सुनिश्चित करने की पहल की है, जिसमें मुझे एक युवा के रूप में अपनी बात, अपनी विचार दर्ज कराने का मौका मिला।
2: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत बागपत ने मेरठ मंडल में बेहतर प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जारी वित्तीय वर्ष 2026-27 की 11 सितंबर तक की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जिले में करीब 40% ऋण आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है। योजना के तहत बागपत को पूरे वित्तीय वर्ष में 1300 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया गया है। सितंबर तिमाही तक 325 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य था। इसके सापेक्ष अब तक 512 युवाओं के आवेदन अंतिम रूप से स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 422 लाभार्थियों के खातों में ऋण राशि वितरित की जा चुकी है। बागपत में कृष्णा नदी के पुनरुद्धार का विशेष अभियान असारा गांव से शुरू किया गया है। सहारनपुर से निकलकर बागपत में प्रवेश करने वाली कृष्णा नदी जिले की सीमा में करीब 29 किलोमीटर तक बहती है और 12 गांवों से होकर हिंडन नदी में मिलती है। जिलाधिकारी अस्मिता लाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में नदी के कायाकल्प की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। जीपीएस और स्थलीय सर्वे के आधार पर नदी के प्रवाह क्षेत्र और जरूरत वाले स्थानों को चिन्हित किया गया है। अभियान के तहत नदी और उससे जुड़े नालों से मिट्टी, कूड़ा और अन्य अपशिष्ट हटाए जाएंगे। अतिक्रमण के कारण बाधित जल प्रवाह को बहाल करने के साथ आवश्यकता अनुसार नदी की गहराई और चौड़ाई दुरुस्त की जाएगी। नदी किनारे पौधरोपण और जल संरक्षण के कार्य भी कराए जाएंगे। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। जिले के लगभग 700 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बागपत पोषण वृक्ष अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत विद्यालयों में आंवला, जामुन और इमली के पौधे लगाए जा रहे हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पौधों की नियमित देखभाल का संकल्प लिया। अभियान का उद्देश्य बच्चों को पोषण और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना है। मलकपुर चीनी मिल में किसानों के गन्ना मूल्य का शत

0: प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। बागपत कलेक्ट्रेट में मिल प्रबंधन की ओर से 49 करोड़ 13 लाख रुपए की अंतिम किस्त का चेक जिलाधिकारी अस्मिता लाल को सौंपा गया। इसके साथ ही मिल पर किसानों का कोई बकाया नहीं रह गया है। सहकारी गन्ना विकास समिति मलकपुर के चेयरमैन अंकित वीर ने बताया कि समय पर भुगतान होने से किसानों को रबी फसलों के लिए खाद, बीज, कीटनाशक और डीजल की खरीद में सुविधा मिलेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है।
1: बागपत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नितेश श्रीवास्तव का।
2: फतेहपुर जिले में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 18 सितंबर को अपनी पत्नी सविता कोविंद और बेटी स्वाति कोविंद के साथ जिले के कल्याणपुर क्षेत्र के आदमपुर गांव पहुंचे, जहां जिलाधिकारी रीति गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने गार्ड ऑफ ऑनर के तहत शिष्टाचार भेंट की, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय अमरजीत सिंह जनसेवक की पत्नी स्वर्गीय प्रमिला सिंह के 13वीं कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व राष्ट्रपति ने स्वर्गीय प्रमिला सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान परिवार के लोगों से मिलकर उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूर्व मंत्री स्वर्गीय अमरजीत सिंह जनसेवक के निधन के समय पूर्व राष्ट्रपति किसी कारणवश उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। अब उनकी पत्नी स्वर्गीय प्रमिला सिंह के निधन की जानकारी मिलने के बाद वह आदमपुर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पूर्व राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट रहा। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर फतेहपुर जनपद में टूल किट एवं चेक वितरण का कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह में राज्य मंत्री कृष्णा पासवान की उपस्थिति में लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सचिव प्रसारणों को देखा व सुना गया। जनपद स्तरीय कार्यक्रम का राज्य मंत्री कृष्णा पासवान सहित अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। राज्य मंत्री ने भगवान विश्वकर्मा जी जयंती एवं प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सभी वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। उन्होंने समाज की आधी आबादी को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ते हुए उनको सम्मान दिया है और कारीगरों कामगारों के अर्थोन्नयन के लिए टूल किट व आधुनिक मशीन देकर आधुनिकता के साथ जोड़ा है, जिससे वह आगे बढ़ रहे हैं। यही सब अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का जब उत्थान होगा तब भारत को विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री का जो विजन है कि वर्ष 2047 तक भारत का विकसित राष्ट्र बनाना है की दिशा में हम अग्रसित है, इसका जीता जागता उदाहरण आप योजनाओं से लाभान्वित होकर लोगों के विकास व परियोजनाओं से धरातल पर स्पष्ट रूप से विकास दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के अविरल सेवा और उनके विजन को हम देख सकते हैं कि वर्ष 2014 में पहले देश कहां था के बाद आज देश की स्थिति कितनी सुदृढ़ हुई है। विदेशों में भारत का डंका बज रहा है।
3: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री बने विभिन्न क्षेत्रों में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कार्य न हुआ। इस जन्मदिन के अवसर पर कहा सेवा दिवस संकल्प मना करके लोगों तक पहुंचना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा सेवा मेरा अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो तथा सर्फ ह्यूमिनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में 26 उत्साही युवाओं ने बढ़ चढ़ के स्वैच्छिक रक्तदान किया। शिविर का भव्य उद्घाटन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने फीता काटकर किया। मुख्य अतिथि साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि रक्तदान महादान है। हमारे द्वारा दिया गया रक्त का एक कतरा किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत युवाओं का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय एवं अनुकरणीय है। समाज के हर स्वस्थ नागरिक को नियमित रूप से रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। रक्तदान के पश्चात मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा सभी रक्तदाताओं को उत्साहवर्धन हेतु प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। फतेहपुर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स एवं पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक द्वारा जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों बड़ाहार सदनापुर एवं बिंदकी फार्म का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा बाढ़ की स्थिति प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन सुरक्षा व्यवस्था एवं आमजन को उपलब्ध कराई जा रही आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया गया। तत्पश्चात अधिकारियों द्वारा अभयपुर स्थित बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण कर राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई तथा शिविर में रह रहे प्रभावित लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यक के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। निरीक्षण के दौरान जहानाबाद विधायक राजेंद्र सिंह पटेल भी उपस्थित रहे। साथ ही संबंधित अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, प्रभावित लोगों को समय से राहत सामग्री एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
4: प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में हम लोग ने यहाँ पर अस्थायी रुकने की व्यवस्था कर रखी है और अभयपुर में ये व्यवस्था का निरीक्षण करा गया। किस प्रकार वहाँ पर लोगों को हम लोग खाना पहुँचा सकते हैं, शुद्ध पेयजल पहुँचा सकते हैं, उसका भी प्रॉपर निरीक्षण किया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जिला प्रशासन

0: सतर्क है और कॉन्स्टेंटली वाटर लेवल्स को मॉनिटर कर रही है और कैसे लोगों में प्रॉपर सुविधा पहुंचाई जा सके और कैसे लोगों को कोई असुविधा ना हो उसका पूरा ध्यान रखें।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए देशगान।

श्रोताओं, अभी आप देशगान सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: उर्दू प्रोग्राम
1: आज की उर्दू बज्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाएं। सामीन, बिलाशुबा अमन मुआशरे की एक ऐसी ज़रूरत है जो हर मज़हब और हर कौम की मुश्तरका ज़रूरत है। किसी भी मुआशरे की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए अमन का क़याम बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से आज आलमी सतह पर आलमी योम अमन मनाया जा रहा है। दोस्तों, दुनिया भर में अमन, रवादारी और बाहमी एहतराम की अहमियत को उजागर करने के लिए हर साल 21 सितंबर को आलमी योम अमन मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अमन सिर्फ जंग ना होने का नाम नहीं, बल्कि ऐसा माहौल पैदा करना है जहां हर इंसान को जिंदगी, आज़ादी, इज्जत और तरक्की के मसावी मौके हासिल हों। अलावा अजी, आलमी अमन के क़याम में तालीम का बुनियादी किरदार है, इसलिए कि अगर नई नस्ल को मजहबी, सकाफती, रवादारी, इंसानी अकदार, इख्तलाफ राय के एहतराम और तशद्दुस से गुरेज की तालीम दी जाए तो माशरे में अमन की बुनियाद मजबूत हो सकती है। इसी तरह मीडिया और सोशल मीडिया को भी नफरत और इश्तियाल के बजाय अमन, इत्तिहाद और मुसबत मुकालमों के फरोग का जरिया बनाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। नीज आज दुनिया को ऐसे फैसले लेने की भी ज़रूरत है जो आने वाली नस्ल को महफूज, खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल फराहम कर सकें। अगर अक्वाम आलम ने ताकत के बजाय अक्ल, मफादात के बजाय इंसानियत और तसादुम के बजाय तआवुन को तरजीह दी तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया हकीकी अमन का गहवारा बन सकती है। इन्हीं सब बातों के पेश नज़र आज हमने एहतमाम किया है एक बातचीत का। मौजू है आलमी योम अमन, वक्त की अहम ज़रूरत। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज की उर्दू बज में हमारे साथ तशरीफ फरमाएं जनाब डॉक्टर वजाहत हुसैन रिजवी साहब, साबिक एडिटर माहनामा नया दौर लखनऊ, और जनाब मुईद रहबर साहब, मशहूर शायर और नाचीज सैयद मोहम्मद उमैर। हम सबसे पहले अपने दोनों खसूसी मेहमान का आज के इस बेहद खूबसूरत प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं।
2: शुक्रिया।
1: और अब बगैर किसी तमीद व ताखिर डॉक्टर वजाहत हुसैन साहब से सवाल है। वजाहत साहब, मौजू की मुनासिबत से आलमी योम अमन मनाने का बुनियादी मकसद क्या है और मौजूदा आलमी हालात के मद्देनजर इसकी अहमियत क्यों बढ़ती मालूम होती है, इसकी हमारे सामीन के लिए वजाहत फरमाएं।
3: सबसे पहले मैं उमर साहब को, रहबर साहब को और अपने तमाम सामईन को आलमी योम अमन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने जो सवाल किया है आलमी योम अमन से मुतालिक, तो आलमी योम अमन मनाने का बुनियादी मकसद दुनिया भर में जंग व जदल, तशद्दुद व नफरत का खात्मा करके इंसानियत के दरमियान बाहमी रवादारी, भाईचारे की फिजा कायम करना है। बुनियादी मकसद इंसानी हकूक का एहतराम, जंग बंदी का नफाज और दुनिया को पुरअमन बनाना है। मौजूदा आलमी हालात किसी से छुपे नहीं हैं। यूक्रेन रूस, इसराइल ईरान, अमेरिका ईरान, यमन अरब, इसराइल फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो आप सबके सामने है। इन जंगों को फौरी तौर पर इन मुल्कों को खत्म करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
3: बाज़ ममालिक मुख्तलिफ इलाकाई जंगों, सियासी कशमकश और अदम मसावात के शिकार हैं। इस दिन यानी 21 सितंबर की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है ताकि इंसानों को तबाही से बचाने के लिए इज्तिमाई सोच बेदार की जा सके।
1: बहुत खूब, बहुत ही उम्दा बात आपने कही कि आलमी योम अमन मनाने का बुनियादी मकसद दुनिया को जंग व तशद्दुद से पाक करने, बाहमी रवादारी, इंसानी हुकूक और पुरअमन बकाए बाहमी को फरोग देना है। ये आप कह रहे हैं बहुत ही

0: अच्छी बात कह रहे हैं। मजीद आपने कहा कि मौजूदा दौर में मुख्तलिफ खित्तों में जारी जंगों, तनाजुआत और कशीदगी के बाइस इस दिन की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि पायदार तरक्की और खुशहाली के लिए अमन नागुजीर है, जरूरी है, इस तरफ तवज्जो देने की खास जरूरत है। ये आपने कहा, बहुत ही उम्दा कहा। एक और सवाल यहाँ पढ़ लेंगे वजा साहब
1: जी।
0: आलमी अमन के कयाम में अक्वामे मुत्तहिदा और दिगर आलमी इदारों का किरदार किस हद तक मुअस्सर है, इस पर आप क्या कहते हैं?
1: देखिए, अक्वामे मुत्तहिदा ने दुनिया भर में इस मिशन और मुज़ाकरात के जरिए कई तनाज़ात को सुलझाया है। आपने देखा होगा कि आज जो जंगें हो रही हैं उनके लिए भी अक्वामे मुत्तहिदा ने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं रहा। कुछ बड़ी ताकतों के सियासी मुफादात और वीटो पावर के गलत और जारहाना इस्तेमाल की वजह से ये इदारे कई अहम मुकामात पर मजलूमों को इंसाफ दिलाने में लाचार नजर आते हैं। आज अक्वामे मुत्तहिदा और इन ममालिक को चाहिए कि इस दिन की अहमियत को समझते हुए जगबंदी करें। जब तक अक्वामे मुत्तहिदा में सुपर पावर का वीटो काम करता रहेगा, इसका बुनियादी मकसद पूरा होता नजर नहीं आता है।
0: तो बहुत ही उम्दा बात आपने कही कि अक्वामे मुत्तहिदा और दिगर आलमी इदारे तनाजुआत के हल, मुजाकरात के फरोग, इंसानी इमदाद और अमन के कयाम में अहम किरदार अदा करते हैं। ये मुसल्लम हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ताहम उनकी मौसरियत उसी वक्त बढ़ सकती है जब तमाम ममालिक आलमी कवानीन का एहतराम करें और अपने मफादात से बालातर होकर इज्तिमाई तौर पर अमन के लिए कोशिश करें, जो आज की जरूरत है। बहुत ही उम्दा बात आपने कही। यहाँ पढ़ लेंगे एक वक्फा। वक्फे के दरमियान आपको सुनवाते हैं, हमारे दरमियान मशहूर शायर जनाब मुईद रहबर साहब तशरीफ फरमाए। हम दरख्वास्त करेंगे कि अपना उम्दा कलाम अमन के ताल्लुक से पेश फरमाएं।
2: मतलब पेश खिदमत है, मुलाजा फरमाएं।
1: बताओ।
2: दुनिया में हम यूं अमन का परचम उठाएंगे, परचम उठाएंगे। दुनिया में हम यूं अमन का परचम उठाएंगे, हर समत एक सफेद कबूतर उड़ाएंगे, कबूतर उड़ाएंगे।
1: क्या
2: हर

ही जाएंगी नफरत की आंधियां, नफरत की आंधियां। एक रोज थम ही जाएंगी नफरत की आंधियां, हम फिर से इत्तेहाद की शमुएं जलाएंगे, शमुएं जलाएंगे। हम फिर से इत्तेहाद की शमुएं जलाएंगे, शमुएं जलाएंगे। फिर बोल बाला होगा उखुवत का हर तरह।

0: लगाएंगे गले से लगाएंगे। और ये भी शेर के होता नहीं लड़ाई से झगड़े से कुछ भला, झगड़े से कुछ भला, होता नहीं लड़ाई से झगड़े से कुछ भला, रहबर ये बात सारे जहां को बताएंगे, जहां को बताएंगे।
1: समीन, अभी आप जनाब मुईद रहबर साहब का उम्दा कलाम समाअत फरमा रहे थे, जो अमन के हवाले से आप पेश कर रहे थे, बहुत ही उम्दा कलाम था। हम आपको फिर उसी फिजा में लेकर वापस पलटते हैं, जहां हम जनाब डॉक्टर वजात हुसैन रिजवी साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं अमन के ताल्लुक से। वजात साहब, एक सवाल हो रहे हैं यहाँ पर, मजहबी और तहजीबी रवादारी अमन के क्याम में क्या किरदार अदा कर सकती है, इस पर इजहार ख्याल फरमाएं।
2: बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि दुनिया का कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जिसका बुनियादी जो मकसद होता है वो अमन पर ही मुबनी होता है। तो यही कि दुनिया का हर मजहब अमन व आश्ती, इंसानियत और एक दूसरे का एहतराम करना सिखाता है। भाईचारे, इंसान दोस्ती, रवादारी से माशरती खलेज को कम किया जाता है, गलत फहमियाँ मिटती हैं और मुख्तलिफ तहजीबें

0: खूब।
1: और ये शेर बतौर खास के बैठे हैं इसके पहरे पा अरबाबे इत्तेहाद, बैठे हैं इसके पहरे पा।

0: गम जब तक हमारे पास है जागीर हम की।
1: सामीन, अभी आप जनाब मुईद रहबर साहब से उनका ये उम्दा कलाम समाप्त फरमा रहे थे, जिसमें वो अमन के ताल्लुक से आपसे बहुत ही उम्दा तरन्नुम में अपने अशार को पेश कर रहे थे। एक मरतबा फिर हम उसी फिजा में आते हैं जहां पर हम डॉक्टर वजात हुसैन साहब से अमन के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल डॉक्टर वजात हुसैन साहब से करेंगे कि अगर दुनिया में हकीकी और पायदार अमन कायम करना हो तो आपके नज़दीक पहला अमली कदम क्या होना चाहिए? नीज आलमी अमन के हवाले से आज आप हमारे सामेईन को क्या पैगाम देना चाहेंगे, वजाहत फरमाएं।
2: जी, सबसे पहले अपनी रियासत और मुल्क में मेल मोहब्बत इंसान दोस्ती का किरदार अमली तौर पर अदा करना होगा।
1: बिल्कुल।
2: मुल्क की खारजी पॉलिसी गैर जानिबदार होनी चाहिए, मजलूम के लिए आवाज उठाने चाहिए, उन ममालिक जिनमें जंग हो रही है मुजाकरात के जरिए सुलह कराना चाहिए, अमन का पैगाम आम करना चाहिए। सबसे पहला कदम माशी और माशर्ती इंसाफ है, क्योंकि नाइंसाफी मजालिम और गुर्बत ही जंगों की जड़ होती है। जहां तक आपने पैगाम की बात की है, तो आज के इस आलमी योम अमन पर मैं दुनिया भर में अमन की अहमियत को उजागर करना और जंग और तशद्दुद के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए, तमाम ममालिक और अफराद से जंग बंदी और बाहमी ताउन को फरोग देने की अपील की जाती है। हमें नफरत के खात्मे और मोहब्बत की तरवीज के लिए खुद से इकदाम करना होगा।
1: बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन आपने गुफ्तगू की अपनी, कि हकीकी और पायदार अमन के लिए पहला अमली कदम मुकालमा, बातचीत, इंसाफ और बाहमी एहतराम है जो आप कह रहे हैं। आलमी तनाजुआत को ताकत के बजाय मुजाकरात के जरिए हल करना चाहिए, ये बात आपने रखी, बहुत ही मुसल्लम और हकीकत पर मबनी बात रखी आपने। पैगाम बहुत ही अच्छा दिया आपने कि नफरत के बजाय मोहब्बत, जंग के बजाय अमन और तसादुम के बजाय तआवुन को इख्तियार किया जाए, क्योंकि अमन पूरी इंसानियत की मुश्तरका जिम्मेदारी है। यहाँ पर एक आखिरी मरतबा जनाब मुईद रहबर साहब से हम फिर दरख्वास्त करते हैं कि आखिर में एक मरतबा फिर जाते जाते मुख्तसर अपना अमन का कलाम पेश करते
0: हैं। मतलब पेश खिदमत खत्म न

0: ख्वाहिश ये है कि हर इंसान हम पियाला हो हम निवाला हो और सबको दुनिया में हक मिले यकसा, कोई गोरा हो वो के काला और मक्ता के देगा रहबर वो अमन का पैगाम, देगा रहबर वो अमन का पैगाम, जिसने उल्फत में खुद को ढाला हो अमन का हर तरफ उजाला। बहुत शुक्रिया
1: सामीन। अभी आप जनाब मोहित रहबर साहब का उम्दा कलाम समाप्त फरमा रहे थे। सामीन, आज की इस संजीदा और बामकसद बातचीत से यह हकीकत वाजे होकर सामने आती है कि आलमी योम अमन किसी एक मुल्क, एक इदारे या किसी एक नजरिए की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये पूरी इंसानियत की मुश्तरका जिम्मेदारी है। जंग, तशद्दुद और नफरत वक्ती तौर पर किसी फरीक को बढ़तरी तो दे सकते हैं, मगर पायदार अमन सिर्फ मुजाकरात, इंसाफ, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम ही से मुमकिन है। तो फिर आइए आलमी योम अमन के इस मुबारक मौके पर हम अहद करें कि नफरत को मोहब्बत से, इख्तलाफ को बातचीत से और तशद्दुद को अमन के पैगाम से शिकस्त देने की भरपूर कोशिश करेंगे। अमन सिर्फ एक ख्वाब नहीं, बल्कि ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी और वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। और अब हम अपने दोनों खुसूसी मेहमान जनाब डॉक्टर वजाद हुसैन रिजवी साहब और जनाब मोहित रहबर साहब के बे इंतहा ममनून व मशकूर हैं कि आप हजरात ने हमारे सामीन के लिए बहुत ही उम्दा और अच्छी मालूमात फराहम की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अपने में

0: मेजबान दोस्त सैयद मोहम्मद उमेर को दीजिए इजाजत। आदाब।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं ज्योति आनंद। आज आप इनके स्वर में गीत और भजन का आनंद लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं ज्योति आनंद के स्वर में गाया ये भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं भी आप ज्योति आनंद के स्वर में गाए गीत और भजन का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ. जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी को उसके 15वें स्थापना दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में सेकी ने भारत की अक्षय ऊर्जा यात्रा को आगे बढ़ाने और देश के स्वच्छ ऊर्जा तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। इन हवाई अड्डों का विकास पुरुलिया के छर्रा, दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट, अलीपुर द्वार के हासीमारा और पश्चिम मेदिनीपुर के कलाईकुंडा में किया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने संघर्ष को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमरीका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतने का सिलसिला बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10:05 हो रहे हैं और ये वक्त है आपके अपने कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज का। तो वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में आज आप जीन थेरेपी और जीन

0: एडिटिंग चुनौतियां, संभावनाएं और हमारी जिम्मेदारी विषय पर प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव से अभिनव प्रक पांडे जी की बातचीत सुनेंगे। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी जी की है, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज।
1: श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अलग अलग तरह के कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, लेकिन आज जो हम साक्षात्कार आपके लिए लेकर के आए हैं, ये बहुत ही रोचक होने वाला है। रोचक इसलिए होने वाला है क्योंकि हमने जो आज विषय चुना है, वो विषय सामान्य विषयों से थोड़ा हटकर है, थोड़ा इतर है, और इसलिए है क्योंकि ये एक क्रांति है चिकित्सा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में। एक मनुष्य का जो स्तर है, वो जो भी कार्य इस पर हो रहे हैं, अगर वो अपने वास्तविक रूप में परिणत हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है पूरी मानवता के लिए, पूरे संसार के लिए। आज हम बात करेंगे जीन एडिटिंग के ऊपर। क्यों इस पर इतना रिसर्च हो रहा है, क्यों इतना अनुसंधान हो रहा है, इसकी जो नैतिक सीमाएं हैं, ये कहाँ तक सफल हो सकता है, जीन एडिटिंग से जुड़े सभी पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव को। प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, आपका आकाशवाणी प्रयागराज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बहुत सरल भाषा में बताइए कि ये जीन एडिटिंग क्या है और किसी जीव के डीएनए में कैसे बदलाव कर सकते हैं।
2: देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि हर जीवाणु या हर ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बना हुआ है, और उस सेल के अंदर एक अनुवांशिक तत्व जिसे हम डीएनए भी बोलते हैं, वो होता है। डीएनए जो है वो हर अलग अलग साइज का हो सकता है ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। जो भी जीवाणु की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें, तो डीएनए का साइज जो है ह्यूमन जीनोम का करीब 3 बिलियन बेसेस का है।
1: अच्छा।
2: 3 बिलियन बेसिस का मतलब यह है कि अगर आप एक पेज पे अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं और 3000 अल्फ़ाबेट्स अगर एक पेज पे आप लिख पा रहे हैं, तो आप उसकी अगर किताब बनाते हैं तो करीब 1 मिलियन पेजेस या 10 लाख पेजेस की वो बुक बनेगी। तो इतना बड़ा जीनोम होता है ह्यूमन का, अलग अलग जीवाणियों का अलग अलग जो है तरह का जीनोम हो सकता है। डीएनए जो है कुल 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस से बना है, एडेनिन, थाइमिडिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो यही 4 तरह के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनका एक सीक्वेंस जो है वो जीनोम बनाता है किसी भी जीव का। ये जीनोम जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स है, किसी भी जीव के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स को हम जीनोम बोलते हैं। तो अब इसमें हमें समझ पाना कि हाँ कौन सा जीन कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, बहुत मुश्किल है, और केवल ATGC से कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन जो सेल है वो इससे एक सेंस बना लेता है, क्योंकि इस सीक्वेंस में भी कहीं कॉमा कहीं फुल स्टॉप लगे हुए हैं। वो कॉमा फुल स्टॉप डिसाइड करते हैं कि कौन सा जीन जो है कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। और हर जीन किसी न किसी प्रोटीन को बनाता है, और वो जो है उस सेल के लिए काम करते हैं। तो अब जब हम बात करते हैं एडिटिंग की, तो उस किताब में से कोई एक बेस, कोई एक लेटर आपको अगर हटाना है, ठीक है, तो ये भी एक एडिटिंग का पार्ट होगा। तो बेसिकली मूलतः जो है हम जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग में हम यही करते हैं।
1: क्या एक लेटर हटा करके पूरी किताब का मतलब बदल सकता है?
2: हाँ, एक लेटर भी कभी कभी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही ये लेटर्स का जो सीक्वेंस होता है वो किस तरह का प्रोटीन बनाएगा वो डिसाइड करता है। अगर एक लेटर भी चेंज होता है तो उस प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिससे उस प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि सिकल सेल एनीमिया, जो बहुत एक तरह का अनुवांशिक रोग है, जो कि बीमारी है जो कि लोगों में हो सकती है, तो उसमें केवल एक बेस के चेंज होने से जो प्रोटीन का सीक्वेंस है वो बदल जाता है। एक अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह वैलिन हो जाता है। ये जो प्रोटीन की बात कर रहे हैं वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन में एक बेस डीएनए में चेंज होने से वो ग्लूटामिक एसिड से वैलिन में बदल जाता है वो प्रोटीन के सीक्वेंस में, जिससे वो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो ख़राब हो जाती है, और उस वजह से अब वो ऑक्सीजन को वैसे नहीं बाइंड कर पाती है जैसे कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन बाइंड करती है। तो इसकी वजह से ये सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी होती है ये लोगों में होती है।
1: और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, असाध्य बीमारियां हैं, जिनका इलाज या उपचार जीन एडिटिंग के

0: माध्यम से किया जा सकता है।
1: ये सब जो है एक जीन थेरेपी का पार्ट है, मतलब जीन थेरेपी के अंदर ही जो है जीन एडिटिंग भी आती है। तो देखिए इनका इसमें जो है जीन एडिटिंग यूज़ करके आप बहुत तरह के असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है। इसमें हीमोफीलिया हो गया, बीटा थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत तरह की ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि किसी जीन के खराब होने की वजह से हो रही हैं। तो ये सारी बीमारियां जो हैं जीन एडिटिंग यूज करके आप उनको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी को भी जो है जीन एडिटिंग से ठीक किया जा सकता है। और जीन एडिटिंग से केवल बीमारियां ही नहीं, नए नए तरह के फसल भी तैयार किए जा सकते हैं। केवल हेल्थ के ही फील्ड में नहीं, इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर और बहुत अलग अलग तरह की फील्ड्स में भी जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
0: श्रोताओं, बातें तो और भी चलती रहेंगी, आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

प्रोफेसर श्रीवास्तव, बहुत सारे लोग साइंटिफिक मोरालिटी की भी बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप एक तरह से कुदरत के साथ किसी हद तक अभी फिलहाल

0: छेड़छाड़ कर रहे हैं, अब ये हद कहाँ तक जाएगी ये नहीं कह सकते, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: ये बात में काफ़ी सच्चाई है, क्योंकि देखिए जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स को मॉडिफाई करने में बहुत ज़्यादा रेगुलेशन नहीं होता है, क्योंकि जो है अगर वो खाने वाला प्लांट की स्पीशीज़ नहीं है तो उससे जो है ह्यूमन को बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, दूसरे जानवरों को भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हेल्थ केयर की बात आती है, जब आप जो है किसी ह्यूमन के जीन को बदल रहे हैं, तो अब ये सब इतनी नई टेक्नोलॉजीज हैं कि चेंज करने के बाद आगे कितने दिन तक देखा जाए कि इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जो बीमारी थी वो तो ठीक हो गई जिसके लिए ये किया गया, लेकिन अगर कुछ और गड़बड़ियां हो रही हैं शरीर में जो कि अभी हमें पता नहीं है, इसलिए जो है आंख बंद करके इस तकनीक पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं।
0: क्या आने वाले समय में बुढ़ापे को भी टाला जा सकता है इसके माध्यम से? बहुत सारे लोग इसके इंतजार में बैठे हुए हैं।
1: देखिए, एजिंग जो है एक नेचुरल प्रोसेस है
0: जी।
1: इससे कोई भी अछूता नहीं है, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों। लोगों ने काफ़ी तरह की रिसर्च की है एजिंग के ऊपर, जिसमें कि काफ़ी तरह के जीन्स भी लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि एजिंग बढ़ा और घटा सकते हैं
0: जी।
1: तो कुछ हद तक मैं मानता हूँ कि आप जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर हालत में उसकी भी एक लिमिट होगी।
0: बिल्कुल, जब हम बात करते हैं प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग की, तो एक टर्म बहुत आजकल चर्चा में है, वो है क्रिस्पर कैस नाइन। ये क्या है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को संक्षेप में बताएं।
1: क्रिस्पर कैस नाइन क्लस्टर्ड रिपीटेड इंटरस्प्रेड पैलिंड्रोमिक रिपीट्स होते हैं। ये बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम एक समझ सकते हैं या फिर डिफेंस सिस्टम का पार्ट होते हैं। जैसे बैक्टीरिया में कोई वायरस जो है अगर इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरिया क्या करता है कि उस वायरस के डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के ख़त्म कर डालता है। लेकिन कुछ पार्ट जो है कभी कभी बैक्टीरिया के जीनोम में भी जो है जुड़ जाता है किसी प्रकार से। 27-28 बेस का रिपीट जो है वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो है पूरे बैक्टीरिया के जीनोम में प्रेजेंट रहता है। तो जब अगली बार वही वायरस जब अटैक करता है तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि इसके आरएनए बनाता है। अब ये आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है, मतलब एक धागा होता है, और डीएनए जो है जो वायरस का आ रहा है उससे ये बाइंड करके उसके डीएनए को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया उस दूसरी वायरस से वो बचा रहता है आगे के टाइम के लिए। तो अब इसी चीज़ को लोगों ने यूज़ करके जो है एक प्रोग्रामेबल टूल बनाया है, जिससे कि हम स्पेसिफिक साइट पे जा करके जीनोम में कट्स कर सकते हैं और उस रीजन को हम सुधार सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई है सीक्वेंस में तो उस रीजन को हम सुधार सकते हैं।
0: प्रोफेसर, आपने एक बात कही कि किसी भी बीमारी को, जैसे कैंसर हो या बीटा थैलेसीमिया हो या सिकल सेल एनीमिया हो, उसको हम जीन थेरेपी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि यही पर्टिकुलर जीन इस बीमारी के लिए उत्तरदायी है?
1: हाँ, ये इसके लिए पहले से रिसर्च करनी होती है। तो वो रिसर्च के बहुत तरीके हैं, क्योंकि ये होता है कि पुराने ज़माने में जैसे कि हमें केवल फिनोटाइप दिखता था कि हाँ क्या बदलाव आ रहा है शरीर में किसी के, जैसे प्लांट में ही अगर आप देखें पौधों में, तो अगर कोई चेंज है उसके पेरेंट पौधे से उसके नेक्स्ट जनरेशन में कोई चेंज आ रहा है तो वो उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। तो अगर कोई चेंज जो है ऐसा किसी स्पीशीज में आ रहा है तो धीरे धीरे जो है जेनेटिक लेवल पे हम इसका पता लगा सकते हैं कि कौन सा जीन जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट है जिससे ये चेंज हो रहा है।
0: प्रोफेसर, बहुत भारी भरकम विज्ञान की बातें हो गई हैं। इस बीच में एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। कोई एक ऐसा गीत जो आप हमारे श्रोताओं को सुनना चाहें और आपको पसंद हो।
1: तो अब मैं केवल अपना तो नहीं, जो घर में बजता है गाना, उसमें से एक गाना है कबीरा।
0: कबीरा, हाँ। क्या बात है, बहुत सुंदर गाना
1: तो
0: है,
1: तो उसको सुनना चाहूंगा मैं।
0: बिल्कुल, श्रोताओं को सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत था प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव। आजकल जो बहुत सारे लोग बच्चों के जन्म के बाद जो उनकी नाल बचती है जिसको स्टेम सेल कहते हैं उसको प्रिजर्व करवा रहे हैं, क्या ये भी इसी का एक पार्ट है ताकि उनका जो पुराना जीन का इतिहास है वो पता
1: बिल्कुल
0: चल पाए?
1: बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो स्टेम सेल्स ऐसी होती हैं जिससे आपके बॉडी के और करीब करीब 90% से ज़्यादा सेल्स जो हैं फिर
0: जी
1: से तैयार किए जा सकते हैं।
0: अच्छा
1: तो अगर जो है आपके उस 90% सेल्स में अगर कोई दिक्कत है,
0: जी
1: ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई यही वाली दिक्कत है, ब्लड की ही कोई बीमारी हो गई, तो उस केस में आप जो है उन स्टेम सेल्स को आप प्रयोगशाला में जो है कल्चर करके किसी तरह के भी जो है सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो ब्लड सेल हो चाहे वो मसल सेल हो। और प्रयोगशाला में आप ये क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी यूज़ करके या फिर कोई अदर जीन थेरेपी की टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको मॉडिफाई करके
0: जी
1: उसी के शरीर में डाला जा सकता है।
0: इसमें जो जिनको हम आज लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपर

0: टेंशन या
1: डायबिटीज हो गया।
0: डायबिटीज हो गया, तो इसमें भी ये लाभदायक है?
1: देखिए जीन एडिटिंग जनरली जो है, अगर हम बोले तो कोई सिंगल जीन और सिंगल डिजीज का रिलेशन है कि कोई एक डिजीज हो रही है जिससे कि जैसे कि सिकल सेल एनीमिया मैंने बोला, तो उसमें केवल एक जीन का एक ही बेस की गड़बड़ी की वजह से सिकल सेल एनीमिया हो रहा है, ठीक है। तो अब ये एकदम पता किया हुआ तथ्य है जो कि वर्षों लगे हैं पता करने में, लेकिन ये पता करके है हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह की बीमारियों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर होगा, जिसमें कि आपको पता है कि सिंगल जीन को अगर हम चेंज कर देंगे, ठीक कर देंगे, तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज़ में कभी सिंगल जीन की बीमारी नहीं होती है, ये इसके लिए मल्टीपल जीन का प्रॉब्लमेटिक होना की वजह से होती है। जैसे हृदय के रोग हैं तो कोई सिंगल जीन की खराब होने से हृदय रोग नहीं हो रहा है, या फिर डायबिटीज़ कोई सिंगल जीन के खराब होने से नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ हद तक जैसे डायबिटीज ही है, तो अब इंसुलिन जो है आपका प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ठीक से, तो अब इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाली कोशिकाओं को आप जीन एडिटिंग से सुधार सकते हैं।
0: बचपन में जब हम विज्ञान पढ़ते थे तो हमको ये पढ़ाया जाता था या हमारी पुस्तकों में ये रहता था कि कुछ एक बीमारियां ऐसी होती हैं जो जीन में गड़बड़ी की वजह से होती हैं, जैसे मंगोलियन इडियट या इस तरह की और चीज़ें। क्या हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं कि बच्चे के जन्म के पहले ही हम ये पता लगा पाएँ कि ये जीन्स इसमें गड़बड़ हो रही हैं या इसकी कमी है, पैदा होने के बाद कोई ऐसी बीमारी ना हो जिससे उसका आगे का जीवन दुरूह हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था भी बन पाई है क्या?
1: देखिए पैदा होने के पहले अगर कोई उसको अनुवांशिक बीमारी होने के आसार हैं तो ये पता लगाया जा सकता है। लेकिन अगर जब इम्ब्रियो बन चुका है और उसमें फिर चेंज करना जो है एक मुश्किल तो नहीं है, लेकिन उसके बहुत
0: कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते
1: कॉन्सिक्वेंसेस हो
0: हैं।
1: सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें चेंज आपने किया उस वक्त जब वो अभी पनप ही रहा है, बड़ा ही हो रहा है, और उस चेंज की वजह से अगर कोई, क्योंकि देखिए ये अभी तरीके जो हैं, जो भी जीन एडिटिंग के तरीके हैं, वो हमेशा सटीक नहीं होते हैं। तो इस पे भी, ये भी एक एरिया ऑफ रिसर्च है, इस पे काम हो रहा है जिससे कि आपको आपका जो चेंज है वो सटीक चेंज हो, जिस चीज को हम चेंज करना चाहते हैं केवल वही चेंज हो और कुछ चेंज ना हो। तो अगर बाय चांस कोई गलत चेंज हो जाता है तो अब ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि अब वो लाइफ अगर बॉर्न हो गई, तो बॉर्न होने के बाद फिर जो है आप उसको खत्म नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मनुष्यों के ऊपर कि क्या इस तरह के चेंजेस हमें करने चाहिए कि नहीं चाहिए।
0: तो श्रोताओं, वॉइस ऑफ प्रयागराज में डॉक्टर समीर श्रीवास्तव के साथ जीन थेरेपी पर बातचीत का ये था हमारा पहला भाग। अगले अंक में इसी बातचीत का दूसरा भाग हम आपकी सेवा में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञ पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अलग अलग तरह के कार्यक्रम आपके लिए लेकर के
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम। वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में आज आपने जीन थेरेपी और जीन एडिटिंग चुनौतियाँ, संभावनाएँ और हमारी जिम्मेदारी विषय पर प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव से अभिनव प्रज्ञ पांडे जी की बातचीत सुन रहे थे, और प्रस्तुति अभयकांत तिवारी जी की थी। इस कार्यक्रम का आज आपने पहला भाग सुना, दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे बुधवार को, तो सुनना न भूलिएगा कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए लोकगीत का कार्यक्रम। लोकगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं आस्था सिंह, वंदना सरोवर।

कुछ और साथी, और साथ ही आप सुनेंगे ओमकारनाथ के स्वर में गाए लोकगीत। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं आस्था सिंह के स्वर में ये लोक भजन।

रहे हैं श्रोताओं लोकगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। और अब हम आपको सुनवाते हैं आस्था सिंह के स्वर में गाया ये सोहर गीत।

0: चलिए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं वंदना सरोज और साथियों के स्वर में लचारी गीत।
1: जहाँ जो

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोकगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और अब हम आपको सुनवाते हैं ओमकार नाथ के स्वर में गाया ये कहरवा गीत।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं ओमकारनाथ के ही स्वर में गाया खेमटा गीत, और ये है लोकगीत कार्यक्रम का आखिरी लोकगीत।

श्रोताओं, इसी लोकगीत के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजने वाले हैं। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बनी रहिए अपने रेडियो सच के करीब।

करिश्मा कपूर का जन्म 21 सितंबर 1980 को मुंबई में हुआ था, यानी आज उनकी 46वीं जन्म तिथि है।

धन्यवाद नीलम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज की कलाकार हैं फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहा है आपका रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान। प्रस्तुति प्रदीप।

एक प्रतिष्ठित फिल्मी परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनके दादा राज कपूर और पिता रणधीर कपूर थे, जैसा कि आप जानते हैं। हालांकि कपूर परिवार में पुरानी परंपरा थी कि घर की बेटियां या बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती थीं, करिश्मा ने इस परंपरा को तोड़कर अभिनय की दुनिया में कदम रखा। कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में आने के उनके फैसले में उनकी माँ बबीता कपूर का पूरा समर्थन मिला, यानी बाल कलाकार के रूप में इन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। 1991 आई फिल्म प्रेम कैदी, उसके बाद 1992 जिगरा अनाड़ी, 1993 जैसी सुपरहिट फिल्मों में आपकी पहचान बन चुकी थी।

करीना कपूर के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म थी रिफ्यूजी। इसी फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। जेपी दत्ता निर्देशित ये फिल्म अपने समय की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उनके साथ अभिषेक बच्चन ने भी अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। करीना कपूर के करियर में इस फिल्म का योगदान इस तरह से है। अपनी पहली फिल्म में करीना कपूर ने नाज नाम की एक बांग्लादेशी लड़की का किरदार निभाया। ग्लैमरस रोल के बजाय एक संजीदा और सादगी से भरे किरदार को चुनकर उन्होंने साबित किया कि वे सिर्फ एक स्टार किड नहीं बल्कि एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं। इस फिल्म में उनके शानदार और प्रभावशाली अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया। कपूर खानदान की पारंपरिक अभिनेत्रियों की तरह सिर्फ नाच गाने वाले रोल के बजाय उन्होंने एक रिफ्यूजी शरणार्थी लड़के का किरदार निभाकर आलोचकों को बेहद प्रभावित किया। कार्यक्रम का पहला गीत हम इसी फिल्म से ले रहे हैं, जो अपने समय का बहुत ही पॉपुलर गीत हुआ था।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए यह धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

रिफ्यूजी के लिए गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत निर्देशन अनु मलिक का था, और इसे गाया था सोनू निगम और अलका याग्निक ने। दिल तो पागल है, इस फिल्म ने भी करीना कपूर को काफ़ी शोहरत दिलाई। इस फिल्म के लिए गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था उत्तम सिंह का। यशराज फिल्म के बैनर तले ये फिल्म आई थी। आवाज़ थी आशा भोंसले की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

इस फिल्म के लिए गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और संगीत निर्देशन था उत्तम सिंह का। कलाकार यानी गायक कलाकार थे उदित नारायण और लता मंगेशकर। जैसा कि मैंने पहले बताया, यशराज फिल्म के बैनर तले ये फिल्म आई थी।

इस समय आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र आपकी सेवा में, आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार फिल्म में करीना कपूर की जिंदगी और उनकी फिल्मों के गीत। एक फिल्म आई थी 2007 में जब वी मेट, इस फिल्म में करीना ने गीत ढिल्लों का किरदार निभाया था जो उनके करियर का सबसे आइकॉनिक और मील का पत्थर साबित होने वाला रोल माना जाता है। एक चुलबुली और जिंदा दिल लड़की के रूप में उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों ने जबरदस्त प्रशंसा की। इस रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था। तो कार्यक्रम का अगला गीत क्यों ना इसी फिल्म से सुना जाए, तो आइए सुनते हैं।

करीना कपूर और करिश्मा कपूर दोनों नामों में अक्सर लोग भ्रम पाल लेते हैं। इन बहनों ने एक साथ भी काम किया है फिल्मों में, और वे फिल्में अपने नाम के अनुरूप या यूं कह लें कि दोनों बहनों के जानदार अभिनय के कारण सफलता का परचम लहराने में सफल रही हैं। कार्यक्रम का अंतिम गीत हम ले रहे हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म से, और यही जीवन की सार्थकता भी है। ज़िंदगी में कभी खुशी मिलती है कभी गम मिलता है, तो हमें खुशी में बहुत ज़्यादा उतावला नहीं होना है, गम मिलने में बहुत निराश नहीं होना है, सब कुछ ईश्वर की मर्जी समझ करके स्वीकार करना है। इसी का नाम जिंदगी है। इस फिल्म के लिए गीत लिखा था समीर ने और संगीत निर्देशन जतिन ललित का है। आवाज़ दी थी सोनू निगम और उदित नारायण के साथ कविता कृष्णमूर्ति ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

एक ही कलाकार कार्यक्रम के लिए फिल्मी गीतों का सफ़र बस यहीं तक। आज आपने इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गीत सुने उनके नाम हैं रिफ्यूजी, दिल तो पागल है, जब वी मेट और कभी खुशी कभी गम। ये कार्यक्रम आपकी खिदमत में पेश कर रहा था डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान, प्रस्तुति प्रदीप मिश्र की थी। श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में, कार्यक्रम चाहे जो भी हो, अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर कार्यक्रम का निर्माण कर सकें। आकाशवाणी का व्हाट्सएप नंबर है 8004926250, यानी 8004926250। आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव इस नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हमें खुशी होगी आपके इस सहयोग का। आपका सहयोग ही हमें अच्छे कार्यक्रमों के निर्माण के लिए प्रेरित करता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

सच है मोहब्बत है क्या चीज़। मोहब्बत आँखों के रास्ते दिल की गहराइयों में उतर जाने का नाम है, रूह में समा जाने का नाम है। इसी मोहब्बत की व्याख्या करने के लिए कुदरत ने दुनिया बनाई है। और जब किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता, उसके लिए मिट जाने का दिल चाहता है। यही संदेश हमेशा से ही लोग देते रहे हैं, लेकिन दुनिया समझने को तैयारी नहीं है। और जब मोहब्बत हो जाती है तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना चाहता है। कार्यक्रम का अगला गीत हमने कुर्बानी फिल्म से लिया है, मनहर उदास और आनंद की मिली जुली आवाज़ों में। गीत के बोल इंदिवर ने लिखे हैं और संगीत निर्देशन है कल्याण जी या आनंद जी का।

दुनिया में हर चीज़ के लिए तर्क है, मोहब्बत के लिए कोई तर्क है ही नहीं। किसी से मोहब्बत क्यों हो जाती है आज तक इसका कोई जवाब ही नहीं मिल पाया। बस हो जाती है, और जब हो जाती है तो जीना मरना तेरे संग। और एक बात और, प्रेम में दूसरे पक्ष का हर दशा में हित चिंतन होता है, उसके भले के लिए सब कुछ किया जाता है। वो चाहे नज़रों के दूर हो, नज़रों से दूर हो या दिल के करीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कैसे कोई खामोशी से चोरी चोरी समा जाता है दिल में, कोई नहीं जानता। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है नूरी फिल्म से। इसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल जानिसार अख्तर के हैं और संगीत खय्याम का है।

और जब मोहब्बत हो जाती है ना तो कुछ भी याद नहीं रहता, इंसान पूरी दुनिया को ही भुला देता है। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशिक की फिल्म से कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की मिली जुली आवाज़ों में। रचना समीर की है और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का।

हमें क्यों पैदा किया गया? इसका जवाब आइए सुनते हैं संतोषा आनंद से। गीत के बोल इन्होंने लिखे हैं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की मिली जुली आवाज़ें हैं। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है शोर।

0: तो समय भाव कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसका हमें खेद है। फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 252.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ आने आईआर पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मध्याह्न के 12 बजने वाले हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। ये सभी दिल्ली के जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में

0: महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने लोगों से खुद दवाएं न लेने और डॉक्टरों की सलाह लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अचानक किसी दवा का दुष्प्रभाव होने पर उसे नजरअंदाज न करें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के भटिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में उड़ान प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में तमिलनाडु और पुदुचेरी के 2 विद्यार्थियों मनोज शिवकुमार और श्रीसरण तिरुगुनानासंबंधम की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वैंकुवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो शोक संतप्त परिवार के साथ है। महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो पार्थिव शरीर को परिवारों तक पहुंचाने के लिए सभी सहायता देने को तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लक्ष्मण राव इनामदार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि लक्ष्मण राव इनामदार ने राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और सहयोग के माध्यम से समाज को सशक्त बनाया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने 252.4 अंक के साथ रजत और रुद्रांश पाटिल ने 230.9 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल ने 2रा स्थान प्राप्त किया, जबकि चीन ने स्वर्ण पदक जीता। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुंटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel today said India's journey in pharmacovigilance has been a remarkable example of self-reliance over the years. She said this while releasing the 7th edition of National Formulary of India in New Delhi. The minister said currently more than 1,100 adverse drug reaction monitoring centres are operational in the country, and the government aims to increase this number up to the primary health facility level. She informed that the country now provides pharmacovigilance data to the WHO patient safety database. The minister further highlighted that India has risen from the 123rd rank in 2014 to 8th rank in providing this data to the WHO. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar, Kevadia tomorrow. On Wednesday, the President will grace the 75th annual convocation ceremony of the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda at Vadodara. She will also launch Brahma Kumari's campaign, Spiritual Awakening for World Religion.

पंचायत घर, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:30 पर। इसमें अन्य जानकारी के अलावा अशोक कुमार बेशर्म से लोक भाषा कविता पाठ, इसके अलावा कमला प्रसाद पाल और साथियों का विकास गीत भी हम आपको सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में। युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:15 पर। आज के प्रोड़ापुंज होंगे केरल के नारायण गुरु।

बहनें अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी सुनेंगी दोपहर 1:15 पर। इस कार्यक्रम में विश्व अल्जाइमर दिवस पर जानकारी के अलावा प्रतिमा श्रीवास्तव की कहानी भी हम आपको सुनवाएंगे। श्रोताओं के संदेशों पर आधारित फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण होगा 12:30 पर। प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। फिल्म संगीत सुनेगा रात 8 और रात 10। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, बस कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आए सुनते हैं पंडित अनंत लाग का राग शुद्ध सारंग और राग मुल्तानी में शहनाई वादन। शुरुआत कर रहे हैं राग शुद्ध सारंग से।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं पंडित अनंत लाल का शहनाई वादन। अभी आपने सुना राग शुद्ध सारंग, अब आइए सुनते हैं राग मुल्तानी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित अनंत लाल का राग शुद्ध सारंग और राग मुल्तानी में शहनाई वादन। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आपकी पसंद। प्रस्तुति मधु कुमार की है।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, अगले 30 मिनट तक हम जीवन की सबसे प्यारी चीज़ यानी खुशी, इस पर बातचीत भी करेंगे और आपकी पसंद के गानों को भी सुनेंगे। तो चलिए निकलते हैं इस सफ़र पर, और जहां हर पल में है एक नई मुस्कान। जिंदगी एक दर्पण की तरह है, ये आपको वही लौटाती है जो आप इसमें देखते हैं। इसीलिए सकारात्मक हमेशा सोच रखें। हर सुबह एक नई शुरुआत है, मुस्कुराइए और चल पड़िए, क्योंकि आ गया है हमारे कार्यक्रम।

कार्यक्रम का पहला गीत। और इस कार्यक्रम के पहले गीत की फरमाइश है हमारे इन श्रोताओं की। मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, हैप्पी आनंद और पीयूष कुमार। बक्सर से राज एसडी अंसारी, आफताब अंसारी, मेहताब अंसारी, मेराज और इनके परिवार के अन्य सदस्य। डुमराव बिहार से हैं डॉक्टर बबलू अंसारी, सोनम अदीपा और दानिश अंसारी। बक्सर से ही शराफुद्दीन अंसारी, फातिमा असलम अकरम और अल्ताफ। उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान। आप सुनना चाहते हैं जुगनू फिल्म का ये गाना।

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि सफर है। अक्सर हम उसमें बड़ी सफलताओं को ढूंढते हैं, जबकि वो एक गरम चाय के कप, दोस्तों की हंसी या परिवार के साथ बिताए गए पलों में होती है। तो आज ही उन तीन चीजों के लिए धन्यवाद कहें जो आपके पास है, और हर दिन सोने से पहले अपनी दिन भर की उन तीन अच्छी बातों को याद कीजिए जिनको करके आपको दिल से खुशी हुई हो। तो चले अगले गीत की तरफ। ये गीत है कटी पतंग फिल्म का, किशोर कुमार साहब की आवाज में बेहद ही खूबसूरत सा गीत। आइए सुनते हैं, पहले सुनते हैं उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें दूर दूर से खत लिखा है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये नाम है सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। छत्तीसगढ़ से महाराजा कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी गोस्वामी। कीर्तिनगर नई दिल्ली से गौरव, कविता, अनिल, मानसी और इनके परिवार के अन्य सदस्य। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना। मुरादाबाद पीतल नगरी, मुकेश कश्यप, सुरेश, सोनू राजपाल, तन्वी मानवी, काजल सीमा, लक्ष्य सोनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। भाई इनका खत हर कार्यक्रम में हमारे पास आता है। तो यहीं से एक और हमारे श्रोता है, ये है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरात और नरगिस खातून। टीकमगढ़ से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। तो अब सुनते हैं आपकी पसंद का कटी पतंग फिल्म का ये गाना।

तो श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं खुशियों की, और खुशियां आती हैं सकारात्मक सोच से, और सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर हम सही सोच रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, तो ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। खाली घर शैतान का डेरा हो जाता है, वैसे ही सकारात्मक सोच जो होती ना, वो ज़िंदगी से इन सभी शैतानों को निकाल फेंकती है और हमें समस्याओं से जूझने की भी शक्ति देती है। कहते हैं ना कि मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। और आ गया है कार्यक्रम का अगला गीत, और ये गीत है फिल्म इंतकाम से, और आवाज़ है लता जी की, और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी और इनके परिवार के अन्य सदस्य, गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल, मध्य प्रदेश से दिलीप मालकार, सुनीता मालकार, मुस्कान मालकार, योगेश मालकार और इनके परिवार के अन्य सदस्य, छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया, डॉली बेबी पूजा आरती और प्रभा देवी तामूरिया, और इन्होंने लिखा है आपको बहुत बहुत नमस्कार। ये कार्यक्रम हमारा बेहद ही फेवरेट कार्यक्रम है, क्योंकि बातचीत के साथ साथ जो हमारी पसंद के गाने हमें सुनने को मिल जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए ही है, तो अपनी पसंद के गानों को सुनने के लिए बस हमें लिखते रहिए। और लिखना कहाँ है, नंबर नोट कर लीजिए, 8004926250। नंबर एक बार फिर से, 8004926250। तो सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

तो बात हो रही है खुशियों की, और खुशियां होती हैं छोटी छोटी चीज़ों में, एक बच्चे की मुस्कान में भी हो जाती है, एक गर्म चाय की प्याली में भी, और अपने साथ बैठने वाले कुछ पसंदीदा लोगों के साथ भी मुस्कान आ जाती है ना आपके चेहरे पर भी। गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी भी है, इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना है। और अब हम चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ। बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम है रॉकी, और इस गाने की फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं की है उनके नाम है हरियाणा से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और अंकित कांगड़ा, प्रयागराज से हैं मधु कनौजिया, गोविंद कनौजिया, हनी कनौजिया, कोमल कनौजिया, पाला कनौजिया, बठिंडा से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी।

आसमां नाज शबनम बानो। उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर और इनके परिवार के अन्य सदस्य। और पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशाल, विशु, लाडी, शालिनी, टिवांशी, वाणी, आरपी खेड़ा, जीवन सिंह और इनके परिवार के अन्य सदस्य। इन्होंने गुरु पर्व की भी बहुत सारी बधाई दी है, तो भाई आपको भी आने वाले गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई। सुल्तानपुर से रेहाना बानो, महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्री देवी। तो अब हम सुनवाने जा रहे हैं आपको रॉकी फिल्म का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आपकी पसंद, प्रस्तुति मधु कुमार की थी। अभी कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, उसके बाद इलाकाई खबरें नशर की जाएंगी हमारे लखनऊ केंद्र से। बने रहें हमारे साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये जानकारी देने की सूची में भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है।
2: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
3: भारत आज WHO की डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
2: विच रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नबीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश के खिलाफ दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि

न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने प्राधिकरण को आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया था, जबकि ये जिम्मेदारी स्थानीय निकायों और प्रशासन की है। सॉलिसिटर जनरल ने प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की विशेष पीठ के पुनर्गठन का भी अनुरोध किया। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबह खाड़ी पहुंचे। दोनों जहाजों को नौसेना की संचालनगत तैनाती के अंतर्गत भेजा गया है। ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुनटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के सुभाती यूनिवर्सिटी में नौजवानों से बराह रास्त बातचीत की। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन और रियासती सदर पंकज चौधरी भी इस तकरीब में मौजूद रहे। यूथ कॉन्फ्रेंस के बाद इसी कैंपस में वेस्टर्न रीजन की शक्ति केंद्र कोऑर्डिनेटर्स की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। यूथ डायलॉग प्रोग्राम में नौजवानों के साथ बातचीत के जरिए उनके सवालात और तालीम, रोजगार, हुनर, सनअतकारी और रियासत मुस्तकबिल के मौके से मुतालिक मौजूआत पर बातचीत की गई। नितिन नवीन नौजवानों से बातचीत भी की। आज मेरठ पहुंचने पर बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन का रियासती हुकूमत में वजीर सोमेंद्र तोमर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल गौतम बुद्ध नगर जिले में वाकई गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी मुनक्दा प्रेरणा विमर्श 2026 प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर उत्कर्ष नारी सम्मान और युवा स्वाभिमान प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर जनाब योगी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने गुज़िश्ता 12 सालों में विरासत, तरक्की और अवामी बहबूद के नए सफर का आगाज किया है।
1: पिछले 12 वर्ष में भारत बॉटम 5 से टॉप 5 की श्रेणी में दुनिया के अंदर पहुंचा है। विरासत से विकास की यात्रा, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हुआ अभूतपूर्व विकास, ये उसी यात्रा का नाम है। और उसी यात्रा के साथ भारत के हर नागरिक को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बार बार आह्वान होता है।
0: प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आला ने कहा कि वक़ार की हिफाजत और ख़वातीन को बाख्तियार बनाना रियासती हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। रियासत की अफरादी क़ुव्वत में ख़वातीन की शिरकत गुज़िश्ता 9 सालों में 12% से बढ़कर तकरीबन 37% हो गई। आगरा, काशी, गोरखपुर और लखनऊ में डेयरी प्रोड्यूसर्स का काम कर रहे हैं, जिनमें 4 लाख ख़वातीन शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में 24,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं, जिनमें से निसफ ख़वातीन चलाती हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का चौथा एडिशन 25 से 29 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में मुनक्किद होगा। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के

0: लोगों को लिखे एक खत में कहा कि 2023 में शुरू होने वाला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो रियासत की मसनूआत को आलमी प्लेटफॉर्म फराहम करने की पहल है। जब रियासत में डबल इंजन वाली हुकूमत बनी तो रोजगार पैदा करना अव्वलियन तरजीह बन गया। वजीर आला ने कहा कि बरामदात में रियासत का 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आलमी मार्केट में मकामी सलाहियतों को जाहिर करने का एक अहम प्लेटफॉर्म है। उन्होंने नौजवानों और तलबा पर जोर दिया कि वो तिजारती नुमाइश में शिरकत करें। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल नोएडा पहुंचे। उन्होंने बैनुल अक्वामी ट्रेड शो के सिलसिले में मुद्देदारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने अब तक की तैयारियों का जायजा लिया और शुरका की सहूलियात और हिफाजत के हवाले से जरूरी हिदायत जारी की। वजीर आला ने कहा कि यह तकरीब रियासत की सनअती सलाहियत, इख्तरात और बरामदी सलाहियतों को जाहिर करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है। वाराणसी के 8 बरामदात कुंदगान ग्रेटर नोएडा में मुनक्द होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में अपनी मसनूआत की नुमाइश करेंगे। ये काशी के रवायती फन और जदीद मसनूआत के इम्तिजाज की नुमाइश करेगा। सदियों के इंतजार के बाद शानदार राम मंदिर की तामीर ने भगवान राम के आबाई शहर अयोध्या की तरक्की के एक नए बाब का आगाज किया। ये शहर अब मजहबी सयाहत और तरक्की के आलमी सतह पर नुमाया तौर पर उभरा है। एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ये शहर आलमी सतह पर मजहबी सयाहत, सनातन संस्कृति और तरक्की की अहम अलामत के तौर पर उभरा है। इसी राम की नगरी से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का आह्वान करते हुए कहा,
2: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
1: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि राम मंदिर की तामीर के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक अयोध्या में सकाफती, समाजी और माशी मैदान में बड़ी तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि सैलानियों की तादाद में इजाफे के साथ साथ राम नगरी को आधुनिक सहूलियात से भी लैस किया गया है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
0: यकुम अक्टूबर से सब्सिडी वाली खाना पकाने वाली गैस की बुकिंग के लिए आधार से मुंसलिक बायोमेट्रिक तस्दीक की ज़रूरत होगी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत के मुताबिक इस निज़ाम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि सिर्फ अहल घरानों को सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर मिले। जिन सार्फिन ने तस्दीक का अमल पहले ही मुकम्मल कर लिया है, उन्हें दोबारा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होगी। आज अल्जाइमर का आलमी दिन है। ये बीमारी अक्सर उम्र रसीदा होने के साथ मुंसलिक होती है, लेकिन नई तहकीक बताती है कि खून के टेस्ट से जवानी में अल्जाइमर से मुतालिक इब्तदाई तब्दीलियों का पता चल सकता है। ये तहकीक दी लाइंस्ट में शाया हुई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। बहने सुने अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: सुनने वाले सभी बहनों और श्रोतागण को हमारा
1: प्यार भरा नमस्कार।
0: आज के गृहलक्ष्मी के इस सफर की हम सफर हैं आपकी दो दोस्त, मैं पूनम
1: और मैं अनीता। स्वागत है आप सभी का आपके मन पसंद कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। 45 मिनट के इस सफर में हम बने रहेंगे आपके साथ, तो अपने रेडियो सेट के वॉल्यूम को और बढ़ा लीजिए।
0: बहनों और श्रोताओं, एक समय था जब हमारे समाज में ये कहा जाता था कि बेटी और घर की तिजोरी एक साथ नहीं खुलती। बेटी को पराया धन समझा जाता था, उसकी किस्मत का फैसला दूसरे घर में होगा, ऐसा कहा जाता था। लेकिन समय बदला, आज की बेटी ने सोच की तिजोरी को ही तोड़ दिया।
1: और आज की नारी सिर्फ घर ही नहीं संभाल रही है बल्कि देश संभाल रही है।

0: चांद तक जा रही है और सबसे बड़ी बात, अपनी कमाई से अपना निर्णय स्वयं ही ले रही है। आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि जिसका मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाना, अपना सम्मान बनाना है।
1: और बहनों, अक्सर देखा गया है कि घर के बड़े फैसले जैसे कि बच्चों की शिक्षा कहाँ होगी, घर कहाँ लेना है, इस तरह के जो बड़े फैसले हुआ करते थे वो पहले घर के बड़े बुजुर्ग या पुरुष ही करते थे। इसमें महिलाओं की कोई भी राय या विचार विमर्श नहीं लिया जाता था।
0: और पूनम, अब सवाल ये उठता है कि आर्थिक स्वतंत्रता या अपनी कमाई की ज़रूरत क्यों है महिलाओं के लिए? अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए।
1: अपनी आय का उचित उपयोग बचत, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार और भविष्य की योजनाओं के लिए हम ये कर सकते हैं। इसके साथ ही महिलाओं को बैंक खाता, डिजिटल भुगतान, बजट बनाना, बीमा और सुरक्षित वित्तीय साधनों की सामान्य जानकारी तो होनी ही चाहिए, जिससे वो अपने पैसों का जिम्मेदारी से प्रबंधन कर सकती हैं। आर्थिक स्वतंत्रता कोई मंजिल नहीं है बहनों, बल्कि यात्रा है। ये आपको अमीर से ज़्यादा मजबूत बनाती है, बल्कि हमें एक ऐसा नागरिक बनाती है जो देश और समाज पर बोझ नहीं बल्कि देश की ताकत को बनाती है।
0: और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम दूसरों से उम्मीद करने से पहले स्वयं कुछ करेंगे, क्योंकि जब हमारी जेब में हमारी मेहनत की कमाई होगी तो छोटी सी सही ये हमारी आर्थिक स्वतंत्रता की ये कोशिश हमारी आवाज़ में हमारे दमखम के साथ होगी।
1: और साथ साथ ही आत्मविश्वास होगा हमारी आंखों में, और उसके साथ ही अलग ही चमक होगी हमारे उड़ान की। और यही कहना चाहूँगी श्रोताओं कि हमें आकाश दीजिए उड़ने के लिए, उड़ान तो हम खुद ही भर लेंगे, लेकिन ये आसमान हमें स्वयं ही तलाशना होगा, हमारी आर्थिक स्वतंत्रता हमारी अपनी कमाई के रूप में।
0: बिल्कुल।

0: गीत तो बहुत ही प्यारा सुनवाया तुमने अनीता।
1: मैंने तभी तो बोला गहरी सांस लेके बोला।
0: और श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक कहानी। कहानी का नाम है और दिशा बदल गई। कहानीकार हैं प्रतिमा श्रीवास्तव। तो आइए सुनते हैं ये कहानी।
2: सुबह 8 बज रहे थे। अलार्म ने पिछले 20 मिनट से बज बज के अपना धर्म निभा दिया था और थक कर चुप बैठ गया था। लेकिन राघव मजाल है जो टस से मस हुआ हो। अचानक बेडरूम का दरवाजा भड़ाक से खुला। राघव उठो, नेहा ने राघव का लिहाफ खींचते हुए जोर से कहा। क्या हुआ? आंखें खोलने की कोशिश करते हुए उसने कहा। क्या हुआ? घड़ी देखा है? सर पे रखी है और बजे जा रही है। मुझे बाहर ड्राइंग रूम में भी आवाज आ रही है। तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता? वाह, क्या चैन की नींद ले रहे हो। राघव ने तकिया घुमा के हाथ के नीचे दबाई और करवट लेते हुए धीरे से आंख खोली। क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों तापमान चढ़ा रही हो? तापमान चढ़ा रही हूं मैं? तुम्हें पता है आज क्या है और क्या हुआ है? राघव ने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से मोबाइल उठाया, समय देखा। हाँ, आज रविवार है। रविवार नहीं, आफतवार है। राघव उठकर बैठ गया। अब क्या हुआ ये बताओगी? नेहा ने हाथ का मोबाइल फोन उसकी ओर बढ़ा दिया और खींचते हुए बोली, मैसेज किया है। किसने किसने मैसेज किया है? राघव ने मोबाइल थामते हुए आश्चर्य से पूछा। जिसकी वजह से तुम्हारा तापमान इतना बढ़ा है, देखूं तो? तुम्हें क्या, तुम्हें तो संडे एंजॉय करना है।

नेहा का स्वर खीज से भरा हुआ था। बोली, काम वाली ने मैसेज किया है। राघव जोर से बोला, काम वाली? अरे शांति ने मैसेज किया है, देखो तो। भैया भाभी मैं 5 दिन की छुट्टी पर जा रही हूँ, गांव में शादी है, अगले सोमवार को आऊंगी। 5 दिन की छुट्टी पर जा रही है तो अगले सोमवार को कैसे? राघव बोला, सैटरडे संडे वीकेंड ऑफ नहीं होगा क्या? नेहा ने व्यंगात्मक लहजे में चिढ़कर कहा। ओहो हो, राघव ने मासूमियत से कहा, तो क्या मतलब 5 दिन घर का काम कौन करेगा? 5 दिन नहीं 7 दिन, नेहा की खीज बढ़ती जा रही थी। डोंट वरी, काम हम दोनों मिलकर करेंगे, राघव ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। फिर परेशान क्यों होती हूँ, मैं हूं ना, राघव ने अदाकार शाहरुख खान जैसी बाहें फैलाकर कहा। नेहा के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अच्छा तो ठीक है, आज चाय तुम बनाओ। राघव का फैला हुआ हाथ झट से नीचे गिर गया। लेकिन जानती हो मेरी तो सुबह चाय पीने की आदत है, बनाने की नहीं, तो आदत बदल लो। नहीं नहीं डाल लो, क्योंकि आज से 7 दिन तक। वाक्य अधूरा छोड़कर नेहा कमरे से बाहर चली गई। राघव बिस्तर से उठ चुका था, पैरों में चप्पल घसीटता हुआ रसोई की ओर बढ़ चला। 5 मिनट बाद ही रसोई से राघव की आवाज आई, नेहा क्या है, चीनी कहाँ है? जहां रोज होती है लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। मिलने के लिए आंखें खोलकर देखना पड़ता है, कहते हुए नेहा ने किचन के सामने शेल्फ पर रखी हुई राघव के ठीक सामने चीनी का डब्बा दिखाते हुए कहा। ये क्या है? राघव हंस के बोला, चीनी मेम साहब। और तुम क्या ढूंढ रहे थे? मैं तो देख रहा था कि तुम्हें अपनी रखी हुई चीज याद है क्या नहीं। अच्छा जी, नेहा ने हंसते हुए डस्टिंग का कपड़ा राघव के चेहरे पर लगाने की कोशिश की। अरे रे रे रे, मेरी चाय पे धूल। दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर में चाय की ट्रे सजाए राघव नेहा के सामने था। नेहा ने उत्साह से चाय का कप उठाया, पहला घूंट लेते ही कप वापस टेबल पर रख दिया। ये चाय है या गन्ने का रस? नेहा बोली, गन्ने का रस नहीं नहीं, बस थोड़ी मीठी है बस। राघव ने काफिया मिलाया। नेहा भवे चढ़ाती हुई बोली, थोड़ी? मैं तो बिना चीनी की पीती हूं चाय। राघव ने चुपचाप कप उठाया और पीने लगा। मुझे तो ठीक लग रही है, तो मेरी भी तुम ही पी लो, क्योंकि अगर मैंने ये पी ली ना तो शायद जीवन भर चाय को देख ही ना पाऊं। हाथ का डस्टिंग का कपड़ा झटकते हुए नेहा दूसरे कमरे में चली गई। अब आई नाश्ते की बारी। नेहा ने कहा, आज पराठे बना लेते हैं। राघव ने तुरंत कहा, मैं आटा गूंद लेता हूं। नेहा ने अचरज से कहा, तुम्हें आता है? हाँ बिल्कुल, राघव ने टी शर्ट का कॉलर ऊपर चढ़ाते हुए कहा। मैंने कई रील्स देखी हैं, उसमें क्या मुश्किल है? राघव, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत अंतर होता है, नेहा ने समझाया। अरे बस तुम देखती जाओ। लेकिन फिलहाल तुम अभी किचन से बाहर जाओ। अच्छा चलो ये भी देखते हैं। नेहा ने ड्राइंग रूम की शेल्फ झाड़नी अभी शुरू ही की थी कि राघव की दर्द भरी आवाज ने उसे पुकारा, नेहा नेहा प्लीज प्लीज हेल्प। नेहा घबरा गई। किचन में पहुंचते ही आंखें कुछ ज्यादा ही बड़ी दिखने लगी उसकी। ये क्या हुआ? सामने राघव नाक गाल बाल में आटा लगाए, चिपचिपे पतली लेई जैसे गुदे हुए आटे में उंगलियां फंसाए लाचार खड़ा था। नेहा नेहा मेरी उंगलियां, कटोरा छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रही है, नेहा चीखी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? राघव उतना ही धीमे से बोला, थोड़ा ज्यादा पानी गिर गया था। थोड़ा ज्यादा? इतना सारा आटा? नेहा का स्वर ऊंचा होता गया। नहीं नहीं नहीं नहीं, वो पानी थोड़ा ज्यादा हुआ तो मैंने आटा डाल दिया, फिर पानी, फिर आटा। अच्छा।

बस छोड़ो, तुमसे ना हो पाएगा। हाथ धो के ये कपड़ा पकड़ो और डस्टिंग करो, मैं कुछ करती हूं। राघव के जाने के बाद नेहा ने सर पकड़ लिया। सोचा क्या करूं, फिर थोड़ी ही देर में प्याज, हरी मिर्ची, थोड़ा से गाजर लेकर तैयारी में जुट गई। थोड़ी देर बाद कैसरोल में प्याज, गाजर, हरी धनिया, मिर्ची से सजे चीले के साथ गर्मा गर्म चाय लेकर डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोली, आओ राघव, नाश्ता तैयार है। राघव हाथ धोकर नैपकिन से पोछता हुआ बच्चे जैसा दौड़ता हुआ चला आया। नाश्ता? नाश्ता नाश्ता क्या बना है नेहा, उस लेई से? राघव के स्वर में उत्सुकता थी। देख लो, चीले बनाए मैंने, खा के देखो। खाते खाते राघव बोला, यार सच में तुम बीवियों का दिमाग ना कितना तेज काम करता है। मेरे बिगड़े हुए काम को ऐसा संवारा, सच कहूँ नेहा मैंने इतना टेस्टी चीला पहली बार खाया है। सोच रहा हूँ शाम के खाने में भी कुछ धमाल कर ही दूँ। दोनों हंस पड़े। नाश्ता हो चुका था, अब सिंक में पड़े बर्तन मुंह चिढ़ा रहे थे। राघव, कल रात के और सुबह नाश्ते के बर्तन कैसे धुलेंगे? अभी घर में झाड़ू पोछा, फिर खाना, फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना, कैसे होगा राघव? मैं हूं ना, राघव ने फिर बाहें फैलाई। नेहा हंस पड़ी। मैं झाड़ू लगाता हूँ, तुम पोछा मारो। मैं बर्तन मारता हूँ, तुम बर्तन धो। मैं सब्जी काटता हूँ और जल्दी से अपनी स्पेशल तहरी बनाओ तुम। फिर शाम की चाय मैं, ना ना ना ना ना, बिल्कुल नहीं, नेहा चीख पड़ी। अच्छा नहीं नहीं, तुम्हें मेरे हाथ की चाय नहीं पीनी पड़ेगी। नहीं पीनी है तो कोई बात नहीं, मैं तो रात के खाने की प्लानिंग भी कर चुका। तौबा तौबा तौबा, अच्छा है अभी तुमने सिर्फ प्लानिंग ही की है, लेकिन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन जैसा मैं कहूँगी वैसे करना, ठीक है? प्लीज़ राघव, काम बढ़ाना नहीं प्लीज़, कहते हुए नेहा ने हाथ जोड़ दिए। ऐसा करो, तुम कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दो, नेहा ने सुझाया। अच्छा अभी लो, लेकिन डिटर्जेंट कितना डालना है? अरे तुम कपड़े लगाओ तो, मैं बताती हूँ। राघव ने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, फिर नेहा को बुला बुला के, पूछ पूछ के धुलाई की पूरी प्रक्रिया एग्जीक्यूट की। नेहा को अच्छा लग रहा था। ऑफिस जाने के लिए तैयार होता राघव, दो दो मिनट में छोटी छोटी चीजों के लिए उस पर निर्भर रहने वाला राघव। मुझे तुमसे पहले ऑफिस पहुंचना होता है तो ये काम तुम मेरे जाने के बाद भी कर सकती हो, कहकर चिढ़ता हुआ राघव। तुमको क्या, ऑफिस में डेटा एंट्री ही तो करनी है बैठ के ना, कहकर मेरी जॉब का मजाक उड़ाने वाला राघव। ये तो कोई और ही था, और ये राघव उसे अच्छा लग रहा था। दिन ढल रहा था। इस बीच न राघव न नेहा, कोई भी ना तो चुप रहा ना झगड़ा किया, बस मीठी मीठी चुहलबाजियां चलती रहीं दोनों के बीच। हर काम की शुरुआत राघव करता अपने तरीके से और नेहा उसे संवारती बहोरती अंजाम तक पहुंचाती रही। पर जाने क्यों, ना उसे जुझलाहट हो रही थी ना खींच जा रही थी, उसे अचरज हो रहा था अपने इस बदलाव पर। पर ये बदलाव सुखद लगा उसे। शायद इस बदलाव की उसने कभी कोशिश भी नहीं की। शाम की चाय का प्याला हाथ में थामे दोनों बालकनी की चेयर पर बैठे धुंधल का घिरते देख रहे थे। स्ट्रीट लाइट ऑन हो गई थी। राघव उठा और कमरे की लाइट ऑन की। वापस आकर चेयर पे बैठते हुए बोला, नेहा आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? नेहा चौंक कर बोली। राघव मुस्कुरा कर बोला, आज दिन भर साथ बिताते, साथ साथ हर काम करते, जिसमें मेरे हिस्से कम तुम्हारे हिस्से बहुत ज़्यादा काम आता। राघव का स्वर थोड़ा गहरा आ गया। नेहा आज मैंने महसूस किया कि जिस काम को मैं हल्के में लेता था वास्तव में वो काम तो ज़्यादा टेक्निकल है। बना बनाया खाना मिलने पर उसमें कमी निकालना आसान है, लेकिन रोज़ खाने के मेन्यू में

0: सटीक कॉम्बिनेशन बिठा पाना आसान नहीं होता। धुला प्रेस किया कपड़ा पहनने को जगह पे मिल जाए तो ये ध्यान नहीं जाता कि कपड़ा धोना एक कला है। समय पर सही जगह मिल जाए ये प्रयास है तुम्हारा। तुम चाय में चीनी नहीं लेती, ये तो मुझे पता ही नहीं था, कभी जाना ही नहीं शायद। नेहा ने सर झुका लिया। राघव ने नेहा के पास कुर्सी खींच ली। अभी तुम जब चाय बना रही थी ना तो मैंने बहुत सोचा, कितना काम है, कितना आसान है जजमेंट सुना देना किसी की कार्यक्षमता पर, जबकि उसका कार्यक्षेत्र घर और बाहर दोनों हो, उतना ही दक्षता से भरा हुआ। नेहा का हाथ थामते हुए राघव बोला, चलो नेहा, रात का खाना हम बाहर खाते हैं। क्यों, दोबारा चीला ना खाना पड़े इसलिए, नेहा ने शरारत से कहा। नहीं नहीं, आज के दिन को सेलिब्रेट कर सकें इसलिए। फिर कल तुम्हें भी तो ऑफिस जाना है ना, मैं चाहता हूँ मैं ऑफिस जाने के पहले वापस आकर और वापस आके भी तुम्हारी कुछ जेन्युइन हेल्प कर सकूँ। तो अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं और अच्छा सा डिनर मेन्यू ऑर्डर करते हैं और कल के लिए प्लानिंग करते हैं। जाने क्यों, नेहा को अपनी आंखें कुछ गीली सी लगी। उसने कुछ मुस्कान होठों पर बिखोरते हुए कहा, राघव आज का दिन मेरे लिए काम वाली की तरफ से भेजा हुआ गिफ्ट तो नहीं। दोनों साथ में हंस पड़े। तभी नेहा के मोबाइल पर मैसेज की घंटी बोली। नेहा ने मैसेज देखा और खिलखिला के हंस पड़ी। राघव ने अचरज से देखा। नेहा ने मैसेज बॉक्स सामने कर दिया। शांति ने लिखा था, भाभी भैया आप लोग परेशान हो गए होंगे ना आज, इसलिए हमने अपनी ननद को 5 दिन आपके घर काम संभालने के लिए बोल दिया है। कल सुबह समय पर आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिएगा। तोहफा कबूल है, कहकर दोनों साथ में हंस पड़े। आसपास के लोग पलटकर दोनों को देख रहे थे और नेहा राघव दोनों खोए थे अपने उस विशेष दिन को सेलिब्रेट करने में, जिसने दोनों के सोच की दिशा और दशा दोनों बदल दी।
1: बहनें अभी सुन रही थी कहानी दिशा बदल गई। कहानीकार थी प्रतिमा श्रीवास्तव।
2: वाकई में छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी नोक झोंक से शुरू हुई ये कहानी कितनी अनमोल होती है। और अनीता, कितना अनमोल होता है एक पति पत्नी का साथ, और उससे भी ज़्यादा कीमती है एक साथ बिताए हुए वो बेशकीमती पल, है ना?
1: बिल्कुल। और एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे को समझना, वाकई में। तो पूनम, हम कुछ सोच रहे हैं?
2: हाँ, अब हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला और बढ़ाते हैं प्यारे से खूबसूरत से गीत के साथ।

नज़ारे हम क्या देखे। वाकई में पूनम, गाना तो बहुत ही खूबसूरत था। और अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे कार्यक्रम में है भोर, छोटा सा बदलाव। इस पर बातचीत कर रही हैं नेहा गुप्ता और तनु आर्य, तो आइए सुनते हैं।

0: अच्छा, आपको पता है,
1: जी
0: मैं अभी कुछ देर पहले ही एक इंटरव्यू पढ़ रही थी। उसमें एक बात लिखी हुई थी कि अगर आप जो चाहते हैं वो अगर ना हो रहा हो, तो परिस्थिति जैसी है उसके अनुकूल और अपने अनुसार खुद को ढाल लीजिए। तो मैंने अगली लाइन पढ़ी कि भाई क्यों ऐसी बात कही जा रही है। तो उन्होंने कहा, क्योंकि आप अपने एटीज को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि आप थोड़ा अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं और अगले पल के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। और जब आप अगले पल को थोड़ा सा मोल्ड हुए और अपने आप को अगले पल के लिए तैयार कर लिए, आपका ये जो जोन है चीज़ों को हैंडल करने का,

0: या देखने का या तरीके से करने का, आप उस पर टिके रहेंगे कि आप पहली जो परिस्थिति आई वो सही नहीं है और आप इसी उहापोह में रहे कि क्यों चेंज करें क्यों चेंज करें. अगर आपने स्लाइटली थोड़ा सा चेंज किया तो आप एक बहुत बड़ा रिजल्ट पा सकते हैं.
1: बिल्कुल नेहा जी, ये हर पल हर दिन की प्रक्रिया है, क्योंकि हम कहीं पर भी अकेले नहीं रहते हैं कि हमने जैसा सोच लिया हम वैसा ही करेंगे, या हमने जैसा रिहर्सल कर लिया हम वैसा ही किसी के सामने बोलेंगे. ऐसा नहीं होता है. बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी लिविंग कंडीशंस, बहुत सारी नॉन लिविंग कंडीशंस हमारे आसपास प्रिवेल करती हैं, जिसकी वजह से हमें एज पर सिचुएशन रिएक्ट करना पड़ता है. तो जब तक हम खुद को अडेप्टेबल नहीं बनाएंगे तो शायद हम वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे.
0: यस एक्चुअली, क्योंकि अगर हमने क्रोध किया या हम उस परिस्थिति में फंस गए तो अगला आने वाला जो पल है, अगला आने वाला जो क्षण है, आप देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप तो फंस गए हैं.
1: पता है नेहा जी, आपको बहुत मजेदार बात बताऊं.
0: बताइए.
1: ओवरथिंकिंग होती है.
0: चलिए,
1: किसी भी इंसान के साथ सपोज मेरे इक्वेशंस अच्छे नहीं हैं, कुछ हुआ बहुत बड़ा, अब मेरे मन में चल रहा है कि अब की बार जब मिलेंगे किसी ने मुझसे ये बात कही तो हम ऐसा कह देंगे, हम वैसा कह देंगे, हम जिस भी सिचुएशन में हैं वहीं पे सोचने लगते हैं, एक पूरी स्क्रिप्ट सी मन में तैयार हो जाती है और शायद जाने कितने दिन जाने कितने महीने उस चीज़ की अंदर ही अंदर प्रैक्टिस चलती रहती है. लेकिन एक्चुअली में जब वो इंसान सामने आता है ना, तो वहां पे जो भी लोग होते हैं कोई ना कोई अपनी बात भी तो कहेगा और फिर वो बातों की दिशा मुड़ जाएगी. पहले हम बहुत परेशान होते थे, अब जब मेरा दिमाग ओवरथिंक करता है तो हम ये सोचते हैं भग ये सब सोच जो रहे हैं उस समय थोड़ी ना बोल पाएंगे, उस समय तो जो इंस्टेंटली होगा वही बोला जाएगा, तो क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो. होता है ना.
0: बिल्कुल. तो दोस्तों, ये जो भी परिस्थिति है अगर आपको अराउज कर रही है, एक पहलू है जिस पे अगर काम किया जाए कि थोड़ी देर के लिए रुक कर सेकंड पर सोचिए जरूर.
1: हाँ.
0: कि अगला पल जो होगा इसमें तो भाई जैसा है वैसा हो गया.
1: हाँ.
0: लेकिन अगला पल कैसा होना चाहिए, आप कैसे लिखना चाहेंगे, कैसे दिखना चाहेंगे, कैसे रहना चाहेंगे, तो उसके लिए इस पल से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए.
1: बिल्कुल. कभी भी ओवरथिंक नहीं करना है, अडेप्टेबल रहना है और अपने लिए कुछ नॉर्म्स बना के रखने हैं कि कुछ भी हो जाए हम ये चीज़ नहीं करेंगे, या कैसी भी चीज़ें आसपास हो रही हों हम इस तरीके से या इस वॉल्यूम पे हम अपने आप को ट्यून रखेंगे.
0: हाँ, अगर आप सही ट्यून करते हैं तो गाना ज़रूर बजता है.

अभी आप सुन रहे थे भोर। इसके अंतर्गत आज का विषय था छोटा सा बदलाव। इसमें वाचन स्वर थे नेहा गुप्ता और तनु आर्य के। तो आइए सुनते हैं अब एक प्यारा सा गीत।

0: इस प्यारे से गीत के साथ अब हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज हम मना रहे हैं विश्व अल्जाइमर दिवस।
1: सखियों, आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी की सबसे अनमोल चीज़ों में से एक क्या है? हमारी यादें, हमारी स्मृतियाँ, बचपन की बातें, माता पिता की आवाज़, किसी अपने की मुस्कान, स्कूल के दिन, दोस्तों के साथ बिताए पल और जीवन की छोटी बड़ी घटनाएं। यही स्मृतियां हमारे बीते हुए कल को हमारे आज से जोड़ती है।
0: लेकिन सोचिए, जब धीरे धीरे यही स्मृतियां हमारा साथ छोड़ने लगें तो कैसा महसूस होगा? जब कोई व्यक्ति अपने ही घर के लोगों को पहचानने में कठिनाई महसूस करे, रोज़मर्रा की बातें भूलने लगे, तुरंत की कही बात याद ही न रहे, या अपने जीवन की पूरी घटनाएं धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगें, तो यह केवल भूलने की आदत नहीं हो सकती, कई बार यह अल्जाइमर रोग का संकेत भी हो सकता है।
1: और पता है श्रोताओं, इसी महत्वपूर्ण विषय के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है।
0: अल्जाइमर एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति की याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे प्रभावित हो सकती है। यह केवल उस व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसके परिवार और देखभाल करने वालों के जीवन पर भी असर डालता है।
1: और विश्व अल्जाइमर दिवस हमें ये समझने का अवसर देता है कि याददाश्त में हो रहे लगातार बदलावों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ कभी कभार चीज़ें भूल जाना सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर भूलने की समस्या लगातार बढ़ रही हो और रोज़मर्रा के कामों में बाधा पड़ रही है तो तुरंत डॉक्टर से दिखाना।

0: चाहिए। और 65 वर्ष के बाद अल्जाइमर अधिक सामान्य होने लगता है, और 65 वर्ष से पहले होने वाले मामलों को ईयरली ऑनसेट अल्जाइमर कह सकते हैं, और कभी कभी ये 40 या 50 की उम्र में भी शुरुआत हो सकता है इसकी।
1: और सबसे ज़रूरी बात श्रोताओं कि ऐसे व्यक्ति के साथ धैर्य और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई बुज़ुर्ग एक ही बात बार बार पूछता है, किसी का नाम भूल जाता है या कोई बात याद करने में समय लेता है, तो उसका मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। उसे डांटने की बजाय प्यार से समझाना चाहिए।
0: परिवार के सदस्य उनकी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने, ज़रूरी चीज़ों को सही जगह रखने और डॉक्टर की सलाह के अनुसार देखभाल करने में मदद कर सकते हैं।
1: और हमें यह भी समझ

0: जनक व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग एक ही बात बार बार पूछता है, किसी का नाम भूल जाता है या कोई बात याद करने में समय लेता है, तो उसका मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। उसे डांटने की बजाय प्यार से समझाना चाहिए।
1: परिवार के सदस्य उनकी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने, ज़रूरी चीज़ों को सही जगह रखने और डॉक्टर की सलाह के अनुसार देखभाल करने में मदद कर सकते हैं।
0: और हमें यह भी समझना चाहिए कि अल्जाइमर से जूझ रहा व्यक्ति जानबूझकर बातें नहीं भूल रहा होता है। यह समय जो चल रहा है उसके लिए सबसे कठिन समय में से एक है, तो ऐसे समय में हमारा प्यार, धैर्य और सहयोग उसके लिए बहुत ही मायने रखता है।
1: ये तो सखियो, हमारी स्मृतियाँ हमारे जीवन की खूबसूरत किताब की तरह है। अगर इस किताब के कुछ पन्ने धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे तो हमें उस व्यक्ति से दूरी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उसके साथ बैठकर प्यार और अपनापन देना चाहिए। और पूनम, देखो ना, समय भी हो गया बात करते करते बहनों से, और अब तो विदा लेने का समय है। तो बहनों से हम यही कहेंगे कि अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: 6.66%. Final results are expected by September the 25th. The United Russia Party won 324 seats in the previous election. The election took place amid the ongoing conflict with Ukraine and a major overnight drone attack launched by Kiev. Russian officials said more than 1,900 drones were involved, killing at least two people and damaging an oil refinery. In the Asian Games, India secured a double podium finish in the men's 10-meter air rifle event in Nagoya, Japan. Himanshu Dhillon won the silver medal with a score of 252.4, while Rudraksh Patil clinched the bronze with 230.9. Earlier, India had also won the silver medal in the men's 10-meter air rifle team events. In mixed martial arts, Suchikata Riyal bagged the bronze medal after losing 0-2 to Singapore's Hui Hoon Choi in the women's 60-kilogram traditional semi-final. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for today. According to IMD, similar weather conditions are also likely to prevail over coastal Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka and Madhya Maharashtra during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India-New Zealand free trade agreement finalised comes into force on 20th October, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Union Minister Anupriya Patel says Indian pharmacopoeia gains recognition in 25 countries, reflecting the country's remarkable journey of self-reliance. Releases 7th edition of National Formulary in New Delhi. BJP says Congress is deeply influenced by communist ideology, condemns former Vice President Hamid Ansari's remarks. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to lead Indian delegation at 81st session of UNGA in New York. Russia's ruling United Russia Party takes lead in parliamentary election. IMD forecasts heavy rainfall over Andaman and Nicobar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for today. And Indian shooters win 3 medals in men's 10-meter air rifle, taking total tally to 6 at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई, करीब 58% वोट हासिल किए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय

0: से घनिष्ठ संबंध हैं जो मजबूत जन संबंध हो और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
1: Today we have around 1150.
2: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिसे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
1: Which will make a big change in times to come.
0: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
1: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
2: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
1: व्हिच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
0: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
2: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल की तक की जेल और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदे। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
3: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों तेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्ध नगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमासानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस किला पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
4: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की।

0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य में नशा मुक्त राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
1: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है, हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। दो दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाग चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज वो चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
0: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
2: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
3: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
2: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
4: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
2: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने

0: करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थीं। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: मन शांत हो तो हर कठिन परिस्थिति भी एक नई और महत्वपूर्ण सीख बन जाती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू लिखते हैं,
3: सादर नमस्कार, ये मेरा प्रशंसा पत्र है। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ, इससे हमारा भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, हमें सीख और प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरे टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद।
2: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत, परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: लानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों, कोकोवा या कोको फल का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
3: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी।
2: तो श्रोताओं, इसका उत्तर है चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से राजस्थान के खेजडली गाँव से हुई थी।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था कि जब

0: जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्यों?
1: उत्तर है साथियों, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि इन्हें जीवात्मा माना जाता है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो जंगल के दूसरे पेड़ पौधों का भी पोषण करते हैं।
0: और हमारा अगला सवाल बड़ा मजेदार था। हमारा सवाल था श्रोताओं, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो जंगल का रक्षक लेशी उनके साथ क्या करता है?
1: उसका उत्तर है साथियों, लेशी उन्हें जंगल में भटका देता है।
0: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है?
1: खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का संदेश है, जंगल हमारा नहीं है, हम बस इसके रखवाले हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
0: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। हमारा निवेदन ये भी है कि इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को ताज़ा तरीन जानकारी के लिए जरूर फॉलो करें।
1: जी, और आपको बता दें कि अब NCERT की कक्षा 9 तक की नई पाठ्य पुस्तकें किसी भी सर्च इंजन द्वारा NCERT की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।
0: और यदि आप इन पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
1: जी,
0: वहाँ आप हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी जब चाहें सुन सकते हैं। और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, दिस इज माई टाउन।
1: अंग्रेजी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित कविता को संगीत रूप में प्रस्तुत करते हुए ये कार्यक्रम नगर की बनावट, साफ सफाई और कूड़ा निपटान समेत स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का संदेश देता है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है जगमगाता गांव।
1: इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लिया गया है और विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि हमें अपने विचारों को कर्म में भी प्रकट करना चाहिए, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है।
2: साथियों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी। ये घटना अमेरिका की है।
3: ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका संयुक्त राज्य नहीं बना था। दरअसल ये कई देशों की कॉलोनी थी। उस जगह के मूल निवासी आदिवासी थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था। आगे चलकर जब सभी राज्यों का एकीकरण हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना। ये वही अमेरिका है जिसे इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और इसे नई दुनिया का नाम दिया था।
2: कोलंबस निकले तो थे भारत को खोजने, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। तो आइए मित्रों, इस जानकारी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 17वीं शताब्दी के आरंभ का काल था। उन दिनों आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी।
3: मोटरगाड़ी, टेलीफोन, चलचित्र, समाचार पत्र कुछ भी नहीं था। यातायात के साधन नहीं के बराबर थे और लोग आवागमन के लिए या तो पैदल चलते या पशुओं का इस्तेमाल करते थे।
2: बिजली भी नहीं थी, इसलिए रात को लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी होती थी। जो सड़कें थीं, वे भी खस्ता हाल थीं। बारिश के समय वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाया करते थे और उनकी मरम्मत करने वाले नहीं के बराबर थे। और तो और, अधिकांश सड़कें कच्ची ही थीं।
3: इन कारणों से वहां दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। रात के अंधकार में यात्रा करने वाले मुसाफिर और मुख्य रूप से व्यापारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी।
2: ज्यादातर व्यापारी ही इन दुर्घटनाओं का शिकार इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें अपना सामान लेकर सुबह सुबह मंडियों में पहुंचना होता था और इसलिए उन्हें रात भर सफर करना पड़ता था।
3: अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक गांव था, नाम था पोप्स क्रीक। इसी गांव में एक बालक रहता था। उसके गांव में भी इस तरह की दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। जब कोई भी उस गांव से रात को गुजरते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उस बालक को बहुत दुख होता।
2: लेकिन किया ही क्या जा सकता था, उसे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अपने गांव के बड़े लोगों से बात भी की, लेकिन सबने हंसकर टाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक भी उड़ाते थे। उसके पिताजी अक्सर अपने व्यवसाय के कारण बाहर ही रहते थे।
3: लेकिन वो बच्चा इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सोचता रहता। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से कहा।
4: माँ।
5: हाँ बेटा।
4: मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोज हमारे घर के सामने दुर्घटना होती है। कोई ना कोई रोज हमारे घर के सामने गड्ढों में गिरता है।
5: हाँ बेटा, पर ये कोई नई बात तो है नहीं।
4: हाँ पर
5: देखो, ऐसी दुर्घटनाएं तो पूरे गांव में हो रही हैं और दूसरे गांव में भी होती हैं।
4: पर माँ हमारे
5: लेकिन बेटा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सड़कें खराब हैं और अंधकार भी तो है, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना बेटा।
4: जरा सोचो ना माँ, लोग इसी तरह दुर्घटनाओं का शिकार हो

0: होते रहते हैं, क्या हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे?
1: अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
0: लेकिन माँ सुनो ना।
1: अरे बेटा मैंने कहा।
0: अरे सुनो उफ माँ।
1: अरे बेटा मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
0: माँ उफ।

0: साथियों, उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने पिता से भी बात की। उसने गांव के बड़ों से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
1: वो बच्चा लगातार सोचता रहता कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी और रात्रि भोजन का समय हो गया था। सब डिनर करने बैठे थे।
2: लो बेटा, अरे क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ क्या सोच रहे हो।
3: हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। बेशक बहुत बड़ा समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं।
2: कुछ कर सकते हैं? भाई क्या समाधान है? देखो, बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ और तुम करोगे।
3: हाँ माँ, माँ कैसा रहेगा यदि हम अपने घर के बाहर एक लैंप रख दें या लालटेन टांग दें?
2: बेटा जॉर्ज, तुम कैसी बातें करते हो। लालटेन टांग दें, इससे क्या होगा भला?
3: माँ मुझे दे दीजिए ना एक लालटेन।
2: बेटा
3: मैं जल्दी लालटेन को घर के बाहर लटका दूंगा।
2: अरे इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा, क्या दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? सारा गांव इस बात पर हंसी उड़ाएगा हमारी।
3: हंसने दो ना माँ, हम लोगों को यूं ही चोट खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ कि सारी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन
2: लेकिन क्या बेटा?
3: कम से कम हमारे घर के सामने तो दुर्घटना होनी कम हो जाएगी ना। लालटेन से लोगों को रास्ता दिख जाएगा और वे बच जाएंगे। लाओ मुझे एक लालटेन दे दो माँ। दे दो ना माँ, दे दो।
2: अरे बेटा सुनो तो
3: माँ, एक लालटेन दे दो।
2: देखो बेटा, इससे कुछ नहीं होगा। और तुम लालटेन उठाकर, अरे तुम,
3: अरे माँ लालटेन दे दो।
2: अरे लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही। ओहो सुनो तो, देखो ये बच्चा मानता ही नहीं है। ठीक है, जैसा तुम सोचो।
4: एक दो दिन के लिए ऐसा करने में हर्जी क्या है? करके देखता हूँ। कहाँ रखूँ, कौन सी जगह, यही ठीक रहेगा। कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है।
0: साथियों, उस बालक का नाम था जॉर्ज। उसने जलती हुई लालटेन उठाई और घर के बाहर लटका दी। वो देखना चाहता था कि इसका क्या असर होता है। रात भर वो जागता रहा।
1: सुखद आश्चर्य, व्यापारियों और यात्रियों का झुंड वहां से गुजरता रहा, लेकिन उस रात उसके घर के आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई।
0: सुबह वो बच्चा भागा भागा माँ के पास पहुंचा।
3: माँ माँ माँ,
2: अरे अरे बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
3: देखा आपने रात को लालटेन टांगने का असर? मैं तो सारी रात जागता रहा।
2: क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई?
3: नहीं माँ, एक भी नहीं।
2: अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हमारे घर के सामने किसी को चोट नहीं लगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा।
3: मैं कहता था ना माँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अब तो मैं गांव के लोगों को भी ये बात बताऊंगा।
2: हाँ, ये जरूर करना, तुम सबको बताना।
3: हाँ माँ,
2: बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी। बहुत अच्छा।
0: तो साथियों, जॉर्ज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी माँ को भी बात समझ में आने लगी थी। उन्हें लगा कि यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम अपने घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने उनकी हंसी जरूर उड़ाई, लेकिन उन्होंने अब रोज रात को लालटेन टांगना शुरू कर दिया।
1: उन्हें बहुत अच्छा लगा जब कई राहगीरों ने रात को उनके घर का दरवाजा खटखटाया और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

0: धीरे धीरे ये चर्चा सारे गांव में होने लगी और लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घर के सामने लैंप या लालटेन रखना शुरू कर दिया और परिणाम ये हुआ कि दुर्घटनाएं होनी बिल्कुल बंद हो गईं।
1: राहगीर जब दूर से आते तो उन्हें उस गांव को जगमगाता देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो दूर दूर तक इस गांव की चर्चा होने लगी और लोगों ने इस गांव का नाम रखा द विलेज ऑफ लाइट्स।
0: विलेज ऑफ लाइट्स यानी जगमगाता गांव। साथियों, देखा आपने कैसे एक बालक की सोच और इच्छा शक्ति ने सारी परिस्थिति बदल दी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू किया और वो क्षेत्र दुर्घटना मुक्त हो गया। इसी बात से प्रेरणा लेकर बाद में सड़कों के किनारे तेल के लैंप पोस्ट लगने शुरू हो गए।
1: हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें। कोई करे या ना करे, यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए और वो भी पूरी लगन से, जैसा कि उस बालक ने किया।
0: साथियों, वो बालक जॉर्ज कोई और नहीं, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बने।
1: जी हाँ साथियों, आप ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन आप स्वयं बनिए।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
0: भाई मट्टू और घड़ी।
3: एक दिन का जिक्र है, भाई मट्टू खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। वहां दीवार पर घड़ी लगी थी, बस देखते ही उछल पड़े।

0: सीधे चट्टू के पास भागे। इतने तेज कि बस कुछ पूछो मत। चट्टू के पास पहुंचे तो सांस फूला हुआ था, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। मट्टू बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोले,
1: अरे चट्टू, वो दीवार पर टंगी है बावर्ची खाने में, और भाई बहुत ही खूबसूरत है।
2: आखिर क्या चीज?
1: घड़ी। घड़ी और क्या, और इसमें कुछ लटक भी तो रहा है, जाने क्या है, इधर आता है उधर जाता है, बस हिलता रहता है और ऐसे बोलता है जैसे टिक टिक टिक टिक। सुनो सुनो, आ रही आवाज।
0: चट्टू भाई ने थोड़ी देर आवाज की तरफ कान लगाए और बोले,
2: हाँ भैया, आ तो रही है।
0: इतना कहकर वो भी बावर्ची खाने की तरफ बहुत तेजी से भागे कि जरा एक नजर देख लें। वहां पहुंचकर बोले,
2: अरे भैया, ये तो पेंडुलम है।
3: पेंडुलम?
2: वही जिसे मास्टर साहब उस दिन रक्कास कह रहे थे। आहा भाई, ये तो बड़ा अच्छा झूला है।
0: चट्टू भाई झट से उस पर कूद कर चढ़ गए। अब मट्टू भाई को कहां ताप थी, उन्होंने भी एक छलांग लगाई और झूले पर सवार हो गए। चट्टू भाई बोले,
2: भैया टिल्लू, खिल्लू और जग्गू मग्गू को भी बुला लाएं।
0: मट्टू बोले,
1: हाँ हाँ जरूर।
0: दोनों उतरे और थोड़ी देर में अपने साथ फौज की फौज ले आए।
1: देखो, ये है वो झूला, मगर अब सूरत क्या हो। अच्छा, यूं करें कि दो दो करके बारी बारी झूलें। पहले हम झूलेंगे, हमारा हक पहला है, हमी ने तो इसका पता लगाया है।
0: मगर वो चारों पांचों अकड़ने लगे।
2: वाह साहब वाह, पहले हम झूलेंगे, तुम अपनी बारी ले चुके और जाने कितना झूल चुके हो।
0: अभी ये बहस हो रही थी कि घड़ी की सुई ठीक 12 के हिंसे पर आ गई। अचानक एक खटके के साथ छोटा दरवाजा खुला, उसमें से एक खूबसूरत सी चिड़िया बाहर आई और बहुत गुस्से से बोली,
1: हाय, ये क्या शरारत, तुमने यहाँ आने की कैसे हिम्मत की, ये मेरा घर है, भाग जाओ।
0: चूहे इस आवाज से ऐसे सहमे कि जिसका जिधर मुंह उठा गिरता पड़ता बुरी तरह भागा।
4: पढ़िए और समझिए।
0: कान लगाना,
4: ध्यान देना।
0: रक्कास,
4: नाचने वाला।
0: ताब,
4: ताकत बर्दाश्त।
0: हिंसा,
4: नंबर अदद। इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक,
0: भाई मट्टू खेलते खेलते कहां पहुंचे?
4: सवाल नंबर दो,
0: घड़ी की आवाज कैसी थी?
4: सवाल नंबर तीन,
0: घड़ी के किस हिस्से को मट्टू ने झूला बनाया था?
4: सवाल नंबर चार,
0: चट्टू टिल्लू खिल्लू और मट्टू डर कर क्यों भागे?
5: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अभी आप NCERT का

प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर, FM 100.3 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

परिस्थितियाँ कितनी ही विषम क्यों न हो, धैर्य बनाए रखिए। यह प्रकृति का नियम है, रात कितनी ही अंधेरी और काली क्यों न हो, सवेरा जरूर होता है। सूरज को बादल भले ढक लें, लेकिन वो दिन को रात में नहीं बदल सकते। सूर्य का प्रकाश कुछ न कुछ धरती पर आता ही है, वैसे ही आशावादी बने, परिस्थितियों का सामना करें और अपना विवेक

रात कितनी ही अंधेरी और काली क्यों ना हो, सवेरा ज़रूर होता है। सूरज को बादल भले ढक लें, लेकिन वो दिन को रात में नहीं बदल सकते। सूर्य का प्रकाश कुछ न कुछ धरती पर आता ही है। वैसे ही आशावादी बने, परिस्थितियों का सामना करें और अपना विवेक कभी भी न खोएं, क्योंकि जब विवेक खो देते हैं तो बुद्धि बेलगाम हो जाती है और विनाश का कारण बनती है।

दूसरों की मदद करें, आपकी मदद अपने आप होगी, यही नैसर्गिक नियम है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ संपन्न होती है हमारी ये सभा, शाम की सभा। नन्हे मुन्ने बच्चों के कार्यक्रम नन्ही दुनिया से शुरू होगी 5 बजे। इस बीच हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 5 बज रहे हैं, दूसरी सभा आरंभ होती है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब नन्हे मुन्ने सुनेंगे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद
0: पूनम दीदी।
1: और जय हिंद अनीता दीदी।
0: दीदी हम हर बार की तरह अपने नन्हे मुन्नो से मिलने आ गए हैं उनके अपने सबसे प्यारे से कार्यक्रम नन्ही दुनिया में। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में।
1: और बच्चों आज आप सभी से हम दोनों दीदियां यानी कि पूनम दीदी और अनीता दीदी अच्छी अच्छी ढेर सारी बातें करेंगे। ज्ञानवर्धक जानकारी और मनोरंजन से भरपूर गीत संगीत भी आपको सुनवाएंगे।
0: तो बच्चों एक बात बताइए, हम सभी से जिंदगी में कभी ना कभी तो गलती होती ही है। जैसे खेलते खेलते कोई सामान टूट जाता है, कभी होमवर्क करना हम भूल जाते हैं, कभी जल्दी में किसी से गलत बात कह जाते हैं,
1: या कभी अपने दोस्तों को बिना कुछ सोचे समझे कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे उनका मन दुखी हो जाता है। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि हमें ऐसे समय में क्या करना चाहिए? क्या गलती होने पर डर जाना चाहिए या फिर झूठ बोलने पर अपनी गलती छुपा देना चाहिए? तो बच्चों बिल्कुल भी नहीं। गलती होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सबसे हो जाती है। लेकिन बड़ी बात ये है कि अपनी गलती को समझना और उसे सुधारना, है ना दीदी?
0: बहुत ज़रूरी है दीदी। और बच्चों अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है तो उससे पहले सच बोलिए। गलती को छुपाने से आपकी जो समस्या है वो और बढ़ सकती है। मान लीजिए खेलते समय घर का कोई सामान या कोई ऐसी चीज़ आपसे टूट गई और आप डर से कह दें कि भाई मैंने तो नहीं तोड़ा, तो बात यहाँ पर और बिगड़ सकती है। बल्कि इसकी जगह आप प्यार से कह सकते हैं, मुझसे गलती से टूट गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे मैं ध्यान रखूँगा या रखूँगी। हो सकता है मम्मी पापा थोड़ा नाराज़ होंगे, लेकिन आपकी जो सच्चाई वाली बात है ना, सुनकर उन्हें ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा।
1: और बच्चों अगर आपको गलती से किसी दोस्त, भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का मन दुखी हो गया है आपकी वजह से, तो माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं करना चाहिए। बस इतना कहना काफ़ी है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है और मैं आगे से ध्यान रखूंगा या रखूंगी। सच्चे मन से कही गई छोटी सी बात भी किसी का दुख कम कर सकती है।
0: लेकिन बच्चों सॉरी बोलना ही काफ़ी नहीं है। अगर गलती को ठीक किया जा सकता है तो उसे ठीक करना चाहिए। गलती को दोबारा बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहिए।
1: लेकिन बच्चों पढ़ाई करते समय बार बार एक सवाल अगर गलत कर रहे हैं तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और उसके बाद उसे दोबारा समझिए। खेलते समय अगर गुस्सा आ जाए और दोस्त से झगड़ा हो जाए तो सोचिए कि अगली बार गुस्सा आए तो हम उसको कैसे शांत करेंगे, है ना दीदी?
0: बिल्कुल। तो बच्चों कोई भी बच्चा हमेशा से

0: सही नहीं हो सकता। कभी हमसे गलती भी होगी, कभी हम कुछ भूलेंगे भी, और कभी हमसे किसी का दिल भी दुख सकता है। लेकिन अच्छा बच्चा वह नहीं जिससे कभी गलती ना हो। क्यों दीदी?
1: बल्कि अच्छा बच्चा तो वह है जो अपनी गलती को मान ले, स्वीकार कर ले और माफी भी मांग ले, उसे सुधार ले और उसे सीख भी ले। तो अगली बार जब भी आपसे गलती हो जाए बच्चों, तो घबराना नहीं है बिल्कुल, बल्कि सच बोलिए, माफी मांगिए, गलती सुधारिए और उससे सीख कर आगे
0: आगे बढ़िए,
1: बढ़िए।
0: क्योंकि पूनम दीदी, जो हमारे जो बच्चे हैं ना, गलती होती है ज़रूर, लेकिन हमें बुरा नहीं लगना चाहिए कि हमें मतलब गलती हमसे हो गई। बल्कि गलती अगर हुई है ना, तो गलती से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है ना। उसके पीछे आप छोड़ दीजिए। और जब हम अपनी गलती से सीखते हैं, तो हर दिन हम कल से थोड़ा और अच्छे बनते जाते हैं, और एक सच्चा और एक अच्छा बच्चा हम बनकर निखर आते हैं।
1: बिल्कुल दीदी, बातें तो इतनी सारी हो गई, बहुत प्यारी प्यारी बातें हो गई, और अब बच्चों को एक प्यारा सा गीत सुनवा दे।
0: तो बच्चों, आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: दीदी गाना तो सुनकर बच्चे खूब खुश हो गएंगे क्योंकि
1: हाँ, और हम
0: खूब
1: लोग भी
0: मजा
1: तो
0: आया होगा।
1: झूमने लगे ना खुशी से।
0: चंदा चमके चम चम। और दीदी अब
1: अब कुछ और बातें हो जाएं, कुछ और जानकारियां हो जाएं बच्चों के लिए तो कैसा रहेगा।
0: बिल्कुल, एक दीदी मैं बताऊं, बच्चे ना जब सुबह सुबह स्कूल आते हैं तो उनको मनपसंद टिफिन भी चाहिए होता है,
1: हाँ
0: तो मम्मी को जल्दी बनाने में क्या करे कि मम्मी जल्दी से बना ले।
1: हाँ इसका एक जादुई उपाय है, वो
0: हाँ
1: ये है कि अपनी मम्मी से बोलें कि वो प्रेशर कुकर में फटाफट टेस्टी टेस्टी खाना बना के हम लोग को दे दे, है
0: हाँ
1: ना।
0: ये तो अब बहुत अच्छी बात है, तो जल्दी जल्दी बताइए दीदी।
1: तो आज हम बच्चों को ये बताएंगे कि प्रेशर कुकर में खाना इतनी जल्दी फटाफट कैसे बन जाता है। तो बच्चों, हम रोज अपने घर में खाना पकते हुए तो देखते ही हैं, मम्मी पकाती हैं दाल चावल सब्जियां और कई दूसरी चीज़ें बनाने के लिए। हम मम्मी जो है ना, वो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करती हैं ताकि चीज़ें फटाफट बन जाए, है ना। लेकिन
0: दीदी कुकर में
1: बच्चों,
0: बनता है जल्दी, लेकिन क्यों बनता है? देखिए बच्चे भी मेरे यही सवाल कर रहे होंगे।
1: बिल्कुल कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम बताएंगे कि प्रेशर कुकर में खाना जो है सामान्य बर्तन की तुलना में जल्दी कैसे पक जाता है। तो इसका कारण है दाब, यानी कि प्रेशर, इसीलिए तो इसको प्रेशर कुकर कहते हैं, है ना दीदी। तो ये समझने के लिए हमें पहले पानी और या फिर भाप के बारे में जानना होगा। जब हम किसी बर्तन में पानी रखते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। और बच्चों, अगर हम साधारण सी भाषा में कहें कि प्रेशर कुकर में खाना अपने दबाव की वजह से जल्दी पकता है, जब कुकर में पानी और खाना डालकर ढक्कन बंद करते हैं हम और उसे गैस पर रखते हैं, तब पानी गर्म होकर भाप बनाता है, और जब ढक्कन बंद होता है तो उसकी वजह से भाप बाहर नहीं निकल पाती और कुकर के अंदर दबाव जो है वो बढ़ जाता है। इससे कुकर के अंदर का जो तापमान है वो सामान्य उबलते पानी से और अधिक हो जाता है, और हमारा खाना जैसे कि दाल चावल सब्जियां और आलू, ये सब जल्दी से पक जाता है।
0: दीदी आपने तो बहुत बड़ी राज की बात बच्चों को बता दी। पता है दीदी, अभी तक जो हमारे बच्चे हैं ना नन्हे मुन्ने श्रोता, ये तो जब कुकर की आवाज़ सीटी बजती होगी किचन से, तो ये लोग कहते हैं मम्मी सीटी बज गई, तो ये
1: हाँ
0: सीटी काउंट करते थे। लेकिन आज तो आपने बताया कि खाना पकता कैसे है।
1: यानी कि सीटी, कुकर की सीटी का कमाल, है ना।
0: और दीदी एक अच्छी चीज़ है, जैसे आपने बताया ना कि आलू जल्दी उबल जाता है, सब्जी जल्दी बन जाता है, तो बच्चे अब मम्मी से कह सकते हैं कि मम्मी आलू का पराठा खाना है तो आलू तो झटपट कुकर में रखिए, उबल जाएगा और जल्दी से पराठा ही दे दीजिए सब सुबह सुबह नाश्ते में।
1: हाँ, और दीदी, मौसम बदल रहा है तो हम अपने बच्चों से कहेंगे कि इस बदलते मौसम में जैसे कि कभी ठंडी लग रही है, कभी बहुत गर्मी लग रही है, तो इसमें अपनी सेहत का ध्यान रखें। साथ ही हमारे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो अब बड़े हो रहे हैं, तो अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का, अपने भैया दीदी का, अपने दादा दादी का, सबका ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है
0: और
1: ना।
0: दीदी साथ साथ बच्चों को भी बताइए कि अपना भी ध्यान रखें। आप जो चुपके से फ्रिज का पानी पी लेते हैं और जो चुपके से आइसक्रीम खा लेते हैं, और कभी कभी तो आइसक्रीम नहीं मिलती तो आप लोग फ्रिज खोलते हो, बर्फ का टुकड़ा ही खा लेते हो, मुझे पता है सब, क्योंकि मेरे पास तो जादू है, तो हम सबको पता होता है दीदी। और दीदी अब
1: अब चलने का समय हो रहा है, तो अगली मुलाकात में हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए
0: जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

0: नन्हे मुन्ने अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे नन्ही दुनिया, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। एक संदेश के बाद युवजन सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।

हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग आदाब श्रोता साथियों, आप सुन रहे हैं अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी और आज का सफ़र होगा मेरे यानी अभिषेक के साथ एक ख़ास विषय के साथ। दोस्तों, कभी नौकरी का मतलब होता था सुबह तैयार होना, घर से निकलना, रास्ते में ट्रैफिक से जूझना और फिर ऑफिस की एक तय कुर्सी पर बैठकर अपना काम शुरू करना। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर वही ऑफिस आपके कमरे में आ जाए या फिर कुछ समय बाद आपका कमरा भी ज़रूरी ना रहे, क्योंकि आज काम लैपटॉप में है, मीटिंग्स स्क्रीन पर हैं और सहकर्मी शायद आपसे सैकड़ों या हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हों, यानी ऑफिस की लोकेशन बदल रही है और काम करने का तरीका भी। तो साथियों, पहले आया वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने का चलन और अब तेज़ी से चर्चा हो रही है वर्क फ्रॉम एनीवेयर की, जहाँ ज़रूरी नहीं कि आप घर से ही काम करें, आप किसी दूसरे शहर से, किसी शांत सी जगह से या ट्रैवल के दौरान भी आप अपना काम कर सकते हैं, बशर्ते आपकी भूमिका, कंपनी की पॉलिसीज और काम करने की प्रकृति इसकी अनुमति दे रही हो। तो आखिर इस बदलाव आया ही क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में नौकरी के लिए ऑफिस जाना ज़रूरी नहीं रहेगा? इन्हीं सवालों पर आज बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम एनीवेयर काम की बदलती दुनिया तक। साथियों, ये हम जानते हैं कि तकनीकी ने हमारे काम करने के तरीकों को बहुत ही तेज़ी से बदला है और आसान भी बनाया है। इंटरनेट, क्लाउड टेक्नोलॉजी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिजिटल कम्युनिकेशन ने कई ऐसे कामों को संभव बना दिया है जिनके लिए पहले एक ही ऑफिस में बैठना ज़रूरी माना जाता था। अब एक टीम का सदस्य प्रयागराज में भी हो सकता है, दूसरा बेंगलुरु में और तीसरा दिल्ली में और चौथा शायद किसी दूसरे देश में भी हो सकता है, फिर भी सभी एक ही प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर सकते हैं। यही है काम की दुनिया का एक नया चेहरा। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक बात और समझनी ज़रूरी है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर का मतलब कहीं से भी काम करो और कभी भी काम करो ऐसा नहीं है। इसका मतलब है काम को उसकी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना, और यहीं से युवाओं के लिए एक नई सोच भी सामने आती है। अब सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ रहते हैं, बल्कि ये भी मायने रखता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, आप कम्युनिकेशन कितने अच्छे से करते हैं, आप टेक्नोलॉजी को कितना समझते हैं, आप समय पर काम पूरा कर पाते हैं या नहीं, और सबसे ज़रूरी, क्या आप बिना किसी भी लगातार निगरानी के जिम्मेदारी से काम कर सकते हैं? क्योंकि रिमोट वर्क ने फ्रीडम तो बढ़ाई है, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ा दी हैं। और युवाओं के लिए इसका एक बड़ा फ़ायदा यह है कि नौकरी और अवसरों की भौगोलिक सीमाएं कुछ हद तक कम हुई हैं। मान लीजिए आप किसी एक छोटे से शहर में रहते हैं, पहले हो सकता है कि आपके आसपास आपकी पसंद के क्षेत्र में नौकरी के तमाम अवसर सीमित रहे हों, लेकिन आज अगर कोई कंपनी रिमोट या हाइब्रिड तरीके से काम करने की आपको अनुमति देती है तो आपके सामने दूसरे शहरों और कभी कभी दूसरे देशों तक के

भी अवसर हो सकते हैं। यानी करियर बनाने के लिए हमेशा शहर बदलना ही एकमात्र रास्ता अब बिल्कुल नहीं रह गया है। लेकिन इसके लिए साथियों एक शर्त है, स्किल सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि डिजिटल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट और लगातार सीखने की प्रैक्टिस, ये सब अब करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हैं। और शायद आने वाले समय की सबसे बड़ी बात यही होगी कि नौकरी वही करेगा और नौकरी उसी के लिए होगी जहां आपका स्किल सेट आपकी लोकेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो काम की इस बदलती दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम बदलाव करें, हम भी बदलाव से कदम मिलाकर चलें, क्योंकि दुनिया बदल रही है, काम बदल रहा है और हमें भी सीखने का अपना तरीका बदलना होगा। तो श्रोता साथियों, आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते चलते हैं अपने प्रोग्राम का ये पहला गीत।

वेलकम बैक डियर लिसनर्स। कि पहले हम बात कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम एनीवेयर तक पहुंचती काम की दुनिया की। लेकिन साथियों, हर बदलाव अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है। जैसे रिमोट वर्क सुनने में बहुत ही आकर्षक लगता है। सोचिए, ना रोज़ ऑफिस जाने की जल्दी, ना हर दिन ट्रैफिक का तनाव, और कई मामलों में अपने समय को ज़्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से व्यवस्थित करने की सुविधा भी होती है। लेकिन इसके दूसरी तरफ एक चुनौती भी है। काम और निजी ज़िंदगी की सीमा आखिर कहाँ ख़त्म होती है और कहाँ शुरू होती है? घर में काम कर रहे हैं तो घर भी है और ऑफिस भी। लैपटॉप बंद करने के बाद भी दिमाग में ऑफिस चल रहा हो सकता है। कभी कभी वर्क फ्रॉम होम, धीरे धीरे वर्क फ्रॉम एनीवेयर, और फिर वर्क ऑल द टाइम जैसा महसूस होने लग सकता है। इसलिए युवाओं के लिए ज़रूरी है कि काम का समय तय करें, बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें, काम की प्रायोरिटीज़ तय करें, और जब काम ख़त्म हो जाए तो ख़ुद को काम से अलग करने की कोशिश करें। क्योंकि प्रोडक्टिव होना ज़रूरी है, लेकिन हर समय बिजी रहना प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, मानवीय जुड़ाव यानी ह्यूमन अटैचमेंट। ऑफिस में हम सहकर्मियों के आमने सामने बात करते हैं, उनसे मिलते हैं और हर छोटी छोटी बातें उनसे साझा करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। रिमोट वर्क में कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा स्क्रीन पर चला जाता है। इसलिए युवाओं के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस, टीम वर्क और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छा रिमोट वर्कर वो नहीं जो सिर्फ लैपटॉप चला सके, और बल्कि वो है जो समय पर जवाब दे सके, अपनी बात स्पष्ट तरीके से रख सके, दूसरों की बातें भी सुने, और टीम के साथ कंपैटिबिलिटी बनाए और ज़िम्मेदारी से अपना काम पूरा करे। तो साथियों, अब सवाल है, क्या भविष्य पूरी तरह वर्क फ्रॉम एनीवेयर का होगा? शायद ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हर काम रिमोट नहीं हो सकता। डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलाकार, पत्रकार, टेक्नीशियन और कई दूसरे प्रोफेशंस में काम की टेंडेंसी अलग अलग होती हैं। कई जगह वर्क फ्रॉम ऑफिस, कहीं हाइब्रिड वर्क, कहीं रिमोट वर्क, तीनों मॉडल साथ साथ दिखाई दे सकते हैं। यानी फ्यूचर केवल एक मॉडल का नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस के बेहतर संतुलन का होगा। और यही बात युवाओं को समझनी होगी। करियर की दुनिया में अब सिर्फ एक सवाल नहीं होगा, आप कहाँ काम करते हैं, बल्कि सवाल होगा, आप क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि आज के समय में शायद सबसे ज़रूरी स्किल है लर्निंग टू कीप लर्निंग, यानी सीखना कभी बंद मत कीजिए। तो युवा साथियों, वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम एनीवेयर, असल बदलाव सिर्फ वर्क प्लेस में नहीं आया है, बदलाव हमारी सोच में आया है, हमारे काम करने के तरीकों में आया है। और अब करियर का मतलब सिर्फ एक सरकारी नौकरी पाना ही नहीं, बल्कि लगातार सीखते रहना, खुद को बेहतर बनाना, खुद को अपडेट रखना, और बदलती दुनिया के साथ साथ अपनी क्षमताओं का चौतरफा विकास करना भी है। साथियों, अपना काम ईमानदारी से कीजिए, अपने स्किल्स पर, अपने काम पर फोकस कीजिए, डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनिए, लेकिन उसकी सीमाओं को भी समझिए, टेक्नोलॉजी को अपना टूल बनाइए, अपना मालिक कभी नहीं। और याद रखिए, काम

दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है प्रेरणा पुंज। और जिस सेगमेंट में हम हर रोज़ अपने आप को कुछ ना कुछ मोटिवेटेड फील कराते हैं और अपनी प्रेरणा शक्ति के रूप में जिस भी पर्सनैलिटी की हम बात करते हैं, उनके जीवन से तमाम ऐसी नई बातें सीखते हैं जो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा बनती हैं और हमें नया मार्ग प्रशस्त करती हैं। साथियों, कई बार समाज को बदलने के लिए हमेशा बड़े बड़े स्पीचेस की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी एक शांत आवाज़, एक स्पष्ट विचार और मानवता में अटूट विश्वास भी पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है। आज हम एक ऐसे ही महान संत, समाज सुधारक और विचारक की जीवन यात्रा को याद कर रहे हैं, जिन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के दौर में शिक्षा, समानता और मानव

एकता का संदेश दिया। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है श्री नारायणन गुरु। श्री नारायण गुरु जी का जन्म 1856 में केरल के चिंपा जयंती में हुआ था। उनका जीवन ऐसे समय में आगे बढ़ा जब समाज में जाति के आधार पर भेदभाव और अनेक प्रकार की सामाजिक असमानताएं मौजूद थीं, व्याप्त थीं हमारे चारों ओर। लेकिन गुरु ने परिस्थितियों को अपनी सोच की सीमा नहीं बनने दिया। उन्होंने स्टडी किया, चिंतन किया, आध्यात्मिक साधना की और धीरे धीरे उनका जीवन केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं रहा बल्कि समाज के उत्थान का माध्यम बन गया। उनका संघर्ष केवल विचारों तक सीमित नहीं था। अरुविपुरम में उनकी गतिविधियों और प्रतिष्ठा से जुड़े प्रसंगों ने उस समय की सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी और साथ ही लोगों में आत्मसम्मान तथा स्वतंत्र चिंतन की भावना को भी बहुत बलवती किया, मजबूत बनाया। बात करें बाद के वर्षों की तो बाद के वर्षों में उनका संदेश सामाजिक जागरण की एक महत्वपूर्ण धारा बना। उन्होंने लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब उसके सभी लोगों को सम्मान और आगे बढ़ने का अवसर मिले। युवा साथियों, यहाँ श्री नारायण गुरु का जीवन हमें पहली बड़ी सीख देता है, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, सोच को सीमित मत होने दीजिए। अगर आपके सामने कोई सामाजिक समस्या है, कोई अन्याय हो रहा है या कोई ऐसी परंपरा है जो इंसान को इंसान से अलग करती है, तो सबसे पहले उसके बारे में सोचिए, सवाल कीजिए और बदलाव की दिशा में सकारात्मक कदम उठाइए। क्योंकि बदलाव हमेशा शोर से नहीं आता, कई बार वो विचार से शुरू होता है। गुरु ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना। उनका जोर ज्ञान और आत्मसुधार पर था। उनके विचारों में ये भावना स्पष्ट दिखाई देती है कि व्यक्ति स्वयं को बेहतर बनाएगा तभी समाज भी बेहतर बनेगा। यही संदेश आज के युवा साथियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। आज हमारे पास इंटरनेट है, किताबें हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, अनगिनत कोर्सेज हैं और सीखने के अनेक साधन। लेकिन सवाल यह कि हम इन साधनों का इस्तेमाल केवल मनोरंजन के लिए कर रहे हैं या अपने ज्ञान और व्यक्तित्व को निखारने के लिए। साथियों, गुरु के विचारों की सबसे बड़ी विशेषता ये भी रही है कि वे मनुष्य को उनके जन्म, जाति या सामाजिक पहचान से नहीं बल्कि उनकी मानवता से देखते थे। उनका प्रसिद्ध संदेश एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर मानव के लिए, मानव समानता की उनकी व्यापक सोच को सामने रखता है। उनके लिए धर्म का अर्थ केवल बाहरी पहचान नहीं था बल्कि ऐसा जीवन था जिसमें प्रेम, करुणा, ज्ञान और आपसी सम्मान हो।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: वेलकम बैक प्यारे दोस्तों। हम बात कर रहे थे हमारे आज के प्रेरणा पुंज श्री नारायण गुरु जी के जीवन चरित्र के बारे में। और वाकई में दोस्तों, जब हम उनको पढ़ते हैं, समझते हैं और उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं थी। शिक्षा का अर्थ था मन को जागृत करना, विवेक विकसित करना और व्यक्ति को अपने तथा अपने समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना। यही कारण है कि आज के युवा के लिए गुरु जी का संदेश बहुत स्पष्ट है। डिग्री हासिल

करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज्ञान हासिल करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था सामाजिक सुधार। उन्होंने समाज में मौजूद भेदभावपूर्ण प्रथाओं और रूढ़ियों के खिलाफ जागरूकता पैदा की और लोगों को सरल, गरिमापूर्ण और प्रगतिशील जीवन की ओर बढ़ने का स्पष्ट संदेश दिया। 1903 में उनके विचारों के प्रसार के लिए श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना भी की गई। लेकिन साथियों, श्री नारायण गुरु को केवल एक समाज सुधार के रूप में देखना उनके व्यक्तित्व को छोटा कर देना जैसा मालूम पड़ता है। उनकी सोच में आध्यात्मिकता और सामाजिक जिम्मेदारी साथ साथ चलती दिखती है। वो मनुष्य के भीतर परिवर्तन को समाज के परिवर्तन से जोड़ते थे, यानी अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत खुद से करनी होगी। और यही आज के युवा साथियों के लिए उनकी सबसे बड़ी सीख है, प्रेरणा है। दूसरों को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना चाहिए। हमें अपने आप को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हमें समाज में भेदभाव कम करना है तो अपने व्यवहार से शुरुआत बिल्कुल करनी होगी। अगर हमें नफरत कम करनी है तो अपनी भाषा में सम्मान लाना होगा। अगर हमें अंधविश्वास से बाहर निकलना है तो सवाल पूछने और समझने की आदत विकसित करनी होगी। और अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो ज्ञान, कौशल और मेहनत को अपनी ताकत बनाना होगा। तो साथियों, श्री नारायण गुरु जी का जीवन हमें यही याद दिलाता है कि इंसान की पहचान उसकी मानवता से होती है और समाज की असली ताकत उसकी एकता, शिक्षा और जागरूकता में ही होती है। इन्हीं विचार और इसी बात के साथ अपने आप को हमें मजबूत बनाना चाहिए और ऐसे प्रेरणा शक्ति जिन्हें हम हर रोज़ लेकर आते हैं उन्हें सुनना चाहिए और उनको अपने जीवन में असिमिलेट यानी आत्मसात करना चाहिए। साथियों, श्री नारायण गुरु का जीवन हमें ये भी बताता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो समाज के काम आए। केवल स्वयं आगे बढ़ जाना ही पर्याप्त नहीं होता। अगर आपकी शिक्षा किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में रोशनी पैदा करती है, अगर आपकी सफलता किसी और के लिए अवसर बनती है, अगर आपकी आवाज़ किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान के लिए उठती है जिसे समाज ने पीछे छोड़ दिया है, तभी हमारी और आपकी उपलब्धि का अर्थ और बड़ा हो जाता है। आज का युवा एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता है, इनोवेशन की बात करता है, टेक्नोलॉजी की बात करता है और नए भारत की बात करता है। ऐसे में गुरु का विचार हमें याद दिलाता है कि विकास केवल आर्थिक नहीं होना चाहिए, विकास के साथ मानवता, समानता और सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यही तो श्री नारायण गुरु जी की सोच का आधुनिक अर्थ है, अपने भीतर ज्ञान की रोशनी जगाना और उस रोशनी को पूरे समाज तक पहुंचाना। युवा साथियों, प्रेरणा केवल किसी महान व्यक्ति की कहानी सुन लेने से नहीं मिलती। असली प्रेरणा तब मिलती है जब हम उस कहानी से अपने जीवन के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने समाज और अपने परिवार के लिए कुछ नया रास्ता निकालते हैं। श्री नारायण गुरु से हम सीख सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करो लेकिन अहंकार मत पालो, आगे बढ़ो लेकिन दूसरों को पीछे छोड़कर नहीं, अपनी पहचान पर गर्व करो लेकिन किसी दूसरे का अपमान करके बिल्कुल नहीं, और सफलता हासिल करो लेकिन उसका उपयोग समाज के हित में करना कभी मत भूलो। साथियों, श्री नारायण गुरु जी का जीवन हमें बताता है कि एक व्यक्ति का विचार आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रभावित करता रहेगा।

साथियों इसी के साथ हम बात करते हैं एक और ख़ास विषय के बारे में, जो कहीं ना कहीं आज हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन से ये विषय या कहें या समस्या ज़रूर जुड़ी हुई मालूम पड़ती है। साथियों कभी-कभी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हम बहुत सहजता से भूल जाते हैं, किसी का नाम, रखी हुई कोई चीज़ या फिर कल की हुई कोई छोटी सी बात। लेकिन अगर भूलने का सिलसिला इतना बढ़ जाए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित होने लगे, अपने ही परिचित चेहरे पहचान में ना आए या सामान्य काम करने में लगातार परेशानी होने लगे, तो इसे केवल उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा मानकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। साथियों आज है 21 सितंबर और हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। तो हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे विषय की जो सिर्फ याददाश्त से नहीं बल्कि व्यक्ति, परिवार और समाज से जुड़ा है, अल्जाइमर और डिमेंशिया। विश्व अल्जाइमर दिवस हर वर्ष 21 सितंबर को मनाते हैं, जैसा

हमने बताया, और इसका उद्देश्य है कि अल्जाइमर और डिमेंशिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना, गलत धारणाओं और सामाजिक कलंक को कम करना, और इससे प्रभावित लोगों तथा उनके परिवार के प्रति समझ और सहयोग को बढ़ाना। और बात करें इस वर्ष की थीम की, तो हमारी इस वर्ष की थीम है द अर्लियर यू नो द मोर यू कैन डू, डिमेंशिया डायग्नोसिस मैटर्स, यानी जितनी जल्दी हमें पता चलेगा उसका समाधान भी उतनी जल्दी हम ढूंढ सकेंगे। साथियों, अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें मस्तिष्क की कार्यक्षमता धीरे धीरे प्रभावित हो सकती है। याददाश्त में कमी इसके सबसे प्रमुख लक्षणों में से एक है, लेकिन बात केवल भूलने तक सीमित नहीं रहती। सोचने, समझने, डिसीजन लेने और रोज़मर्रा के काम को करने की क्षमता भी इससे प्रभावित हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि आजकल युवा साथियों में भी ये प्रॉब्लम बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। तो साथियों, ऐसी स्थिति में हमें देखना चाहिए कि क्या वाकई में हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हम रोज़मर्रा में की हुई बातें, रखी हुई चीज़ें भूल रहे हैं। तो ऐसे में हमें ज़रूरी चिकित्सक की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, और ऐसे में परिवार की भूमिका भी बहुत बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। उनके साथ बातचीत करना, उन्हें सुरक्षित और सहज वातावरण देना, ये सब बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और उनकी बातों को धैर्य से सुनकर उनकी क्षमताओं के अनुसार हमें आकलन करना चाहिए। साथियों, कभी कभी होता है ना कि दादा नानी नाना नानी के साथ हम जब समय बिताते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो कई बार उनका व्यवहार देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहते हैं। उनके चेहरे पे कोई तस्वीर है, लेकिन वो उनके ज़बान से वो शब्द निकलते नहीं हैं। तो इस तरह के कई सारे लक्षण हैं जिनको हम पहचान सकते हैं, और ऐसी पहचान करके हम संबंधित चिकित्सक से अपना इलाज भी करा सकते हैं।

तो साथियों, चलते चलते मैं छोड़ जाता हूँ आपके लिए एक सवाल, और सवाल है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है और 2026 अल्जाइमर दिवस की थीम क्या है। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आप जवाब भेज सकते हैं हमारी मेल आईडी पर, जो कि है yuvvaniald@gmail.com, और आप साथ ही हमें सुन सकते हैं हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। मैं आपसे फिर मिलूंगा और करूंगा ढेर सारी बातें। तब तक के लिए मुझे यानी अभिषेक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: युववाणी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर 6 बज रहे हैं। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
2: This strategic partnership,
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है।

0: कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेटेड इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि एक दंडनीय अपराध है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने आज नई दिल्ली में 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में निगम की भूमिका सदैव अग्रणी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वे दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई थे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि समाज की सेवा के लिए उनके प्रयासों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने 3 पदक जीते। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं इसी प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कार्यक्रम विवरण।

पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे कमला प्रसाद पाल और साथियों के गाए लोकगीत। इसके अलावा अशोक कुमार सिंह बेशरम से लोक भाषा कविता पाठ और जगदीश प्रसाद पटेल से चंद्रजीत यादव की बातचीत इसी कार्यक्रम में सुनवाई जाएगी, जिसका विषय होगा भूमि अधिग्रहण कानून और किसान। हिंदी कार्यक्रम में 7:31 पर सुनिए नीलम यादव की वार्ता पोषण की चुनौतियां और मिलेट्स। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर आपको सुनवाएंगे सुजाता सिंह के गाए भजन और गीत। आठ बजे आने लीजिएगा फिल्म संगीत का। 8:30 पर आपको सुनवाएंगे सबरस कार्यक्रम। 9:30 का हमारा कार्यक्रम कहकशां 9:30 से सुना जा सकता है। रात 10:00 फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम होगा और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित रामकृष्ण का क्लैरिनेट वादन। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना सुबह 6:05 से आप सुन सकते हैं। विचार बिंदु कार्यक्रम में 6:30 पर सुनिएगा स्वामी विवेकानंद के विचार। छह पर कृषि जगत कार्यक्रम में कृषक जन सुनेंगे राजेंद्र प्रसाद मिश्र से दिनेश चंद्र पांडे की बातचीत औषधीय फसलों की वैज्ञानिक खेती। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7:00 और इसके बाद 7:10 पर आपको सुनवाएंगे फिल्मों से ली गई कुछ भक्ति रचनाएं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर सुनिएगा पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का गायन। शास्त्रीय संगीत के एक दूसरे कार्यक्रम में दिन में 12:15 पर आपको सुनवाएंगे पंडित गोपाल दास का क्लैरिनेट वादन और शास्त्रीय संगीत के रात्रिकालीन कार्यक्रम में 10:30 पर सुनिएगा पंडित नारायण राव का गायन। नमस्कार प्रयागराज, हमारा ये खास कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल सुबह 8:45 से और इसके बाद 9:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:50 पर कलाकार होंगी लक्ष्मीबाई राठौर। सुगम संगीत के एक दूसरे कार्यक्रम में 7:45 पर आपको सुनवाएंगे अनिल कुमार के गाए कुछ गीत। कल सुबह 10:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लोकगीत का कार्यक्रम होगा 10:30 पर, कलाकार प्रशांत मिश्रा और उर्मिला श्रीवास्तव। एक ही कलाकार कार्यक्रम लेकर आएंगे कल 11:00 और इसके बाद 11:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं।

आपकी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश 12:30 पर प्रसारित किया जाएगा। पनघट कार्यक्रम में कल दिन में 1:15 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अनुराधा पांडे के गाए लोकगीत और संजू मिश्रा से बातचीत का विषय होगा ग्रामीण महिलाओं की बदलती सोच और नया भारत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आपके लिए लेकर आएंगे कल दिन में 2:30 पर। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5 बजे सुनिएगा अनिल कुमार के गाए कुछ लोकगीत। युवजन अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुन सकेंगे 5:15 से।

0: पंचायत घर कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे शैलेश कुमार शर्मा के गाये लोकगीत और रमेश कुमार शुक्ल से रामायण पाठ। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का समय होगा 6:50। संस्कृत कार्यक्रम में कल शाम 7:31 पर सुनिएगा डॉक्टर हरिदत्त शर्मा का काव्य पाठ। रात 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सबरस कार्यक्रम कल रात 8:30 पर। गजलों का हमारा कार्यक्रम कहकशां होगा कल रात 9:30 पर और रात 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम। ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब सुनते हैं देश का गान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देश कान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये मुक्त व्यापार सन्धिः अस्य वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 20 दिनांके विजयदशमीतः प्रवर्तिष्यते।

0: इति वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संसूचितवान्। केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अद्य उक्तवती यत् विश्वस्य 25 देशाः भारतीय औषधि सूची मान्यतां ददति इत्येतत् भारतस्य स्वावलंबनस्य महत्वपूर्णा यात्रा प्रदर्शयति। सा नवदिल्ल्यां राष्ट्रीय औषधि सूच्याः 7वं संस्करणं प्रकाशितवती। भाजपेति दलेन उक्तं यत् कांग्रेस दलं साम्यवाद विचारधारया गभीरतया प्रभावितः अस्ति। सहैव पूर्व उपराष्ट्रपतिना हामिद अंसारी इत्यनेन प्रदत्तस्य वक्तव्यस्य निन्दा कृता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकायाः न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81वें सत्रस्य उच्चस्तरीय सप्ताहाय भारतीय प्रतिनिधिमंडलस्य नेतृत्वं करिष्यति। रूसदेशस्य शासनाधिरूढं यूनाइटेड रसिया दलं देशस्य संसदीय निर्वाचने अग्रे अस्ति। अपि च जापान देशस्य इचिनोमिया नगरपालिका व्यायामशालायां अजेय भारतं त्रिषु स्पर्धासु बांग्लादेशं 3-0 इत्यंकैः पराजित्य प्राग उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये मुक्त व्यापार संधिः अस्य वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 20 दिनांके विजयदशमीतः प्रवर्तिष्यते। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् अनेन संधिना न्यूजीलैंड देशाय भारतस्य 100% निर्यातः शुल्क मुक्त प्रवेशस्य सौविध्यं प्रदास्यति। असौ उक्तवान् यत् एषा रणनीतिक सहमति उभयोः देशयोः मध्ये सहकारं अधिकं सुदृढीकर्तुं विद्यमानानां प्रतिबद्धतां प्रतिबिम्बयति। अपि च आगामी 4-5 वर्षेषु वस्तूनां सेवासु च द्विपक्षीय व्यापारस्य मूल्यं प्रायः 35,000 कोटिरूप्यकाणि यावत् वर्धयितुं लक्ष्यं निर्धारितमस्ति। मन्त्रिणा उक्तं यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः मुक्त व्यापार सन्धेः प्रवर्तनेन एतत् लक्ष्यं सुदृढार्थिक परिणामेषु परिवर्तितं भविष्यति।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयलः उक्तवान् यत् अनेन सन्धिना भारतस्य सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः कृषकेभ्यः हस्तशिल्पिभ्यः तथा हस्ततन्तुशिल्पकारेभ्यः च महत् लाभं भविष्यति तथा आजीविकायाः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। सः सूचितवान् यत् न्यूजीलैंड देशेन अस्य सन्धेः अन्तर्गतं भारतदेशे 2,00,000 कोटिरूप्यकाणां प्रत्यक्ष वैदेशिक निवेशाय प्रतिबद्धता प्रदर्शिता अस्ति।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ
1: Meet India's scale and growing demand.
0: अयं संधि भारतीय निर्यातेभ्यः वस्त्र परिधानयोः औषधीनां कृषिजन्य वस्तूनां प्रसंस्कृत खाद्यपदार्थानां चादिषु क्षेत्रेषु नूतनान् अवसरान् उद्घाटयिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल अद्य उक्तवती यत् औषधि सुरक्षा निरीक्षणस्य क्षेत्रे भारतस्य वर्षेभ्यः यात्रा स्वावलंबनस्य महत्वपूर्णं उदाहरणम् अस्ति। सा नवदिल्ल्यां राष्ट्रीय औषधि सूच्याः 7वें संस्करणस्य प्रकाशन समये एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवती। मन्त्रिणा उक्तं यत् सम्प्रति देशे 11,000+

0: पंचो राम राम।
1: राम राम भैया। और बतावा का हाल चाल
0: हाँ
1: बाकुल।
0: भैया, हाल चाल ठीक ठाक बाटे भैया? भैया मन्नू बतावा, तू कैसे बाटे?
1: अरे भैया देखा हो कुल ठीक ठाक बा और
0: हाँ
1: खेती
0: भैया ठीक
1: किसानी
0: है
1: भी बढ़िया
0: भैया,
1: चलत बा।
0: बिल्कुल।
1: भैया देखा हो तरह तरह का सरकार का योजना आवत है जौने से कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में किसान भाई लोगों का विकास हो सके, साथे साथे
0: बिल्कुल
1: खेती किसानी का काम बढ़िया ढंग से चल सके।
0: हाँ भैया,
1: और देखा यही तरह का एक थे योजना बा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना।
0: हाँ भैया कह गया भैया।
1: हम कही कि भैया देखा हो जैसे हमार तुहार सेहत होते हैं और अपने शरीर में देखा हो तो मतलब खून बा, खून में तरह तरह का जो ना तत्व होते हैं ना, और सब कुछ जब संतुलित रहते हैं ना,
0: हाँ
1: तब कहा जाता है कि भैया देखा तबीयत सेहतमंद बा।
0: हाँ स्वस्थ शरीर बैठे हैं।
1: वैसे भैया देखा जो ना अपन माटी बान हो तो माटी में भी अपने मृदा में भी तमाम सूक्ष्म पोषक तत्व होते
0: हाँ
1: हैं
0: भैया,
1: और ये सूक्ष्म पोषक तत्वों का कौने ढंग से भैया संतुलन बा हो, मन संतुलन बा कि ना बा, कौन चीज कम बा कौन चीज ज्यादा बा, ठीक है ना, ये सारे चीज के एक तरीके से रिकॉर्ड होता भैया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तरीके। एक प्रकार से देखा जाए ना तो अपने माटी का सेहत का पूरा विवरण रहते हो
0: बिल्कुल
1: भैया।
0: भैया। हाँ
1: और हम कहें कि भैया देखा हो सबसे जरूरी का होता ना कि समय समय पर माटी का जांच करवावे
0: बिल्कुल
1: लोग,
0: भैया।
1: और जब माटी का जांच लोग करवाई है तो वही से पता चलत है कि अपन माटी का सेहत कैसन बाटे, साथे साथे भैया कौने तत्व का अधिकता बा कौने तत्व का कमी है।
0: हाँ भैया,
1: तो हम कहें कि देखा हो कि सबसे जरूरी तो ई बा कि भाई माटी का जांच करावें और ये योजना का लोग लाभ उठावें।
0: भैया ये योजना सबसे पहले जो है शुरुआत की गई भारत सरकार द्वारा 19 फरवरी 2015 के, तब से भैया जो है एक शुरुआत किया गया, एक जो है लक्ष्य बटे स्वस्थ धरा खेत हरा।
1: बिल्कुल भैया, हम कहें कि देखा धरा स्वस्थ रही तब खेत हरा भरा रही
0: बिल्कुल।
1: और तब खेती किसानी आपन लाभप्रद हुई फायदेमंद हुई जौना की। और देखा अपन ये जो कार्ड होता ना,
0: हाँ
1: अगर
0: भैया
1: ये कार्ड बन जाता तो एक प्रकार से पूरा का पूरा कहीं भी एक जाके बच्चे से दिखा लेबा भैया कोनो विशेषज्ञ के, अगर तो विशेषज्ञ तुरंते बता दिए भैया कि देखा तुहार माटी कौन चीज के लायक बा, एमन खेती कौन चीज का करें हैं,
0: बिल्कुल
1: कौन
0: भैया,
1: चीज लाभप्रद हुई कौन फायदेमंद हुई, कौने ढंग से होमन फसल चक्र के अपनावा जाए, कौने ढंग से होमन उर्वरक का प्रवर्धन किया जाए, तो ये सारा का सारा भैया देखा काम एकदम सहूलियत के साथ हो ही जाते हैं।
0: भैया इस योजना के तहत जो है किसानों को उनके खेत की मिट्टी की स्थिति का विवरण देने के लिए हर साल 3 साल पे एक डिजिटल और मुद्रित कार्ड दिया जाता है भैया।
1: बिल्कुल भैया, वह देखा विवरण होता होकर तो हम कहें कि देखा भैया जो है कि एकर ये योजना का लाभ उठावे के चाहिए
0: बिल्कुल भैया,
1: और बिल्कुल अपने माटी का समय समय पर जांच करवा में जांच करवा के अपन कार्ड एकदम बनवाए के दुरुस्त रखें
0: हाँ
1: ताकि अपने भी जानकारी रहे, साथे साथे क्यों विशेषज्ञ भैया हरे से अगर जानकारी लेवे जाते हैं तो उन्हों के जो है कि देखते पता चल जाए कि हाँ एकर का समाधान हो ही सकत
0: हाँ
1: है, कौन खेती लाभप्रद
0: आई
1: हुई।
0: सरकार द्वारा जो है मुफ्त में किया जाता भैया।
1: हाँ तो भैया देखा हो बत कही तो होत रही मुला, बताओ आज का काल आए बाटा पंचायती में।
0: भैया देखा आज जो है सोमवार के दिन बाटे भैया, लोक भाषा कविता पाठ के दिन होता भैया, तो भैया अशोक कुमार सिंह बेशरम के कविता पाठ सुना जाए, और साथ ही साथ भैया देखा एक तो बातचीत भी बाटे भूमि अधिग्रहण कानून और किसान जगदीश प्रसाद पटेल से चंद्रजीत यादव की बातचीत यो सुनिए। मुला भैया जो पंचायती के परंपरा बाटे हैं कुछ गीत गौनाई के हो जाए
1: बिल्कुल
0: भैया,
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो के कर सुनवा होते
0: तो
1: हैं
0: भैया देखा कमला प्रसाद पाल और साथी के एक तो विकास गीत बाटे, हम कहीं तू सुना किसान भैया सुने।
1: सुनवाए दे भैया।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: देखा हो ये गवने हो गए और देखा खेती किसानी में भाई देखा हो चाहे गीत गवनवी की बात होके चाहे नीति का बात होके
2: हाँ भैया
1: सब हर चीज का अपन एक महत्व होता है। कहें कि कहीं ना कहीं अपन दिमाग के भी अपने मन के भी संतुष्टि देवे बदे शांति बदे बड़ा जरूरी होते भैया कुछ साहित्य से लगाओ और कुछ यही लिए भैया देखा अपने पंचायती में समय समय पर कविता पाठ का भी आयोजन किया जाते है।
2: हाँ भैया
1: तो देखा आज अशोक कुमार सिंह बेसरम का जो है एक लोक भाषा कविता पाठ है।
2: अच्छा
1: तो हम कहीं कि यह का पंचन के सुनवाई दिया जाए।
2: सुनवाई दे भैया।
3: पंचो राम राम आप सब लोगन के जो उनकी पंचायत घर कार्यक्रम सुनत हैं और इंतजार करते हैं जोहत हैं कि कैसे लोक भाषा काव्य पाठ आवे आपके बीच में हम उपस्थित है। भैया तब और अब के परिवेश में थोड़ा सा अंतर आई गुआ बा। तब हमार जोन गांव गिराव रहा कांस कुसा से भरल डगरिया चलो बचा के पांव रे माटी उपरा छानी छप्पर उहे हमरो गांव रे। आज गांव के परिवेश बदला बा। एक कविता शुरू में हम प्रस्तुत करत है तब हमरे घरे अंगने में कौन बर्तन रहत रहे जौन की हम पचे ओकर प्रयोग करत रहे और आज के बदलते दौर में उ सब बर्तन बहुत कम हो गए। आप सुने कि अब लोहा तामा कांसा के कुल बासन हो गए जिला बदर का कही गांव का हाल खबर का कही गांव का हाल खबर। अब लोहा तामा कांसा कहे कुल बसनई होई गा जिला बदर का कही गांव कई हाल खबर का कही गांव कई हाल खबर। कि फूले कई बटुआ बटुई और लोटा खोरा के धरे है और काठे कई बाकस कठौत और संदूक चलन से परे है। फूले कई बटुआ बटुई और पहले होत रहा भैया हर घरे में बड़ा बड़ा बटुआ भात नवाई। फूले कई बटुआ बटुई और लोटा खोरा के धरे है काठे कई बाकस कठौत और संदूक चलन से परे है। गगरा गगरी हाड़ी नौहड़ का दोहनी कहाँ कमोरी बा चूल्हा गोरसी के कौन काम न कोठिला बा न छोड़ी बा। ये पुराना बर्तन है अब करियान कसेहड़ी बिन माजे थारव परात कै ताम कहाँ तसला तावा करछुल चिहुटा अब फुकनी कै उ काम कहाँ चकरी जाता ओ खरी मूसर सिलिया लोढ़ा अब के जानी। आज के तीन दशक चार दशक पहले भैया ये गांव में हर घरे घरे होत रहा घरेलू प्रयोग का सामान कि चकरी जाता ओ खरी मूसर सिलिया लोढ़ा अब का जानी सुकुआर बहुरिये पढ़ी लिखी बस सोवत है चदरा तानी सब बना बना हुआ मिला था भैया। अच्छा और देख कि सब धरा पसेरी घिस पिट गए पहले धरा रहे पसेरी रहे पौआ रहे सब पथरा के कि सब धरा पसेरी घिस पिट गए ओजन बा केवल पौआ भर और स्टील प्लास्टिक टीन कनस्टर तौले तारे पौआ भर सब आजकल ही में सिमट गवा। ई नवा जमाना बोतल का है सब बोतलें पाछे जियत हैं। अब जो नवा घर है आप देखा किचन में भैया जो रसोइया घर बा कुल बोतल ही डब्बा दिखात हैं कि नवा जमाना बोतले कहे सब बोतलें पाछे जियते हैं बोतल भर के मैदान जाए बोतल से पानी पियते हैं। ई नई बिटिहनी लड़िकन के बोतल से दूध पियाई रही नरसव मरीज के धाई धाई बोतलई बोतल लटकाई रही बोतल वाला जमाना कि अब सबई रसोइया घर माही बस डिब्बा बोतल भरे हैं। बदलते जमाना के भैया रंग देखें कि अब बड़े बाजारे दरे दुकाने का ढाबा का होटल मा अब बड़े बाजारे दरे दुकाने का ढाबा का होटल मा अधिये सामान बा डिब्बा में अधिये बा सीसी बोतल मा अधिये सामान बा डिब्बा में अधिये बा सीसी बोतल मा केऊ अमृत ताके बैठ रहा केऊ पिए परोसे परा जहर का कही गांव के हाल खबर का कही गांव के हाल खबर। भैया ऊ गांव जौने के लिए रसखान कहन कि मानुष हों तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन आपन पूरा देश 70% से ज्यादा

लोग खेती बारी हमार जौन परिवेश बा गांव में बसत है। गांव में भैया एक चीज और बदली बा, पहले पुराना खेल रहा, एको पैसा न लगे और बड़ी मजा आया हुई, और अब थोड़ा सा बदलाव आई बा। एक कविता वहां से सुना है पंचो, कि तब बदी सुटुर्रा होत रहे अब गली गली मा क्रिकेटर, तब बदी सुटुर्रा होत रहे अब गली गली मा क्रिकेटर, का कही गांव के हाल खबर, का कही गांव के हाल खबर, कि चिभी नोचा चिर्री पाती कन घिच्ची जैसे खेल कहाँ, उई कुड़ी कबड्डी रसा कसी उई गुट्टी कहाँ गुलेल कहाँ। ये पुराने खेल है भैया, कि चिभी नोचा चिर्री पाती कन घिच्ची जैसे खेल कहाँ, उई कुड़ी कबड्डी रसा कसी उई गुट्टी कहाँ गुलेल कहाँ, हर हेंगा हरिस हराई उई मुगरी खूंटा हरवाह कहाँ, अब तब जैसी कहाँ जोताई बा अब एक खेते दस बाह कहाँ। अब भैया दुई बाह जोताई दे खेते में अब गेहूं छीट दे, अब हर वर्दा जब रहा एक एक खेते में दस दस बाह हो ही जाए, कि तब कैसी जहाँ जोताई बा एक खेते में दस बाह कहाँ, उई जोड़ी नाल उठावई के मुगदर भाजई के ताव कहाँ, उई नाग पंचमी कई कुश्ती उ दंगल वाला गाँव कहाँ। हर बारी में कुड़ी कबड्डी अखाड़ा आज के 30-40 साल पहले, अब धीरे धीरे माहौल बदला बा, कि उई नाग पंचमी कई कुश्ती उई दंगल वाला गांव कहाँ, के कितना ज्यादा पौड़त है अपन पौरुख अजमाई रहे, सावन भादव ताले पोखरे बुड्डी मारे उतिराई रहे, अंटी बुझौलिया लुकवरिया उई लंगड़ी वाली फौज कहाँ। ये भैया अपन पुरान खेल है पंचो, कि अंटी बुझौलिया लुकवरिया उई लंगड़ी वाला फौज कहाँ, अब लगई हजारन कै खर्चा उई खेल कूद कै मौज कहाँ। खर्चा तो ज्यादा बा लेकिन खेल कूद में जौन पुराना मौज रहा उ धीरे धीरे जात बा, कि अंटी बुझौलिया लुकवरिया उई लंगड़ी वाली फौज कहाँ, अब लगई हजारन कै खर्चा उई खेल कूद में मौज कहाँ, अब अंगने घरे दुआरे मा बस बाल बैठ कै खेला है, अब सब अपने ही उस्ताद हैं का गुरु कहाँ के चेला है, अब सब अपने ही उस्ताद हैं का गुरु कहाँ के चेला है, सट्टेबाजी का चक्कर मा कितने चुपाई के बैठे हैं, कुछ रौधनिया के जीत गए और कुछ अगलई बगलई ऐठे हैं, केहू के गोएड़ परती है और केहू के नार खोर धनगर, का कही गांव के हाल खबर, का कही गांव के हाल खबर। भैया ये सही बात आ, कि हम नए दौर में चली आज जौन जरूरी चीज बाओ के अपनाई, लेकिन हमारे पुरखन के जौन विरासत रही माटी परिपाटी संस्कृति संस्कार उ आस्था विचार सम्मान स्वाभिमान उ गांव वाली दलान आपस के प्रेम व्यवहार उ कायम रहे के चाहिए पंचो। और गांव में तो बहुत चीज बदली बा, बदलाव के दौर में देखें कि काऊ काऊ कागा करे अरे बैठ

बजैसे भैया नाही त बजैसी भौजी, औ चट्ट से बियाह होई ग पटयल गौजी। तमाम जगह जो संयुक्त परिवार रहा भैया, कुछ ही समय में टूटता, इहू के बचावे के जरूरत बा। कि तब जैसे भैया नाही, अरे तब जैसी भौजी, और चट्टई से बियाह होई ग अब।

पूरी न लाटा और छोड़ी न कमोरी अब मोहाल होई गमाठा। अरे पावई पाऊ दूधवा पावई पाऊ दूधवा अरे उठाई लई गई डेरी गाँव नहीं हेराई गवा कहाँ कहाँ हेरी गाँव नहीं। गाँव के वो जोन समरसता बा पंचों के बचाव बहुत जरूरी बा। अंत में चाट डांडी हम सोची थे कि ये हिंदी का समय चलता भैया हिंदी हमार राष्ट्रभाषा या हमार राजभाषा या अपने गांव में अपने सिवान में अपने खेत में अपने खलिहान में हिंदी का रंग बा वहां से हम जिये के पंचों एक प्रयास किया। अभी चाट डांडी के बढ़िया एक छंद अंत में आप सुने और हिंदी जौन हमार गांव के बोली बा वह भाषा के संजो बड़ा जरूरी बा कि सावन कह कजरी झूलना। हिंदी के हम अपने गांव में देखा भैया कैसे कि सावन कह कजरी झूलना और फागुन फाग की तान है हिंदी। सावन कह कजरी झूलना और फागुन फाग के तान है हिंदी। तो जायद कह खरबुज्जा सी मीठी है जायद कह खरबुज्जा सी मीठी है और खास खरीफ के धान है हिंदी। जायद कह खरबुज्जा सी मीठी है और खास खरीफ के धान है हिंदी। सुनिएगा कि मीरा के बानी कबीर के साखी है मीरा के बानी कबीर के साखी है और

0: गाढ़ पर है जो तो शान कई ऊंची मचान है हिंदी। भैया हिंदी के संजोआ अपने खेते बारी के संजोआ, उत्तम खेती मध्यम बान, हम फिर आपके बीच में कभू आवत रहब, बत कही के बीच में आपन कविता ही सुनावत रहब। आप सब लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ भैया, देखा हो अशोक कुमार सिंह बेशरम का ये लोकभाषा कविता पाठ, कितना बढ़िया,
2: हाँ भैया,
1: कितना जीवंत और कितना सामयिक रहा।
2: हाँ भैया,
1: और देखा मनोरंजन के साथ साथ संदेशा कितना ज़्यादा रहा है मन
2: बड़ा
1: में।
2: फरिया फरिया बताए।
1: और सबसे बड़ी बात ने एक चीज़ जो उभर के आया जो ने कविता से, कि अपने गांव का देखा हो, अपन एक परंपरा रही, अपन एक परिपाटी रही,
2: हाँ भैया,
1: और वही परिपाटी परंपरा चाल चलन खाती गांव गांव जानल जाए भैया।
2: बिल्कुल।
1: गांव का अगर आपन आनंद रहे भैया, शहर का आपन और गांव का आपन, तो कहीं ना कहीं जौन गांव का आपन विशेषता आपन खासियत रही न भैया,
2: हाँ भैया,
1: धीरे धीरे धीरे देखा आधुनिकता का असर ओहू के ऊपर हो जाते
2: बिल्कुल
1: हैं।
2: बिल्कुल।
1: अब भैया जैसे मोबाइल है और टीवी, तो कहीं ना कहीं जौन पहले के भाई देखा हो, अब कहीं की चौपाल लगे, पहले लोग जो ना कि बैठ के पंचायत होकल करे हैं
2: हाँ भैया,
1: एक दूसरे के साथ, हम कहीं कि अपन सुख दुख लोग बतियावें, वो धीरे धीरे धीरे धीरे गांव में भी एक तरीके से सिमटत जाते
2: हाँ
1: हैं।
2: पहले के समय रहा भैया, चार आदमी इकट्ठा हो जाते रहे,
1: हाँ,
2: पंचायती शुरू हो जाते भैया, अच्छा लगा
1: और
2: रहा।
1: हाँ बिल्कुल भैया, ऐसे भी देखा भैया खान पान में भी बड़ा परिवर्तन आ गया है।
2: बिल्कुल।
1: और देखा जौन पारंपरिक चीज गाँव में रहीन, कहीं ना कहीं धीरे धीरे धीरे धीरे एकदम लुप्त हो जाते हैं, तो देखा ओहू के बचावल बहुत जरूरी है। हम कहीं कि देखा समय के साथ समय के अनुसार आगे बढ़े के चाही, आधुनिकता के भी अपनावे के चाही,
2: बिल्कुल,
1: लेकिन कुछ जो पारंपरिक चीज है ना भैया,
2: वो करना छोड़ दिए।
1: जौन भैया गांव को मूलभूत पहचान भैया है, जैसे बसवार भैया, पेड़ पालो भैया है, चिड़िया
2: हाँ,
1: गौरैया, सबका ध्यान रखे के चाही, और कुछ न कुछ गांव का जो निशानी है ना वो रहे देवे के चाहिए, कहीं कि यही खाती गांव जाना जाए।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे देखा समय के साथ कई परंपरा ऐसा है जो धीरे धीरे धीरे धीरे गायब हो जाते भैया, बतावे के पड़त है, समझावे के पड़त है,
2: बिल्कुल
1: देखा धीरे धीरे अब जो न कि वो जाता है, चाकी है, ओखली है भैया, अब यही ना देखे कि मिलत है। हम कहें कि ठीक है मशीनी में कुल काम हो जाते हैं,
2: हाँ
1: मुला देखा गांव में जब जगह बा ना,
2: बिल्कुल
1: तो ये सब चीज रहे के चाहिए है,
2: हाँ
1: ताकि आज के पीढ़ी भी देखे
2: बिल्कुल।
1: जाने कि कौने ढंग से हमारे पूर्वज अपन जीवन जियत रहें, कौने ढंग से वो लोग मेहनत करें, कौने ढंग से श्रम करें, और
2: बिल्कुल भैया।
1: श्रम कई के देखा हो, हम कहीं कि मेहनत कई के खेत से अनाज लिया में, और अनाज के

0: ना ही कि फिर कैसे गेहूं पीसा जाए,
1: हाँ
0: हाँ
1: भैया
0: कैसे भैया दाल दरा जाए, और
1: बिल्कुल
0: कैसे भैया देखा हो ओखली में चूरा कुटाए, हैं और कैसे धान कुटाए, तो इहो कुल जाने के
1: हाँ
0: चाहिए नई
1: भैया
0: पीढ़ी के। तो ई कुल जौन एक प्रकार से गांव का पहचान है ना,
1: हाँ भैया चकरी
0: एक
1: कुरी खुदे रखे आ रहे हैं
0: हाँ
1: भैया,
0: हाँ हाँ
1: खुदे पीसत रहे
0: हाँ हाँ
1: आटा, खुदे
0: बिल्कुल
1: अपन दाल धरे
0: हाँ, ई
1: हैं।
0: सब भी बचाव करे के चाहिए, संरक्षण करे के जरूरत बा, और बिल्कुल आधुनिक बने, तकनीकी खेती करें,
1: हाँ भैया
0: प्रगतिशील बने, लेकिन वही के साथ साथ अपन जो अच्छी परंपरा रही भैया, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बढ़े, वो परंपरा के भी छोड़े के नहीं चाहिए।
1: अब तो भैया 4 आदमी जाए इकट्ठा रहा दिन, तो आपस में ना बताइए, लेके मोबाइल अपने मस्त रहा दिन
0: बस
1: भैया।
0: वही कहते ना भैया कि कहीं ना कहीं ये बात आ गए हो, है कि
1: हाँ
0: सब केहू को पते नहीं चलत है, संध्या का सन्नाटा मार जाता है, दोपहरिया का सन्नाटा मार जाता है, पहले
1: बिल्कुल
0: पेड़ पालों के नीचे सब लोग देखा बैठा जो नहीं मिले एक दूसरे के सुख दुख में, अच्छा देखा यही में अपन कितना कुल तनाव और टेंशन जो निकल जाए कुल
1: खत्म हो
0: दूर
1: जा
0: हो
1: रहा
0: जाए,
1: है।
0: वो
1: हाँ भैया
0: चार लोग बैठे एक दूसरे का बांट लें, तो बहुत जरूरी बा।
1: हंसी मजाक होत रहा,
0: हाँ हाँ
1: सब
0: हाँ
1: सब
0: ये
1: दुख दर्द
0: सब भी
1: आदमी भूल
0: जरूरी बा,
1: जात रहा।
0: बाकी खेती किसानी तो होत रही भैया,
1: हाँ
0: अगर
1: भैया
0: उमन मेहनत करबा भैया, सही तरीका अपने बा, सही ढंग से भैया, बिल्कुल देखा रेडियो के माध्यम से भी जानकारी दिया जाता,
1: हाँ
0: तो
1: भैया
0: अगर वो तरीके से करिए तो वो तो होत रही। मुला हम जाना चाहब कि और का सुनवाओ थो अपन चन के।
1: भैया देखा एक तो बातचीत बाटे, भूमि अधिग्रहण कानून और किसान, जगदीश प्रसाद पटेल से चंद्रजीत यादव की बातचीत बाटे। हमके तू सुना भैया, किसान भैया सुने।
0: सुनवाए दो भैया।
2: किसान भाई, आप सब खेती बाड़ी के काम में लगा बाटे, और निश्चित तौर पर भाई आपके पास जवन जमीन होत है वो जमीन कानूनी तौर पर भाई आपके हित में रहे, आपके पक्ष में रहे, आपके जमीन रहे, एकरे लिए भाई तरह तरह के बात बाटनी, तरह तरह के ओकर नियम कानून बाटें, ओकर जानकारी भाई हो आप सबके बहुत जरूरी होते। तो भाई जौन भूमि अधिग्रहण कानून बाटे ये किसान के कौन तरह से हितकारी कौन किसान के लिए बाटे भाई, देखा यही विषय पे जानकारी देख ले आज हमारे साथे बाटे हैं श्री जगदीश प्रसाद पटेल भैया, जो उनकी यही सब कानून के जानकार हैं। भैया आपके कार्यक्रम में स्वागत बाटे, और
0: धन्यवाद सर।
2: हम जाने चाहब कि भैया ये भूमि अधिग्रहण कानून का है, ऐसी हमारे किसान भाई कैसे लाभ ले सकते हैं, एकरे विषय में जानकारी दें।
1: भूमि अधिग्रहण सरकार की एक ऐसी गतिविधि है जो कि हम आपको परिभाषित करके बता दे रहे हैं, जिसके द्वारा यह भूमि के स्वामियों से भूमि का अधिग्रहण करती है या अधिग्रहित कर की जाती है, ताकि किसी सार्वजनिक प्रयोजन या किसी कंपनी के लिए इसका उपयोग किया जा सके।
2: जी
1: यह अधिग्रहण स्वामियों को मुआवजे के भुगतान या भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के भुगतान के अधीन होता है।
2: जी
1: आमतौर पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अनिवार्य प्रकार का नहीं होता। संपत्ति की मांग और अधिग्रहण समवर्ती सूची में आता है, जिसका अर्थ है केंद्र और राज्य सरकारें इस मामले में कानून बना सकती हैं। ऐसे अनेक स्थानीय और विशिष्ट कानून हैं जो अपने अधीन भूमि के अधिग्रहण प्रदान करते हैं, किंतु भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मुख्य कानून भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में लाया गया।
2: जी जी ये भैया ये बताएं कि जैसे कौनों ये भूमि अधिग्रहण कानून के संबंध में कुछ विधेयक भी बना बका, एक विषय में का कुछ हमारे किसान बहन के जानकारी आप दें कुछ।
1: इसके लिए 29 अगस्त 2013 में एक विशेष रूप से एक विधेयक लाया गया। भारत सरकार ने भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के लिए विधेयक का जो मसौदा तैयार किया गया है उसके प्रावधानों के मुताबिक मुआवजे की राशि शहरी क्षेत्र में निर्धारित बाजार मूल्य के 2 गुने से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में ये राशि बाजार मूल्य के 6 गुना से कम नहीं होनी चाहिए।
2: जी
1: जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जमीन के अधिग्रहण और पुनर्वास के मामलों को एक ही कानून के तहत लाए जाने की योजना है। ग्रामीण विकास मंत्री दोनों को, मतलब भूमि देने वाले को और अधिग्रहित करने वाले को, दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलुओं के रूप में देखे जाने की जरूरत पर जोर दिया है।
2: जी
1: भूमि
2: जी
1: अधिग्रहण तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना विधेयक 2011 के मसौदे में इस बात का प्रावधान है कि अगर सरकार निजी कंपनियों के लिए या प्राइवेट पब्लिक भागीदारी के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण करती है तो उसे 80% प्रभावित परिवारों की सहमति लेनी आवश्यक होगी।
2: काहे मतलब भैया कि कोनो भी तरह से अगर किसान भाइयों के भूमि के अधिग्रहण किया जात बे, वो चाहे सरकारी तौर पे भैया या फिर जो प्राइवेट की बात करत बाटे उनके द्वारा।

0: तो भाई उनमें 80% लोगन के सहमति
1: जी
0: जरूरी
1: जी जी
0: है।
1: उनके सहमत
0: अगर
1: हैं।
0: सहमत हैं तब भाई वो
1: जी
0: भूमि के
1: जी जी
0: अधिग्रहण किया है
1: बिल्कुल
0: ऐसी बात
1: बिल्कुल,
0: नहीं।
1: वही विधेयक में हमारे यही बात आई है।
0: जी एक चीज़ ये भैया हम आपसे जानना चाहब, जैसे कोनो खेतिहर जमीन बा, अगर उस जमीन से हुई के कोनो भाई राष्ट्रीय मार्ग के जाए के प्रस्ताव बाटे, तो ऐसा स्थिति में किसान भाइन के कौन तरह से मुआवजा दिया जाए उनमें?
1: जी, इसके लिए मसौदे की भूमिका में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने विधेयक लाए हैं। इसके लक्ष्य के बारे में लिखा है।

0: किया जाए उसमें।
1: जी, इसके लिए मसौदे की भूमिका में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने विधेयक लाए हैं। इसके लक्ष्य के बारे में लिखा है, प्रत्येक मामले में भूमि का अधिग्रहण इस तरह किया जाए कि इससे भू माफियाओं या भू स्वामियों के हितों की पूरी तरह से सुरक्षा हो।
0: जी,
1: भू माफिया नहीं बल्कि कहिए भू स्वामी।
0: अच्छा, भू स्वामी।
1: जी जी
0: जी।
1: और साथ ही उस जमीन से जीविका चलाने वाले के हित सुरक्षित हों।
0: जी,
1: इस विधेयक का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और प्रत्येक मामले में दोनों पक्षों के लिए तटस्थ बनाना है। हाल के वर्षों में हुए भूमि अधिग्रहण में अर्जेंसी प्रावधान की भी काफ़ी आलोचना हुई है। इसके तहत सरकारें यह कहकर किसानों की ज़मीनें बिना सुनवाई के तुरंत ले लेती हैं कि परियोजना तत्काल शुरू करना है।
0: जी जी, तो ऐसी स्थिति में भाई वो किसान के हित में ना हो पाते तो ऐसी किसान भाई के नुकसान हो जाते।
1: जी जी,
0: एक चीज़ है भैया, जवन की भू माफिया लोग भाई किसान भाई से बहकाए फुसलाए के जवन जमीन का अधिग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर किसान भाई से कोनो एक तरह की गलती हो गई, मान लें वो भूमि के एक तरह से उनका दे दें, तो बाद में का ओकरे संबंध में कुछ कोर्ट वगैरह में कानून के तहत जा सकते हैं कि उनका जो है उचित लाभ मिल सके।
1: जी, उनके लिए सुरक्षा प्रदान करती है कानून। भूमि अधिग्रहण बिल 2015 एक लंबे संघर्ष का परिणाम है जो लंबे समय के बाद लोग किसानों को मिला है।
0: जी,
1: प्रारंभ में इसे किसान विरोधी या किसानों को विस्थापित करने वाले दमनकारी कानून के रूप में जाना जाता था।
0: जी,
1: लगभग 125 वर्षों के संघर्ष के पश्चात किसानों के सम्मान एवं सुरक्षा के मानक के रूप में यह अधिनियम अपने वर्तमान रूप में आया।
0: जी जी,
1: यद्यपि कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा इसे किसान विरोधी कहा जाता है जो असत्य है, पूर्णतया गलत है।
0: जी जी,
1: इसके वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य को जानने के लिए इसके 125 वर्ष के इतिहास को जानना आवश्यक है। वर्ष 1894 में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने एक विधान या विधेयक बनाया जिससे देश के प्राकृतिक संसाधनों पर एवं भूमि पर सरकार का स्वामित्व घोषित कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक हित के नाम पर सरकार द्वारा कोई भी जमीन कभी भी अधिकृत की जा सकती है। देश के आज़ाद होने के पश्चात भी यह व्यवस्था यथावत चलती रही।
0: जी,
1: प्रारंभ में अधिग्रहित भूमि के बदले मुआवजे की कोई निश्चित राशि तय नहीं थी।
0: जी,
1: बाद में अधिग्रहित भूमि के बदले किसानों को मुआवजा का प्रावधान कर तो दिया गया लेकिन मुआवजे की राशि निर्धारित नहीं की गई। इसका कोई सिद्धांत तय ही नहीं था। इसी कारण भाखड़ा नांगल बांध का जब शिलान्यास होने लगा या बनने लगा, डम टिहरी बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं में मुआवजों के मानक न तय होने के कारण मामले न्यायालय में गए तो विभिन्न न्यायालयों द्वारा अलग अलग फैसले दिए गए। भूमि अधिग्रहण के लिए जैसे कानून में अधिकृत भूमि के लिए किसानों से सहमति लेने की कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी।
0: जी जी,
1: क्योंकि यह अधिग्रहण लोकहित या जन कल्याण के नाम पर होता था, परंतु समस्या यह थी कि लोकहित की कई परिभाषाएं उसमें दी गई या कहिए कि कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। इसी कारण जहां अस्पताल, नहर, सड़क, स्कूल, बांध आदि को लोकहित का काम माना जाता था परंतु औद्योगिक विकास के गलियारों के विकास को लोकहित नहीं माना जाता था। 1991 में आर्थिक सुधार व वैश्विक युग के पश्चात इसमें परिवर्तन हुआ। उदाहरण स्वरूप राजस्थान के सूरतगढ़ में 10,000 एकड़ भूमि में सेना के लिए छावनी क्षेत्र घोषित किया गया और सामाजिक दृष्टि से इसे लोकहित माना गया। उसी प्रकार दिल्ली हवाई अड्डे का निर्माण हेतु 6300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ जो वैश्वीकरण के पश्चात देश को विकास को ध्यान में रखते हुए लोकहित माना जाना चाहिए।
0: का मतलब भैया कि जौन पहले भूमि अधिग्रहण के व्यवस्था रही और अभी जब भूमि अधिग्रहण कानून बना दिया गया उनमें ढेर फर्क हुआ। ये कानून से किसान भाई के हित होए और अगर उनका कोनो भी तरह के भाई अधिग्रहण कानून के द्वारा कोनो जौन कानून व्यवस्था बे ओकरे खिलाफ के भी अगर काम करत बे तो कोर्ट में जा के अपन अधिकार मांग सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उनको पूरी स्वतंत्रता है, पूरा अधिकार है, कानून उनके लिए तत्पर है।
0: काहे मतलब कि भाई भूमि अधिग्रहण कानून जौन बा पूरी तरह से किसान के हित में बाटे।
1: किसान

0: के लिए कहिए या भू स्वामी कहिए,
1: जी
0: जमीन जिसकी भी हो,
1: हाँ हाँ
0: जिसकी भी जमीन जा रहे हो, किसान हो या कोई और भी पर्सन हो,
1: जी।
0: जी जो भी प्रभावित हो कोर्ट में जा सकता है।
1: अच्छा, जैसे भाई जो ना शहर के आसपास भाई जमीन बाटी जो के आवासीय अधिग्रहण किया जाता है, उनमें भी भैया ये कानून लागू होते ना?
0: जी जी बिल्कुल, ये प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी है, शहरी क्षेत्रों के लिए भी है, हर जगह प्रभावकारी है।
1: तो काहे मतलब कि भाई भूमि अधिग्रहण कानून पूरी तरह से जो उन भू स्वामी बाटे जेकर जमीन बाटे
0: जी
1: भाई ओकरे हित में बाटे, और अगर उनके जमीन के भाई कोनो तरह से सरकारी गैर सरकारी उपयोग में लियावा जात बे तो ओकरे लिए उनका बाकायदे मुआवजा दे के व्यवस्था बे।
0: जी जी उसके लिए कानून बनाया गया है। शहरी क्षेत्र है तो जो निर्धारित मूल्य है बाजार मूल्य के 2 गुने,
1: जी
0: ग्रामीण क्षेत्र है तो उसकी तुलना बाजार मूल्य के 4 गुने।
1: जी जी
0: जी
1: तो काहे मतलब भाई देखा ये कानून तो बहुत ही अच्छा बा,
0: जी
1: किसान भाई मतलब समझे कि ये कानून उनके लिए एक तरह से वरदान बा।
0: जी जी जी
1: हाँ, तो
0: बिल्कुल
1: भैया आप आएन और ये भूमि अधिग्रहण कानून के विषय में बताएं, ये सब जानकारी देख लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, थैंक यू।
2: हाँ भैया देखा, बातचीत रही भैया भूमि अधिग्रहण कानून और किसान, डॉक्टर जगदीश प्रसाद से पटेल से चंद्रजीत यादव की बातचीत रही भैया, बड़ी नीक
1: बातचीत
2: बात रही।
1: रही, और हम कहीं के देखा ई कुल जौन कानूनी पक्ष भी होत है ना, ओकरे बारे में भी जागरूक रहल, जानकारी रहल बहुत जरूरी होता है
2: बिल्कुल।
1: खेती किसानी में, ताकि भाई हम कहीं कि सब कुछ जानत रहिए ना, तो अपन जमीन बा ऐसे ही अपन जौन जमीन बा भैया, चाहे मान ला खसरा खतौनी वाला जौन बात होते है, तो खसरा खतौनी कौने ढंग से रखें, सुरक्षित रखें, ओकरी बारे में जागरूक रहें, जानकारी रखें, जौने से कि अपन जौन भी भाई जमीन बा वो सुरक्षित रहे और बाद में कोनो तरीके को हम दिक्कत और कोनो कानूनी लफड़ा
2: ना
1: ना
2: रहे।
1: आवे भैया।
2: हाँ भैया, आ रहे के चाहिए कि अपन जमीन के कागज पूरा सुरक्षित रखें भैया, ताकि उनकी जमीन के अच्छे से मालिक रहे हैं।
1: बिल्कुल भैया, और देखा हो हम कहीं कि खेती किसानी धीरे धीरे अब देखा तो धान का फसल बढ़िया चल रहा बा,
2: हाँ भैया।
1: और बरसात भी खूब है, बढ़िया बरसात हो गए। मुला
2: हाँ
1: देखा एक बात कहमने कि ई जौन समय होता ना,
2: हाँ
1: ई
2: भैया।
1: समय अपन जौन खरीफ का फसल लगबा भैया खेत में, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमन भैया हर समय अपने फसल का ध्यान दें,
2: बिल्कुल
1: कि कोनो तरह को हमन दिक्कत न होके, कोनो रोग, कोनो दोग, कोनो कीट का अगर तनिको कुछ अंदेशा होए
2: हाँ भैया
1: तो हम कहीं कि ओके तुरंत परामर्श लेके निदान करें, नहीं तो
2: बिल्कुल।
1: पता चलत है भैया कि यही समय में अगर कुछ दिक्कत आए गई, कोनो समस्या आए गए,
2: अच्छा
1: तो ओहसे जो है कि फसल का उत्पादन पूरी तरीके से प्रभावित हो
2: हाँ,
1: जाते हैं।
2: और साथ ही साथ भैया रहने चाहिए कि बीच बीच में जो खरपतवार निकल आवा थी वो का निकालत रहे हैं।
1: बिल्कुल भैया, ओके निकालते रहें और समय समय से एकदम सचेत होके देख रेख करें अपन जो भी फसल लगावा, विशेष करके देखा धान का फसल जो लगा भैया, ओके एकदम देख रेख करें कोनो तरह का दिक्कत हो के, साथे साथे हम कहीं कि देखा अब मौसम में धीरे धीरे बदलाव हुई,
2: हाँ
1: देखा अब धूप भी हुई,
2: बिल्कुल।
1: तो जब धूप हुई तो ऐसा भी हो जाता है कि पानी का नमी का कमी हो जाता
2: हाँ
1: है, तो हम कहीं कि भैया देखा नमी का कमी ना ही हुई देवे के चाहिए, और बराबर होकर देख रेख करें, अगर लगे कि अपन जौन प्रजात बा भैया देर से पके वाली बा, और कोनो तरीके से मान ला कि बारिश ना ही होत बा,
2: अच्छा
1: और
2: अच्छा
1: चाहे भाई अपन जौन है कि जमीन सुखत बा वहाँ का नमी कम होते है, तो ओकर जो ना सिंचाई का बंदोबस्त करें
2: हाँ
1: ताकि नमी बरकरार रहे।
2: बिल्कुल, मतलब देख के हिसाब से अपन सिंचाई कर दें हल्की फुल्की है, ताकि जो है फसल अपन सुरक्षित रहे और नमी बनी रहे भैया।
1: बिल्कुल भैया, तो हम कहें कि देखा खेती किसानी के साथ साथ कुछ ऐसा चीज़ भी होता ना जौने के प्रति बहुत सचेत रहे का जरूरत है, विशेष कह के देखा मान ला कि अपन जैसे खरीफ का फसल चलत बा,
2: हाँ
1: आए वाला समय में फिर देखा रबी का खेती हुई,
2: बिल्कुल भैया।
1: तो जौन एक तरीके से पारंपरिक खेती लोग कई रहा बाटे भैया है कि एकदम एक के पद्धति पर भैया कि चला खरीफ में हमके हई फसल लेबे के बा, रबी में हमके हई फसल लेबे के बा, जायद में हमके भैया हाई फसल लेवे के बाद, तो थोड़ा सा अब हमन भी पंच भैया के किसान भैया के बदलाव लावे की जरूरत है,
2: बिल्कुल भैया।
1: कुछ ऐसा सोच बनावें भैया, प्रगतिशील खेती अपनावें
2: हाँ
1: जौने का देखा कि यह समय बहुत ज्यादा मांग बा,
2: हाँ भैया
1: और जौन अपने सेहत खातिर भी फायदेमंद है,
2: बिल्कुल।
1: विशेष कह के देखा भैया जौन मोटा अनाज का बात होता है
2: हाँ भैया
1: कि पहले के जमाने में जो ना कि मोट अनाज का लोग प्रयोग करें,
2: हाँ भैया
1: और भाई जैसे ज्वार भय, बाजरा
2: जो जी
1: भय, मक्का
2: मक्का भाई
1: भय, तो रागी भय,
2: हाँ भैया, ये सब के अनाज जो है खाए से

0: भी अपन सही रहते हैं, सेहत के लिए भी सही बाटे भैया। हाँ, और पाचन क्रिया मजबूत होती है।
1: हाँ, तो भैया हम कहें कि अब वो तरफ भी लौटे की जरूरत बा,
0: बिल्कुल
1: काहे कि जरूरत ई बा कि अगर होकर खेती करी हैं तो अपने के साथ साथ अगर व्यवसायिक स्तर पर भी किया चाहते हैं तो व्यवसायिक स्तर पर देखा ओकर मांग बहुत ज़्यादा है,
0: हाँ भैया
1: ओकर दाम भी अच्छा मिलते हैं,
0: बिल्कुल हाँ
1: तो थोड़ा सा लौटे की जरूरत है भाई। देखा धीरे धीरे धीरे लोग गेहूं करत करत करत जौ एकदम से छोड़ दी हैं,
0: हाँ भैया
1: आए
0: हाँ
1: तो हम कहीं कि देखा अब की आवे वाला जो रवि का समय जब आई तो उस समय थोड़ा सा जौ का भी अपन खेती करें, जौ का भी उत्पादन करें, जौने से कि भाई अपने साथ साथ ओकर इसमें बहुत ज़्यादा देखा तो भैया आजकल तो बड़ा बड़ा जौन शहरन में भैया शोरूम होते ना,
0: हाँ भैया
1: बड़ी बड़ी जौन दुकान है से भैया, वहाँ पर लोग मोटा अनाज पैकेट बंद रखते हैं, खूब महंगा दाम में बेचते
0: हाँ
1: हैं।
0: कैद भैया देखा लोग मोटा अनाज छोड़ के महीना अनाज खाए लगे रहे, तमाम तरह के रोग बिरामी हो लगे भैया, शुगर है, बीपी है, सब हो लगा। अब भैया फिर से लोग मोटा अनाज की तरफ जा रहे हैं ताकि इनके सेहत स्वस्थ रहे भैया।
1: तो वो सोचे की जरूरत है भैया, वो अपने खेती किसानी में अपनावे की जरूरत है,
0: बिल्कुल
1: और साथे साथे भैया देखा हम कही कि खेती किसानी में 4 पैसा का आमदनी वहीं से तो हुई ना,
0: हाँ भैया
1: तो
0: हाँ
1: आमदनी तबे हुई जब हम भाई देखा कुछ आधुनिकता और कुछ पारंपरिकता, कुछ
0: बिल्कुल
1: पारंपरिक चीजन के अपनावे और कुछ तो भाई देखा हम कहीं खेती किसानी में नवाचार आए बा,
0: हाँ भैया
1: आधुनिक तौर तरीका अपनावे के पड़ी,
0: बिल्कुल
1: वैज्ञानिक तौर तरीका अपनावे के पड़ी, प्रगतिशील तौर तरीका अपनावे के पड़ी,
0: हाँ
1: तो
0: भैया
1: ये सब तो करें लेकिन जो ना अपन कुछ पारंपरिक तौर तरीका रहा ना ओकर भी प्रयोग करते रहे भैया। जैसे देखा हो पहले के जमाने में रासायनिक खाद का प्रयोग बहुत कम होके, लोग जैविक खाद का प्रयोग
0: हाँ
1: करें है।
0: गोबर खाद का प्रयोग करते हैं, कंपोस्ट खाद
1: हाँ
0: है।
1: हाँ
0: इसी का भैया जो अनाज तो अच्छा होता है, ओके मांग भी अच्छी रहती भैया और पैदावार भी बढ़ जाती है।
1: अपन माटी का संरचना भी बरकरार
0: हाँ
1: रहते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो थोड़ा सा जैविक खेती की तरफ भी लौटल जरूरी है भैया। साथे साथे देखा फसल चक्र पहले जोने की जो अपनावा जाए तो फसल चक्र भी अपनावल बहुत जरूरी है,
0: हाँ भैया बदल
1: समय
0: बदल
1: समय
0: खेती
1: पर
0: करें
1: हम
0: भैया
1: कहें कि देखा बदल बदल के जोने की सहफसली खेती भी लोग करें,
0: हाँ
1: तो
0: भैया
1: एक सब चीज़ से कहा है कि देखा सीमित समय में और एक के समय में हम कहें कि भैया कम लागत पर एक प्रकार से कृषि विविधीकरण के जब लोग अपना ही लेते हैं ना
0: हाँ भैया
1: तो वहाँ से उनके 4 पैसा का नगद आमदनी होता है।
0: अभी भैया कम समय में कई फसल मिल जाती है।
1: तो भाई देखा एक कुल तरफ लौटल बहुत जरूरी होते हैं। अब हम बताएं कि देखा भैया बातचीत तो होते बा मूला पंचन के, भाई देखा अपन जो ने नंबर बतावा
0: हाँ भैया
1: जौने पे कि वो अपन लोग प्रतिक्रिया व्यक्त
0: हाँ
1: करें।
0: किसान भैया रहन के हम लोग के प्रोग्राम कैसा लगत बाटे भैया, अरे अपन प्रतिक्रिया हम सबके दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर बाटे भैया 800-4926-2550। भैया अरे नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 800-4926-2550। भैया अरे
1: बिल्कुल भैया हम कहीं कि देखा वैसे का होता है कि एक तरफा हो जाता है, तो पंच भैया के कार्यक्रम कैसा लगा अपन कोनो सुझाव देहल चाहत हो के
0: दे
1: तो
0: सकें
1: ये नंबर पर बिल्कुल दें। हम कहीं कि चले चलाओ के बेरा हो गए तो पंचन से आज्ञा लिया जाए। पंचों
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

ग्रामीणजन अभी अपना पंचायत घर कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनते हैं एक देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रादेशिक समाचार की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा में इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ, कहा सरकार की नीतियों ने निवेशकों के लिए बनाया सकारात्मक वातावरण। और वाराणसी में

0: 25 अक्टूबर को होगा इंडियन एयरफोर्स एरियल डिस्प्ले का आयोजन। भारतीय वायुसेना के जाबाज आसमान में दिखाएंगे अपना कौशल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज मेरठ में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री नबीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ समाज के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज दुनिया एक नए भारत के दर्शन कर रही है।
1: 2014 में जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता को अपने हाथों में लिया था, एक नए भारत का दर्शन, एक भारत जो अपनी विरासत पर भी गर्व करता है और विकास के लिए जिसकी अपने की स्पीड है, एक ऐसा भारत जिस भारत के सामने अब पहचान का संकट नहीं है। अब भारत की अर्थव्यवस्था बॉटम फाइव से टॉप फाइव में आ गई है।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने संबोधन में मेरठ को क्रांति की धरा बताया। उन्होंने कहा कि इस धरती ने कई ऐसे परिवर्तन दिए हैं जिन्होंने देश के साथ पूरी दुनिया को संदेश दिया है। श्री नबीन ने बीते 9.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आए परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि आज राज्य में कानून का राज है और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
2: आज हम कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार में भरोसा का वातावरण है। आज हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून का राज है, और आज हम कह सकते हैं कि विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश चल पड़ा है और विकसित राज्य की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है।
0: श्री नवीन ने युवाओं से संवाद के दौरान युवाओं को देश की मौजूदा ताकत बताया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष कल सहारनपुर में सांसदों, विधायकों, जिला स्तर के पदाधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चंदे में अनियमितता मामले पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की बेंच को बताया कि अदालत द्वारा नियुक्त एसआईटी 25 सितंबर या उससे पहले अपनी पहली चार्जशीट दाखिल करेगी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी से 90 दिन की वैधानिक अवधि जल्द ही खत्म होने वाली है। उस अवधि से पहले चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। इस दौरान शीर्ष अदालत ने एसआईटी की ओर से पेश की गई विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट भी देखी। वहीं एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज आगरा में दो दिवसीय इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव एंड एक्सपो का शुभारंभ किया। इस एक्सपो में देश के विभिन्न राज्यों से आए उद्यमी प्रदेश में वेडिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नई पर्यटन नीति, सरकार के प्रयास, उद्यमियों को दी जा रही सुविधाओं और बेहतर कानून व्यवस्था के निवेशकों के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया है।
3: पर्यटन क्षेत्र में नई पॉलिसी एडॉप्ट करके इन सब लोगों को नई सहूलियत देने का, सब्सिडी देने का, तमाम इंसेंटिव देने का काम किया है, जिससे मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान में चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, कनेक्टिविटी का हो, या नई पॉलिसी तमाम सुविधा संसाधन और सब्सिडी देने का विषय हो, आज देश और दुनिया के तमाम निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष के उपलक्ष्य में चल

0: रहे सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज जन भवन स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवन शैली, नशा मुक्ति और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता व रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना था। प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। वहीं इटावा में जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने अभियान के तहत शुरू हुई वाराणसी से वडनगर यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में यात्रा के इटावा से गुजरने के दौरान रूट, स्वागत स्थलों, यातायात और सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही भगवान राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
2: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगी।
1: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
3: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
1: अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: वाराणसी में नमो घाट पर 25 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स एरियल डिस्प्ले 2026 का आयोजन होगा। इस दौरान वायुसेना के जाबाज आसमान में अपनी सटीकता, कौशल और समन्वय का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन में मध्य वायु कमान की 6 दशकों से अधिक की गौरवशाली विरासत और युद्ध अभियानों, आपदा, राहत और मानवीय सहायता में निभाई गई भूमिका को भी प्रदर्शित किया जाएगा। हवाई प्रदर्शन के समय दर्शक क्षेत्र, यातायात, पार्किंग और सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश आयोजन की तिथि के निकट आधिकारिक माध्यमों से जारी किए जाएंगे। राज्य के कुछ जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश से मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आगामी 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मेरठ में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठन की तैयारियों को परखा। कार्यकर्ताओं से कहा राष्ट्र प्रथम के भाव से करें काम। सर्वोच्च न्यायालय में आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चंदे में अनियमितता मामले में हुई सुनवाई। सरकार ने कहा 25 सितम्बर तक दाखिल कर दी जाएगी चार्जशीट। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा में इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। कहा सरकार की नीतियों ने निवेशकों के लिए बनाया सकारात्मक वातावरण। और वाराणसी में 25 अक्टूबर को होगा इंडियन एयरफोर्स एरियल डिस्प्ले का आयोजन। भारतीय वायुसेना के जाबाज आसमान में दिखाएंगे अपना कौशल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। इसके अलावा

न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रम उपलब्ध हैं। इसके अलावा DD फ्री डिश पर भी आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रमों को सुना जा सकता है।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है।
1: जी
0: अनेकता में एकता इसकी विशेषता है। सड़क पर चलते समय सदैव यातायात के नियमों का पालन करें। दो पहिया वाहन चालक हेलमेट अवश्य धारण करें।

0: वर्ष
1: आकाशवाणी का
0: 2023 को
1: ये
0: हम
1: प्रयागराज
0: अंतर्राष्ट्रीय
1: केंद्र
0: मिलेट
1: है।
0: वर्ष के रूप में मना रहे हैं।
1: हिंदी कार्यक्रम
0: भारत के
1: में हम
0: प्रस्ताव
1: आपको
0: और
1: सुनवाने जा
0: 70
1: रहे
0: से
1: हैं
0: अधिक देशों की सहमति
1: प्रोफेसर
0: से
1: नीलम
0: संयुक्त
1: यादव की
0: राष्ट्र
1: वार्ता।
0: संघ द्वारा इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। वर्तमान समय में इसका महत्व
1: पोषण
0: और
1: की
0: अधिक हो जाता
1: चुनौतियां
0: है जब
1: और
0: G20
1: मेरिट्स।
0: देशों के साथ साथ पूरी दुनिया में 2023 को हम अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मना रहे हैं। भारत के प्रस्ताव और 70 से अधिक देशों की सहमति से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। वर्तमान समय में इसका महत्व और अधिक हो जाता है जब G20 देशों के साथ साथ पूरी दुनिया में खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। खाद्य सुरक्षा को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में भी एक अहम लक्ष्य माना गया है। आज दुनिया और देश में रिकॉर्ड मात्रा में खाद्य पैदा हो रहा है, फिर भी जनसंख्या वृद्धि, महामारी और जलवायु परिवर्तन के कारण जनसंख्या का एक बड़ा भाग संतुलित और पौष्टिक आहार से वंचित है। विश्व के कई अविकसित देशों के साथ साथ भारत में भी कुपोषण, सूक्ष्म तत्वों से होने वाली बीमारियां एक बड़ी समस्या है। हाल ही में भारत में NFHS या राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण बताते हैं कि 5 वर्ष से कम बच्चे और महिलाएं, खास करके गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का प्रतिशत 50 से 60% है।

देश के 20 से 40% बच्चों में अल्प पोषण, अल्प विकास और वेस्टिंग की समस्याएं हैं। ये सभी समस्याएं प्रोटीन के साथ साथ सूक्ष्म तत्व जैसे आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड की कमी से होते हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में अधिक वजन और मोटापे की समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। मोटापे का प्रतिशत वर्ष 2015-16 में 25% से बढ़कर 40% तक हो गया है। इससे जीवन शैली से संबंधित रोग जैसे मधुमेह, हाइपरटेंशन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में यदि हम मिलेट के पोषण तत्वों को देखें तो पाएंगे कि इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज लवण, रेशे या फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट हैं। अतः मिलेट्स को खाने से हम अल्प पोषण और अति पोषण से संबंधित समस्याओं से बच सकते हैं। मिलेट छोटे बीज वाले विभिन्न प्रकार के अनाजों का समूह है जो ज़्यादातर शुष्क, बंजर और सीमांत भूमि पर पैदा होते हैं। यह ज़्यादातर एशिया और अफ्रीका प्रांतों में पाए जाते हैं। भारत मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यह विश्व की कुल पैदावार का 20% हिस्सेदारी करता है। भारत में पैदा होने वाले मिलेट को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला प्रमुख मिलेट्स, जिसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा और रागी आते हैं और यह कुल मिलेट उत्पादन का 80% है। दूसरी श्रेणी में अत्यधिक छोटे दाने वाले माइनर मिलेट आते हैं। इसके अंतर्गत फॉक्सटेल मिलेट जिसे हम कंगनी कहते हैं, पोर्सो मिलेट चीना, लिटिल मिलेट कुटकी, बार्नयार्ड मिलेट सामा, कोदो, ब्राउन टॉप छोटी कंगनी आते हैं। इसके अतिरिक्त ICR ने बकवीट या कुट्टू, एमरंथस या राजखीरा को भी इस मुहिम में शामिल करने की सिफारिश की है। मिलेट की फसल भारत में खरीफ में बोई जाती है। यह अन्य अनाज की तुलना में कम समय 60 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। मिलेट प्राचीन काल में पैदा होने वाली फसल है। इसका विवरण हमारे ग्रंथों जैसे विष्णु पुराण और ऋग्वेदों में भी आया है। पिछले कुछ दशकों में भारत में मिलेट के उत्पादन में भारी कमी आई है। खाद्य आत्मनिर्भरता को पाने के लिए हमने हरित क्रांति के दौरान मुख्य फसल जैसे गेहूं और चावल को अत्यधिक बढ़ावा दिया है, जिसके फलस्वरूप 1980 के दशक के बाद मिलेट्स उगाने वाली भूमि के क्षेत्रफल में कमी हो गई। इन मोटे अनाजों के महत्व को हम लोग भूल गए और आहार में इसकी मात्रा कम होती गई। इससे इसकी मांग भी घट गई और इसका स्थान गेहूं और चावल ने ले लिया। अतः इस खाद्य समस्या को देखते हुए, इसके पोषण गुणों और लागत को ध्यान में रखकर सरकार ने इसके उत्पादन बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं। वर्ष 2018 में नेशनल मिलेट वर्ष मनाया गया। पिछले दशकों में भारत में प्रति व्यक्ति मिलेट की खपत 32 किलोग्राम से घटकर 4 किलोग्राम रह गई है, जबकि गेहूं की खपत दुगनी के बराबर हो गई है। इसकी खपत को बढ़ाने के लिए सरकार ने इसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसे हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कहते हैं, इसको इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन स्कीम से जोड़ दिया है। मोटे अनाज में कई प्रकार के पोषण तत्व होते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज लवण जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक और लोह होते हैं। रागी या फिंगर मिलेट में व अन्य अनाजों से 10 गुना अधिक कैल्शियम होता है, जो हमारी हड्डियों के रखरखाव और विकास में मदद करता है। इसी प्रकार बाजरा, कुटकी और सावा में मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन ई होते हैं। मिलेट्स विटामिन बी जैसे नाइसिन, फॉलिक एसिड, लेसिथीन के अच्छे स्रोत होते हैं और हमारी तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। मोटे अनाज जैसे कोदो का प्रोटीन प्रोफाइल सामान्यतः खाए जाने वाले अनाज जैसे गेहूं और चावल से बेहतर होता है। मिलेट्स को दाल या दूध प्रोटीन के साथ मिलाकर खाने से हम प्रोटीन कुपोषण और इससे जुड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं।

0: उपस्थित फाइटिक नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है, लेकिन यदि इसे भिगाकर या अंकुरित कर खाएं तो यह पदार्थ नष्ट हो जाता है और मिलेट की पौष्टिकता बढ़ जाती है। मिलेट में ग्लूटीन नामक प्रोटीन नहीं होता, इसलिए इसे पाचन संबंधी समस्याओं जैसे सीलिएक डिजीज में आसानी से दिया जा सकता है। इसका उपयोग प्रोटीन और अल्प तत्व की कमी को दूर करने के साथ साथ कई उम्र संबंधित बीमारियों को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। मिलेट में पॉलीफेनॉल और कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कैंसर, हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर जैसे बीमारियों के प्रबंधन में सहायक हैं। मिलेट कई प्रकार के फाइबर या रेशों का अच्छा स्रोत है। इसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट चावल ब्रेड की तुलना में ज़्यादा अच्छे प्रकार से हमारे खून में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। इस तरह मिलेट्स डायबिटीज और मोटापे को नियंत्रित करने में लाभकारी है। इसमें उपस्थित जटिल या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारी आंत में लाभकारी जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाते हैं, जिसे हम प्रोबायोटिक भी कहते हैं। यह प्रोबायोटिक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और शरीर को मजबूत बनाते हैं। अतः मोटे अनाज से बने खमीर युक्त या फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ खाने से कई प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित किया गया है, जिसकी पुष्टि हाल ही में हुए शोधों में सामने आई है। मिलेट के इन्हीं गुणों के कारण इन्हें हम श्री अन्न या न्यूट्री सीरियल कहते हैं। इस प्रकार यदि हम अपने आहार में लगभग 50 से 200 ग्राम तक मिलेट को शामिल करके उम्र संबंधित बीमारियों और माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशेंसी को रोक सकते हैं। आजकल मिलेट अनाज की उपलब्धता आटे, दलिये, फ्लेक्स और पफ्ड ग्रेन के रूप में भी है। इन्हें हम अपने पारंपरिक व्यंजनों जैसे उपमा, दलिया, इडली, डोसा, चीला और लड्डू में कर सकते हैं। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में विभिन्न प्रकार के मिलेट युक्त खाद्य पदार्थ जैसे नूडल्स, पास्ता, बिस्किट्स और ब्रेड उपलब्ध हैं। मिलेट्स को हम सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी कारणों से भी बढ़ावा दे रहे हैं। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और अधिक तापमान का असर हमारी सामान्य फसलों पर पड़ रहा है। मिलेट इस शुष्क और बदलते जलवायु में पैदा की जाने वाली फसल का एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा यह अन्य फसलों की तुलना में कम ग्रीन हाउस गैस बनाता है और वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलता है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष में सरकार इसकी पैदावार, इससे जुड़े खाद्य पदार्थ, इसके निर्यात और इसके स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम लाई है। इसमें हमारी संस्थाएं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च और ICR का महत्वपूर्ण योगदान है। इन सभी गुणों को देखते हुए हम मिलेट्स को भविष्य की फसल कह सकते हैं। 2023 को हम अंतर्राष्ट्रीय
1: पोषण की चुनौतियां और मिलेट्स। अभी आपने प्रोफेसर नीलम यादव की ये वार्ता सुनी। हिंदी कार्यक्रम समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम, कलाकार सुजाता सिंह। इनके स्वर में पहले प्रस्तुत है ये भक्ति रचना।

सुगम संगीत कार्यक्रम की कलाकार थी सुजाता सिंह। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सबसे पहले आपको सुनाने जा रहे हैं इंदिवर की गीत रचना, जतिन ललित का संगीत, कुमार सानू की आवाज, फिल्म का नाम मिस्टर आशिक।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनाने जा रहे हैं किशोर कुमार और साधना सरगम के युगल स्वरों में अनजान की गीत रचना कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं मदन पाल की गीत रचना नदीम श्रवण का संगीत। आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजें, फिल्म का नाम सलामी।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप ट्यून कर सकते हैं मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप।

दिलीप ताहिल की गीत रचना, दिलीप सेन समीर सेन का संगीत, पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें, और ये गीत हमने लिया है बेटा फिल्म से।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा दो गाना। आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर।

उदित नारायण, हल्का याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में आप सुनने जा रहे हैं आनंद बख्शी की गीत रचना, विजू शाह का संगीत, फिल्म का नाम

इस गाने के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है सबरस। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनाने जा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये भक्ति रचना।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

सबरस कार्यक्रम में अब आपको सुनाने जा रहे हैं खुर्शीद हिल्लौरी का लिखा कलाम मेहंदी हसन की आवाज में।

में जी हसन की गई इस गजल के साथ ही सबरस कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। समाचार संध्या की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष

0: 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
4: सहायक विद्युत इकाइयां APU, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उप प्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों

0: और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
1: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है, जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और इसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
3: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर UPI के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
4: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है UPI के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो UPI ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश परिवर्तन करने के लिए।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापानी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India-New Zealand free trade agreement to come into force from 20th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says it will open new employment opportunities in MSMEs and benefit farmers. India and Canada agree to fast-track negotiations for comprehensive economic partnership agreement. Next round of talks to begin on 5th of next month. Defence Ministry signs contract worth 586 crore rupees with a Pune-based private company to procure auxiliary power units for T-72 and T-90 tanks. NHAI releases new guidelines to boost road safety and efficiency across national highways. Vladimir Putin's United Russia Party retains majority in parliament. And at Asian Games in Japan, India wins 3 medals in shooting at Aichi Nagoya. Badminton men's team reaches quarterfinals, beating Bangladesh. And now the news in detail. India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from the 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports

मोहब्बत नाम है उस एहसास का जो लफ्जों में कहां बयां होता है। मोहब्बत नाम है उस एहसास का जो लफ्जों में कहां बयां होता है, जिसे देखकर दिल मुस्कुरा उठे, बस वही तो अपना होता है।

तुम सामने हो तो हर मौसम सुहाना लगता है। तुम सामने हो तो हर मौसम सुहाना लगता है। तुम दूर हो तो दिल को कुछ अधूरा सा लगता है। तुमसे जुड़ी है मेरी हर खुशी की वजह। तुमसे जुड़ी है मेरी हर खुशी की वजह। तुम्हारा नाम ही अब मेरा अफसाना लगता है।

गजलों का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं कहकशां आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हम तो आज भी उसी मोड़ पर खड़े हैं, हम तो आज भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां तुमने कहा था फिर मिलेंगे। तेरे बिना ये शाम भी उदास लगती है, तेरे बिना ये शाम भी उदास लगती है, हर धड़कन अधूरी सी बात लगती है,

बादलों ने चांद को जब आगोश में लिया, बादलों ने चांद को जब आगोश में लिया, मुझे लगा तूने मुझे चुपके से छू लिया। महकते फूल चहकते पंछी सुहानी शाम है, महकते फूल चहकते पंछी सुहानी शाम है, तेरे साथ हो तो हर मौसम मेरा गुलफाम है।

0: We now bring you daily highlights of 20th edition of Asian Games 2026.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: नमस्कार, आईची नागोया से खेलों की दुनिया की बड़ी हलचल के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। जापान की धरती पर सजे एशियन गेम्स के मैदानों में आज मुकाबले और भी दिलचस्प रहे। शुरुआती मुकाबलों से मिले रोमांच के बाद अब पदकों की असली रेस रफ्तार पकड़ चुकी है। हर मैदान पर चुनौती बड़ी है, हर मुकाबला अहम है और हर खिलाड़ी की नज़र अपने लक्ष्य पर है। एशिया के 45 देशों से पहुंचे दिग्गज खिलाड़ियों के बीच भारत के खिलाड़ी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। खेलों का ये महासंग्राम आगे बढ़ रहा है और इसके साथ बढ़ रही है देशवासियों की धड़कन। तो आइए जानते हैं आईची नागोया से आज भारत के खेल अभियान का पूरा हाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन की बड़ी सुर्खियों पर। एमएमए में भारत का ऐतिहासिक पहला पदक, सुचिका तारियाल ने जीता कांस्य। शूटिंग में भारत का शानदार निशाना, 10 मीटर एयर राइफल में 3 पदक, एशियन गेम्स में कुल 5 शूटिंग मेडल। महिला हॉकी में गोलों की बरसात, भारत ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराया, 3 खिलाड़ियों ने लगाई हैट्रिक। कबड्डी में चैंपियन वाली शुरुआत, महिला और पुरुष टीमों ने जीते अपने अपने मुकाबले। वुशू में भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती अभी जारी है। टेबल टेनिस मुकाबलों में पुरुष और महिला टीमों ने पाकिस्तान पर पाई आसान जीत। सेपेक टेक्रो में रोमांचक मुकाबले, टीम रेगु के ग्रुप मुकाबले में जापान ने भारत को 2-1 से हराया। अब मलेशिया से होगी अगली भिड़ंत। आईची नागोया में भारत का खेल अभियान जारी है, कहीं पदकों की चमक, कहीं बड़ी जीत और कहीं अगली चुनौती का इंतजार। सबसे पहले बात उस पदक की जिसने एशियन गेम्स में भारतीय एमएमए इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड मार्शल

आर्ट्स यानी एमएमए में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया। भारत की सुचिका तारियाल ने महिलाओं की ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया। सुचिका का सेमीफाइनल मुकाबला तेओ हुई हुन के खिलाफ हुआ। मुकाबला बेहद कड़ा रहा। मैच के बाद रिव्यू में मुकाबला ड्रॉ घोषित किया गया। इसके बाद सुबह के वेइन नियम के आधार पर विजेता का फैसला हुआ। सिंगापुर की खिलाड़ी का वजन सुचिका से 700 ग्राम कम था, इसीलिए उन्हें विजेता घोषित किया गया और सुचिका को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन यहां तक पहुंचना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले सुचिका ने मंगोलिया की खिलाड़ी को 2-0 से हराकर पदक पक्का किया था। इससे पहले पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल को अनफिट घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए। एमएमए के बाद अब रुख करते हैं शूटिंग रेंज की, जहां भारत के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, जबकि व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने सिल्वर और रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पूरी रिपोर्ट के लिए

0: क्वार्टर फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए। एमएमए के बाद अब रुख करते हैं शूटिंग रेंज की, जहां भारत के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, जबकि व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने सिल्वर और रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पूरी रिपोर्ट के लिए चलते हैं अभिनव पुंशी के पास।
1: फैंटास्टिक डे फॉर इंडिया एज फार एज शूटिंग इज कंसर्न्ड। आईची नगोया में एशियन गेम्स 2026 में इंडिया वन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इंडिया को मिला सिल्वर मेडल। द टीम कंप्राइज ऑफ रुद्रांश पाटिल, हिमांशु ढिल्लन एंड पार्थ मानेन। इसी कंपटीशन में चाइना ने गोल्ड मेडल लिया और एक रिकॉर्ड हॉल के साथ और साउथ कोरिया को मिला ब्रॉन्ज मेडल। मगर बस इसी कंपटीशन में नहीं, हमारे इंडियन शूटर्स मेड अस प्राउड इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल फाइनल एज वेल। रुद्राक्ष पाटिल एंड हिमांशु ढिल्लन वाज इन द फाइनल टिल द लास्ट मिनट एंड गेव सम ग्रेट कंपटीशन to China's Zhang Jiao, magar Rudansh Patil had to be satisfied with the bronze, while Himanshu Dhillon, jo apna Asian Games ka debut kar rahe the, unka score 252.4 se unko mila ek silver medal. So a fantastic start for the Indian shooters so far. They have been setting Aichi Nagoya on fire. और इंडियन शूटिंग कंटिजेंट से अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बाकी हैं। याद दिलाएं, हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मनु भाकर इज आल्सो गोइंग टू बी इन एक्शन प्रीटी सून। वी आर होपिंग फॉर ग्रेट थिंग्स फ्रॉम हर एज वेल। सो ग्रेट डे फॉर इंडिया इन शूटिंग एट आईची नगोया एशियन गेम्स 2026।
0: शूटिंग के बाद अब बात उस खेल की जिसमें ताकत, रणनीति और सांस रोक देने वाला रोमांच एक साथ देखने को मिलता है। पुरुष कबड्डी में भारत ने जापान को 49-24 से हराकर ग्रुप मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला टीम ने भी बांग्लादेश को 42-21 से मात देकर अगले राउंड में जगह बना ली। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
2: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ग्रुप ए के मुकाबले में मेजबान जापान को 49-24 से हराया। आईची नगोया में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान सुनील कुमार की अगुवाई में भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। आशु मलिक की 3 अंकों वाली सुपर रेड ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि अर्जुन देशवाल, देवांग दलाल और अयान लोहचब ने भी रेडिंग में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने पहले हाफ में जापान पर लगातार दबाव बनाते हुए 3 ऑल आउट किए और मध्यांतर तक 31-9 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में जापान ने बेहतर रणनीति के साथ वापसी करने की कोशिश की और इस हाफ में भारत के 18 अंक के मुकाबले 15 अंक अर्जित किए, लेकिन भारतीय डिफेंस ने नियंत्रण नहीं खोया और एक और ऑल आउट के साथ जीत सुनिश्चित कर दी। भारत ने अंततः 25 अंकों के अंतर से मुकाबला अपने नाम किया और अपने एशियन गेम्स खिताब की रक्षा की शुरुआत जीत के साथ की। एशियन गेम्स में कबड्डी के इतिहास की बात करें तो भारत का इस खेल में लंबे समय से दबदबा रहा है। कबड्डी 1990 बीजिंग एशियन गेम्स में पुरुषों के पदक खेल के रूप में शामिल हुई और भारत ने उसी संस्करण में स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद भारत ने पुरुष कबड्डी में लगातार 2014 के संस्करण तक स्वर्ण पदक हासिल किए। मात्र 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर 2022 हांगझाउ एशियन गेम्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बीच 2026 में जापान के खिलाफ मिली जीत भारतीय टीम के खिताबी अभियान के लिए महत्वपूर्ण शुरुआत रही। वहीं अब बात करते हैं भारतीय महिला कबड्डी टीम की, जिसने 21 सितंबर को एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप ए मुकाबले से की, जहां भारतीय महिला टीम ने अपना दबदबा दिखाते हुए 42-21 से मैच अपने नाम किया। भारत ने मैच की शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच रखी, जिसका फायदा भारत को फर्स्ट हाफ में ही 21-10 की बढ़त से मिला। वहीं दूसरे हाफ में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और 21-11 की बढ़त के साथ दूसरा हाफ खत्म किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय महिला टीम ने 42-21 से एक आसान जीत अपने नाम की। भारत इस प्रतियोगिता में गत चैंपियन के रूप में उतरा है और 2022 हांगझाऊ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का लक्ष्य इस बार भी खिताब बरकरार रखना है। भारतीय टीम की कप्तानी पुष्पा राणा कर रही हैं, जबकि सोनाली शिंगाटे उपकप्तान हैं। भारत ने अब तक एशियन गेम्स की महिला कबड्डी में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2018 में रजत पदक हासिल किया था। इस अभियान में अगली बड़ी चुनौती 23 सितंबर को ईरान के खिलाफ होगी, जबकि 24 सितंबर को भारतीय महिला टीम का सामना जापान से होना है।
0: कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों ने दम दिखाया तो बैडमिंटन कोर्ट पर भी जीत का सिलसिला जारी रहा। पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आइए सुनते हैं साक्षी की रिपोर्ट।
3: The Indian shuttlers gave a brilliant start to India in the world of badminton in the ongoing Asian Games 2026 to help India advance to the quarterfinals. Lakshya Sen gave India the perfect start against Bangladesh in the men's team first round tie, defeating Eman Jaman in straight games 21-4, 21-12

0: and thereby putting India ahead in the tie. Then came Ayush Shetty, who secured another point for India in the men's team first round badminton tie against Bangladesh, defeating Gaurab Singha in straight games 21-4, 21-13, thereby taking the margin of victory overall team tie. And finally, Kidambi Srikanth gave India another strong start in the third match of the men's team badminton tie against Bangladesh, defeating Al-Amin Jumar in the opening game 21-15 and later 21-9, thereby helping India secure a commanding position, defeating Bangladesh 3-0 and setting themselves up for the quarterfinals to be played against Japan.
1: अब रैकेट की तेजी से निकलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां भारत ने गोलों की बरसात कर दी। महिला हॉकी टीम ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराकर पूल बी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। भारत की ओर से दीपिका नवनीत कौर और ऋतुजा पिसाल ने हैट्रिक दर्ज की। जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
2: भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को पूल बी के दूसरे मुकाबले में इंडोनेशिया को 17-1 से करारी शिकस्त दी। इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मैच में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया था। इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और दो मैचों में 36 गोल किए। इंडोनेशिया के खिलाफ भारत की ओर से 7 गोल पेनल्टी कॉर्नर और 10 गोल फील्ड प्ले से आए। दीपिका ने हैट्रिक लगाकर टूर्नामेंट में अपने गोलों की संख्या दो मैचों में 11 कर ली। नवनीत कौर और ऋतुजा ददासो पिसाल ने भी हैट्रिक पूरी की, जबकि लाल रेम सियामी, सुनेलिता टोपो और साक्षी राणा ने दो दो गोल किए। कप्तान सलीमा टेटे और इशिका ने एक एक गोल किया। भारत ने पहले क्वार्टर में दीपिका, सुनेलिता, लाल रेम सियामी और ऋतुजा के गोल से 4-0 की बढ़त बनाई। दूसरे क्वार्टर में लाल रेम सियामी, ऋतुजा, साक्षी, दीपिका और सुनेलिता ने गोल किए, जिससे हाफ टाइम तक भारत 9-0 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में इंडोनेशिया की इनेस आदित्य ने एक गोल किया, लेकिन भारत ने सलीमा, नवनीत, इशिका, ऋतुजा और दीपिका के लगातार 5 गोलों से तीसरे क्वार्टर के अंत तक 14-1 की बढ़त बना ली। अंतिम क्वार्टर में नवनीत ने 56वें और 57वें मिनट में दो गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की, जबकि साक्षी ने अपना दूसरा गोल किया और भारत ने 17-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में अनुभवी भारतीय गोलकीपर सविता ने भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 321 सीनियर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ वह भारत की सबसे अधिक कैप हासिल करने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई और उन्होंने वंदना कटारिया का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। लगातार दो मैच खेलने के बाद भारत को मंगलवार को आराम मिलेगा और टीम बुधवार को थाईलैंड के खिलाफ अपना अगला पूल बी मुकाबला खेलेगी।
1: अब चलते हैं तैराकी की ओर, जहां भारतीय तैराकों ने आज अपनी अपनी चुनौती पेश की और अपने अपने मुकाबलों में जद्दोजहद करते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं पूरी जानकारी साक्षी मंडवाल से।
0: It was not a good day for Indian swimmers as India's Srihari Nataraj finished 10th in the men's 50-meter backstroke final at the Asian Games 2026, clocking 25.52 seconds in the 10-swimmer medal race. China's Jiao Zhu clinched the gold medal with a new Asian Games record of 24.04 seconds, while compatriot Zicheng Wong took silver in the 24.49 seconds. South Korea's Jihan Yoon completed the podium with a bronze winning time of 24.54 seconds. All the other swimmers, Rishabh Das, Akash Mane, Heer Jitesh Shah and Dhanush Suresh failed to qualify for the finals of their respective events. Sirf yahi nahi dosto, men's 4x200m freestyle relay mein bhi Bharatiya swimming team ka jo pura contingent hai, yani Sajan Prakash, Anish Sunil, Kumar Gowda, Vedant Madhavan and Dakshan Shashi Kumar failed to qualify for the finals also. तो अगर देखें ओवरऑल तो भारतीय स्विमर्स के लिए आज का दिन बहुत ही निराशाजनक साबित हुआ ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 में।
1: अब पानी के खेल से निकलकर चलते हैं एक ऐसे खेल की ओर जिसमें पैर ही बनते हैं सबसे बड़ा हथियार, सेपेक टकराव। सेपेक टकराव में पुरुष टीम रेगु में जापान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं अभिनव झा की रिपोर्ट।
2: भारत के पुरुष सेपेक टकराव रेगु टीम को मेजबान जापान के खिलाफ ग्रुप बी मुकाबले में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपेक टकराव में खेल का प्रारूप वॉलीबॉल जैसा होता है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों को गेंद को हाथों से छूने की अनुमति नहीं होती। खिलाड़ी मुख्य रूप से पैर, घुटने, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों का इस्तेमाल करके गेंद को नेट के ऊपर से विपक्षी पाले में भेजते हैं। रेगु प्रारूप में प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं और उद्देश्य गेंद को विपक्षी कोर्ट में इस तरह गिराना होता है कि सामने वाली टीम उसे वापस ना कर सके। एक टीम गेंद को अधिकतम 3 बार छूकर उसे नेट के पार भेज सकती है। सर्विस के बाद रैली जारी रहती है और हर रैली पर अंक मिलता है।

0: सेपेक टेकराव में जो टीम तीन में से दो मैच जीतती है वो मुकाबला जीती है और हर मैच में 15-15 अंक के गेम खेले जाते हैं। जिसने पहले दो गेम अपने नाम किया उसने एक मैच अपने नाम किया। भारत ने शुरुआती रेगु मैच 2-0 से जीता जिसमें भारतीय टीम ने दोनों गेम 15-13 और 15-9 से अपने नाम किए। दूसरा मैच कांटे की टक्कर का रहा जिसमें जापान ने वापसी करते हुए पहला गेम 15-12 से अपने नाम किया, वहीं दूसरा गेम भारत ने 17-15 से अपने नाम किया। लेकिन तीसरे गेम में जापान ने बाजी मारी और 15-11 से जीतकर इस गेम के साथ मैच जीता, जिसके बदौलत ये मुकाबला तीसरे और निर्णायक मैच की ओर बढ़ा, जहां जापान ने एक तरफा तरीके से 15-9 और 15-12 से ये मैच जीतकर मुकाबले में बाजी मार ली। सेपेक टेकराव 1990 बीजिंग एशियन गेम्स से ये नियमित स्पर्धा के रूप में शामिल रहा है। भारत ने एशियन गेम्स में इस खेल में अपना पहला पदक 2018 जकार्ता पालेमबांग पुरुष रेगु में कांस्य के रूप में जीता और 2022 हांगझोउ में भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रकार भारत के नाम एशियन गेम्स सेपेक टेकराव में अब तक दो कांस्य पदक हैं।
1: अब बात टेबल टेनिस की। भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने नॉकआउट चरण की राह भी मजबूत कर ली है। पूरी रिपोर्ट दे रही हैं साक्षी मांडवाल।
2: इन टेबल टेनिस बोथ द वुमेन एंड मेंस मैचेस हैपेंड टुडे। महिलाओं के टेबल टेनिस मुकाबले की अगर बात करें तो इसमें भारत का मुकाबला हुआ पाकिस्तान के साथ, जिसमें महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई अप में हरा दिया। श्रीजाकुला सील्ड द विक्ट्री विद अ स्ट्रेट गेम्स विन ओवर फातिमा खान इन अ स्कोर लाइन दैट रेड लाइक 11-4, 11-4, 11-5 एंड थereby इंडिया फिनिश्ड एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस टू द प्री क्वार्टर फाइनल्स। इस पूरे मुकाबले में एक बहुत जरूरी नाम जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, वो है सिंड्रेला दास का। सिंड्रेला दास का इस वर्ष एशियन गेम्स में डेब्यू हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान की कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से आज शिकस्त दी, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर मिल गया 2-0 का। And then came Srijakula, who was able to convert that 2-0 commanding position to a 3-0 victory, thereby sealing India's win in our favor. India will now be facing Thailand tomorrow in the pre-quarterfinal match. Now let's talk about the men's table tennis match that happened today, in which India once again came face to face with Pakistan and defeated Pakistan with a scoreline that was exactly the same as the women's. Well, I'm meaning to say that India defeated Pakistan 3-0 in the men's table tennis group match at the Asian Games 2026. In match number 2, Sathyan Gunasekaran defeated Abbas Khan 11-1, 11-8, 11-9, thereby sealing match number 2 also in his name, 3-0. And in match number 3, Pius Jain defeated Mohammad Khan 11-2, 11-5, 11-7, thereby sealing the third match in his name and also leading India to its victory over Pakistan by winning the third match 3-0, and thereby the Indian men's table tennis team also defeated Pakistan 3-0 in a clean sweep victory.
1: अब रुक करते हैं वुशु का, जहां तकनीक, संतुलन और हर मूवमेंट के साथ पदक की उम्मीद जुड़ी है। आज के दिन में महिलाओं के नैनकुआन इवेंट में भारत की लैंगनन टाम्बी देवी पदक के दौड़ में बनी हुई है और इनका फाइनल मुकाबला कल खेला जाना है। इससे पहले महिलाओं की चांगकुआन फाइनल में भारत की नियमन वांगसू ने हिस्सा लिया। 16 खिलाड़ियों के फाइनल में उन्होंने 9.573 का स्कोर हासिल किया और 15वें स्थान पर रहीं। इसके बाद वुशु के लिए आगे की चुनौती में महिला 60 किलोग्राम सांडा के राउंड ऑफ 16 में नाउरेम रोशिबिना देवी का मुकाबला बांग्लादेश की मो शिखा खातून से हुआ, जिसे विन बाय पॉइंट डिफरेंस से नाउरेम रोशिबिना देवी ने जीत लिया। वहीं पुरुषों के 56 किलोग्राम में आर्यन का मुकाबला अफगानिस्तान के शहजादा सफी से हुआ, जिसे आर्यन ने भी 2-0 से जीत लिया। वुशु में तो खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया, लेकिन सॉफ्ट टेनिस के मिक्स डबल में आध्या तिवारी और जैमीना ने ग्रुप चरण में दो मुकाबले जीते। हालांकि दक्षिण कोरिया से हार के बाद राउंड ऑफ 16 में फिलीपींस की जोड़ी से 2-5 की हार के साथ उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव पुंशी।
3: Let's talk now about soft tennis in Aichi Nagoya, the Asian Games 2026. And Adhya Tiwari and Jay Meena action में थे इंडिया के लिए और उनका ग्रुप स्टेज मैचेस में पहले मैच में मंगोलिया को हराया कंफर्टेबली। दूसरे मैच में भी जीत मिली आध्या और जे को, उन्होंने हराया कंबोडिया को, मगर जो तीसरा मैच था वो कांटे की टक्कर थी साउथ कोरिया के खिलाफ। उस मैच में हार का सामना करना पड़ा हमारी इंडियन टीम को, मगर हारने के बाद भी साउथ कोरिया के खिलाफ इंडिया फिनिश सेकंड।

0: in the group and advanced kara round of 16 stage mein. And round of 16 stage mein, jab Adya aur Jay apna 5th match khel rahe the din ka, to India aur Philippines ka final score tha 2-5, jisse India ko haar ka samna karna pada aur India advance nahi kar paye quarter final stage ki taraf. Aur aisa hi tha aaj India ka pradarshan soft tennis mein.
1: एशियन गेम्स में आज के मुकाबले खत्म होने के बाद चीन कल की तरह ही मेडल टैली में 23 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पे बरकरार है. दूसरे पायदान पर मेजबान जापान टोटल 32 मेडल के साथ टिका हुआ है, जिसमें 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं. वहीं तीसरे पायदान की कमान दक्षिण कोरिया ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज के साथ संभाली हुई है. बात करें भारत की, तो भारत 4 रजत और 2 कांस्य की मदद से कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर बना हुआ है.
2: एशियन गेम्स के अगले दिन भारतीय खिलाड़ियों के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं और पदक की उम्मीदें भी. कहीं गोल्ड की जंग होगी, कहीं नॉकआउट मुकाबले और कहीं जीत के साथ अगले दौर का टिकट दांव पर होगा. अब नजरें हैं कल के खेल और भारतीय खिलाड़ियों की अगली रणनीति पर. आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ. कल सुबह ठीक 9:30 बजे से आप सुन पाएंगे एशियन गेम्स पर हर घंटे की ताज़ा जानकारी. इसके बाद हम लेकर आएंगे रात को 10 बजे पूरे दिन का लेखा जोखा. अभी के लिए प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ मैं कविता शर्मा आपसे लेती हूं अनुमति. नमस्कार.
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.

फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण की गीत रचना, रवि का संगीत, मोहम्मद रफी की आवाज़, फिल्म का नाम नई रोशनी।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं गुलचन बावरा की गीत रचना। कल्याण ज्ञानंद जी का संगीत, मुकेश और हेमलता की आवाजें, फिल्म का नाम विश्वास।

इसके अन्य के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग मारू विहाग में क्लैरिनेट वादन, वादक कलाकार पंडित राम कृष्ण।

0: राग मारु विहाग में क्लैरिनेट वादन अभी आपने सुना। वादक कलाकार थे पंडित राम कृष्ण। आपके साथ तबले पर संगत की श्री सुदर्शन राम ने।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 11 बज रहे हैं, समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा के व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के

फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर

की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा सूखा प्रभावित इलाकों में 6 अमृत सरोवर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता में आज हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये जानकारी दी। बैठक में सुंदरबन सहित तटीय इलाकों और उत्तर बंगाल के ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।